मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 10 सितंबर सन 2026।

प्रातः के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ है आपकी दोस्त तुलिका शर्मा। आप सभी को हमारा नमस्कार।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 अधिक यात्री भार वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है। उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट

0: बाकी के कोच बनेंगे, अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। टीम सिकल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों का दल शामिल हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1,66,000 से अधिक रिफंड यानी वापसी भुगतान की शिकायतों का समाधान किया है। इससे 35 क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक का वापसी भुगतान मिला है। ये शिकायतें 25 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2026 तक की 15 महीने की अवधि के दौरान दर्ज की गई थी। दिल्ली नगर निगम MCD ने खतरनाक इमारतों, अनाधिकृत निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान तथा भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। यह अभियान निगम के सभी 12 जोन में चलाया जा रहा है। MCD ने कल 34 ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इसके अलावा 17 संपत्तियां सील की गई, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 4 ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने पिछले 10 दिनों में देश भर में विभिन्न स्थानों पर 6 बड़े अभियान चलाए हैं। निदेशालय ने 2 तेंदुए की खाल, 180 जीवित भारतीय तारा कछुए, 12 जीवित टोके गेको, लगभग 24 किलोग्राम पेंगोलिन के शल्क और लगभग 500 ग्राम बाघ की हड्डियां बरामद की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन मामलों में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। अमेरिका ओपन में अमेरिका की बेन शेल्टन और 11वीं वरीयता के खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो के बीच पुरुष सिंगल सेमीफाइनल मुकाबला होगा। महिला सिंगल सेमीफाइनल में कल मौजूदा चैंपियन एरेना सबालेंका का मुकाबला तीसरी सीड जेसिफा पेगुला से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनते हैं ये देशगान।

0: इस भक्ति गीत के साथ ही आज की वंदना संपन्न होती है। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्री ओंकार सिंह भदौरिया का आलेख, वाचक हैं यतीन्द्र चतुर्वेदी।
1: मनुष्य की आवश्यकताएं कई तरह की होती हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा आदि मनुष्य की भौतिक या शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। शिक्षण, प्रशिक्षण, पठन पाठन, ज्ञानार्जन आदि मनुष्य की भौतिक आवश्यकताएं होती हैं। मनोरंजन करना और मन की शांति प्राप्त करना मनुष्य की मानसिक आवश्यकताएं होती हैं। समाज के सभी लोग अपनी अपनी प्रकृति और क्षमता के अनुसार अपनी शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मन की शांति के लिए लोग अनेक प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं। इसके लिए कोई मस्जिद में जाता है, कोई गिरजाघर में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है, कोई मंदिर में जाता है और वहाँ पर अपने इष्ट देव या ईश्वर का स्मरण, ध्यान, वंदन और पूजन करता है। मन की शांति के लिए कोई सत्संग करता है तो कोई भगवान के भजन कीर्तन गाता है। मंदिरों में सेठ साहूकार भी जाते हैं और चोर डकैत भी जाते हैं, सदाचारी भी जाते हैं और दुराचारी भी जाते हैं, परंतु जाते वही लोग हैं जिन्हें ईश्वर के प्रति विश्वास होता है और ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा होती है। सच बात तो ये होती है कि जिन लोगों के मन में ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास होता है और उनके प्रति श्रद्धा भी होती है,

0: उनके मन ही मंदिर बन जाते हैं। परंतु जिन लोगों के मनों में ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं होता है, उसके प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं होती है, उनके लिए मंदिर ईश्वर का वास स्थान नहीं बल्कि ईंटों, पत्थरों, लकड़ी व लोहे का एक ढांचा मात्र होता है। पत्थर एक निर्जीव पदार्थ होता है जिसको तराश कर मनुष्य अपनी कल्पना के अनुसार अपने इष्ट देव या ईश्वर की मूर्ति बनाता है और मंदिर में स्थापित करवा देता है। जिन लोगों को ईश्वर के प्रति विश्वास होता है और उसके प्रति श्रद्धा होती है, उनको मंदिर में स्थापित मूर्ति साक्षात ईश्वर के समान प्रतीत होने लगती है। परंतु श्रद्धाहीन व्यक्तियों को वही मूर्ति मात्र सोना, चांदी, तांबा या पत्थर की वस्तु नजर आती है। समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अमीरी में और गरीबी में, सुख में और दुख में सदैव ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं। वे अपने ईश्वर या इष्ट देव को हमेशा स्मरण करते रहते हैं, उसका पूजन करते हैं। वे ईश्वर को कभी भूलते नहीं हैं। परंतु समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी अमीरी आ जाने पर, थोड़ा सा सुख मिल जाने पर, थोड़ा सा यश मिल जाने पर इतराने लगते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। वे ही लोग अचानक कोई संकट या कष्ट आ जाने पर और गरीबी आ जाने पर ईश्वर के प्रति विश्वास रखने लगते हैं। वे अपने संकटों एवं कष्टों का निवारण करने के लिए ईश्वर से गिड़गिड़ाने लगते हैं। संकट या कष्ट आने के पहले उन्होंने भले ही बहुत कुकर्म किए हों और उनके मनों में गंदे विचार रहे हों, परंतु संकट और कष्ट आ जाने पर उनके मनों से गंदे विचार हट जाते हैं, उनके स्थान पर अच्छे विचार आ जाते हैं, उनके मन पवित्र हो जाते हैं, उनके मन ही मंदिर बन जाते हैं। समाज में मंदिरों का होना जरूरी होता है क्योंकि वे श्रद्धा तथा विश्वास के केंद्र होते हैं। परंतु मंदिर श्रद्धा और विश्वास के केंद्र तभी बन पाते हैं जब सभी लोगों के मन निश्चल व निष्कपट अर्थात पवित्र हो जाएं और उनको ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास हो जाए, उनके प्रति सच्ची श्रद्धा भी पनप जाए। ऐसा हो जाने पर ही मंदिरों का होना सार्थक हो सकता है। ईंटों तथा पत्थरों से बनवाए गए मंदिर सही मायनों में तभी मंदिर बन पाएंगे जब लोगों के मन भी मंदिर बन जाएंगे।
1: कार्यक्रम चिंतन में अभी आप सुन रहे थे श्री ओंकार सिंह भदौरिया का आलेख। वाचक थे यतीन्द्र चतुर्वेदी।

0: सदियों बाद पैदा होता है एक महापुरुष और हमें दिखा जाता है रोशनी की अनगिनत राहें। आइए हम सब चलें उस मार्ग पर जो दिखाया महात्मा गांधी ने।
1: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

अगवानी करने वालों को अयोध्या से आई बारात जब जनकपुर के निकट दिखाई दी तो हृदय में उमड़ते आनंद से उनके शरीर रोमांचित हो उठे। धूमधाम से बारातियों का स्वागत किया गया। राजा जनक ने बारातियों के लिए दूध, ठंडे शरबत, जल आदि तथा भांति भांति के पकवानों से सजे थाल परात भिजवाए। वस्त्राभूषणों तथा बहुमूल्य मणिमाणिकों से लदे पशु पक्षी घोड़े हाथी भी भिजवाए गए।

बागवानी करने वाले और बाराती नगर के बाहर इस प्रकार मिल रहे हैं मानो आनंद के दो सागरों का मिलन हो रहा हो। देव सुंदरियां फूलों की वर्षा करती हुई मंगलाचार कर रही हैं। देवता आनंद मग्न होकर नगाड़े बजा रहे हैं। बारात को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाए गए सभी सुविधाओं वाले जनवासे ले जाया गया। बारात के जनकपुर पहुंचने का संवाद सुनकर अंतःपुर में सीता जी ने मन ही मन सभी सिद्धियों का स्मरण किया और उन्हें बारात के स्वागत सत्कार के लिए भेजा।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। धान की फसल में कीट नियंत्रण, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, धान की फसल बढ़वार की स्थिति में है। धान की फसल में कीट नियंत्रण करें। फसल में यदि समय पर कीट नियंत्रण के उपाय नहीं अपनाए जाते हैं तो फसल उत्पादन काफी प्रभावित होता है। धान की फसल में कीटों द्वारा नुकसान नर्सरी से फसल पकने तक होता है। धान की फसल में तना छेदक कीट अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है। इस कीट के वयस्क कीट हल्के पीले रंग के 1 से 1.5 सेंटीमीटर लंबे पतंगे होते हैं जो सुबह के समय पत्तियों पर बैठे दिखाई देते हैं। मादा कीट के दोनों ऊपरी पंखों के बिल्कुल बीच में एक काले रंग का धब्बा होता है और नर कीट के हल्के भूरे पंखों पर कई छोटे

0: अंडे देती हैं। पौध रोपाई से पहले पत्तियों के सिरों को काट देना चाहिए। यह पद्धति भी कीट नियंत्रण का आसान तरीका है। पौध रोपाई से पूर्व पौधों की जड़ों को क्लोरोपाइरीफास 20 ईसी की 10 मिलीलीटर मात्रा 10 लीटर पानी के घोल में उपचारित करने के बाद रोपाई करने से भी कीटों का प्रकोप कम किया जा सकता है। प्रकृति में पाई जाने वाली मकड़ियां इस कीट के अंडों और इल्लियों को नष्ट करती हैं। खेत में इससे बचाव के लिए धान के पुआल के झाड़ू बनाकर 15-20 जगहों पर बांस की खूंटियां लगाकर बांधना चाहिए। तना छेदक कीट की निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करना चाहिए। फेरोमोन ट्रैप 20-25 मीटर की दूरी पर लगाने चाहिए। फेरोमोन ट्रैप में ल्यूर को 20 दिन के अंतराल पर बदल देना चाहिए और फेरोमोन ट्रैप फसल से लगभग 1 फुट की ऊंचाई पर होना चाहिए। तना छेदक कीट को रासायनिक पद्धति से नियंत्रण करने के लिए क्विनालफास 25 ईसी 1 लीटर मात्रा या कार्टाई हाइड्रोक्लोराइड 50 एसपी की 500 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। फसल की कटाई जमीन स्तर तक करें। अवशेषों को नष्ट करें जिससे इल्लियां नष्ट हो जाएं। इसी तरह पत्ती लपेटक कीट नुकसान पहुंचाता है। इस कीट का पतंगा सुनहरे पीले रंग का होता है जिसके पंखों के बीच में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं होती हैं। इस कीट की हरे रंग की इल्ली पत्ती को अपने ऊपर लपेटकर क्लोरोफिल को खाती हैं जिसके कारण पत्तियां सफेद सफेद नजर आती हैं। धीरे धीरे पत्तियां सूखने लगती हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए फसल में कार्बनिक खादों का प्रयोग करना चाहिए। पत्ती लपेटक इल्ली के रासायनिक नियंत्रण के लिए क्विनालफास 25 ईसी 1 लीटर 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करके कीट को नियंत्रित कर सकते हैं। भूरा फुदका ब्राउन हापर के नाम से जाना जाता है। यह कीट भूरे रंग का 3-4 मिलीमीटर लंबा होता है जो पानी की सतह के ऊपर तने के ऊपर चिपके रहते हैं और पौधों के तने तथा पर्ण छत से रस चूसते हैं जिसके कारण पौधे घेरों में सूखते हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए फसल में संतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग करना चाहिए। संभव हो सके तो खेत से पानी निकालकर पुनः 1 सप्ताह बाद भरना चाहिए। प्राकृतिक कीटों को बढ़ावा देना चाहिए। क्लोरोपाइरीफास या पिप्रोनिल का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। फसल की लगातार निगरानी करते रहना चाहिए और समय समय पर आवश्यकता अनुसार कीट नियंत्रण के उपाय अपनाकर फसल को स्वस्थ रख सकते हैं और फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
1: कार्यक्रम कृषि चर्चा में अभी आप सुन रहे थे जानकारी धान की फसल में कीट नियंत्रण। जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।
2: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम 26 जनवरी से 2400 घंटे उपलब्ध है डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम आनंद की अटूट रसधार।
3: रक्तदान जीवन का उपहार है। आइए रक्तदान करें, जीवन दान करें। रक्तदान से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। 18 से 65 वर्ष तक उम्र और 45 किलो अथवा इससे अधिक वजन का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हर 3 माह में रक्तदान कर सकता है। रक्तदान एक पीड़ा रहित प्रक्रिया है। महिलाएं भी रक्तदान कर सकती हैं। रक्तदान किसी को जीवन और स्वयं को आत्मसंतोष प्रदान करता है। रक्तदान करने के लिए शासकीय अथवा रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक में संपर्क करें।
4: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार।
5: फैल सकती है महामारी। खतरे में पड़ सकती है जिंदगी।
4: छीन सकती है।

0: हमारी, इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ।
1: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास।
0: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
1: और उसको पिएं छान कर उबाल कर।
0: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें।
1: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
2: पानी रे पानी,
3: पानी पानी रे पानी,
0: आओ मिलकर करें प्रयास।
1: शुद्ध पानी हो सबके पास।

0: अरे क्या बात है, आज तो तुम बड़ो ही नोनो गीत गा रही हो। और जो तो बई गीत है, जाके हम फरमाइश की चिट्ठी लिख कर भेजा था थे, और हमारी पसंद को लोक गीत हमारी जिज्जी हमें लोक माधुरी में सुनवाऊ थी।
1: हाँ, खूब सही चीज ना तुमने, जो बई लोक गीत है। और आज हम जी को जासे गा रहे कि आज हमारा मन बहुत ही उल्लास में है।
0: काय ऐसो का होगा जिज्जी?
1: अपना जो पसंदीदा कार्यक्रम लोक माधुरी को हम सभी सुन सकते हैं हर सोमवार शाम 7:21 से 8 बजे के बीच।
0: जिज्जी जाके लाने अपने को चिट्ठी कैसे भेजनी होगी?
1: अरे चिट्ठी बिट्टी छोड़ो, अब हम हो गए डिजिटल, सो अब हम लिख के भेजेंगे अपनी फरमाइश व्हाट्सएप पे।
0: तो जीजी जाको व्हाट्सएप नंबर का है?
1: डायरी तनक खोलो और जल्दी से लिख लो, 9425702768। तो याद भाओ कि नहीं, तनक बताओ तो जल्दी से,
0: 9425702768।
1: तो आप अपनी पसंद को लोकगीत के बोल और कलाकार को नाम हमें जा नंबर पे व्हाट्सएप करो, को आपकी पसंद को लोकगीत लोक माधुरी कार्यक्रम में जरूर ही सुनवाएं।
0: तो सुनना न भूलें हर सोमवार शाम को 7:21 से 8 बजे के बीच लोक माधुरी।

0: अभी आप सुन रहे थे सूचना परक कार्यक्रम दर्पण, मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे केंद्र के कार्यक्रम आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एयर पर भी सुनते हैं। इसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हमारे कार्यक्रम सुने जा सकते हैं। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक आप हमें सुनते हैं 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजे
1: संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन नवराज्येषु 28,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, अनुमोदिताः। एतासु परियोजनासु प्रायः 97.1 किलोमीटर मिताः रेलमार्गाः सम्मिलिताः भविष्यति। एताभिः रेलसम्पर्कव्यवस्थायां परिष्कारः, विद्यमानमार्गेषु यातायातसम्मर्दस्य न्यूनीकरणं तथा यात्रिणां मालवाहनस्य च द्रुततरगमनं सुकरं भविष्यति। एतासां परियोजनानां 29.2 30.2 पूर्णत्वस्य लक्ष्यं निर्धारितमस्ति। केन्द्रीयसूचनाप्रसारणमन्त्री अश्विनीवैष्णवः ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन गृहीतानां निर्णयानां विवरणं प्रदत्तवान्। सः उक्तवान् यत् मन्त्रिमण्डलेन तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश, कर्णाटक, तेलङ्गाना राज्येषु 17 विस्तृताः 5 रेलबहुमार्गीकरणपरियोजनाः अनुमोदिताः। एताभिः परियोजनाभिः विद्यमानभारतीयरेलजाले प्रायः 45.5 किलोमीटर मितः रेलमार्गः वर्धिष्यते। एतासां 5 परियोजनानाम् अनुमानितव्ययः आहत्य 21.10 अस्ति। श्रीवैष्णवः उक्तवान् यत् प्रशासनेन 17.10 अधिकमूल्याः 3 अन्याः रेल बहुमार्गीकरणपरियोजनाः अपि अनुमोदिताः। एताः परियोजनाः पश्चिमबङ्गाल

0: झारखंड उड़ीसा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्यानां चतुर्दश जनपदेषु विस्तरिष्यन्ते। एकस्य प्रश्नस्य प्रत्युत्तरे श्रीवैष्णवः संसूचितवान् यत् मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा आगामी वर्षे प्रारप्स्यते। भारतम् अष्टचत्वारिंशत्तम विश्व कौशल प्रतियोगितायां प्रथमवारं एकादश नूतन कौशल श्रेणीषु सहभागं करिष्यति। इयं प्रतियोगिता अस्य मासस्य द्वाविंशतितः सप्तविंशति दिनांक पर्यन्तं चीन देशस्य शांघाई नगरे आयोजयिष्यते। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालयेन संसूचितं यत् टीम स्किल इंडिया इत्येतत् चतुष्षष्टि कौशलेभ्यः त्रिषष्टि कौशलेषु प्रायः सप्तति प्रतियोगिताभिः युक्तेन दलेन सहभागं करिष्यति। मंत्रालयेन उक्तं यत् अद्यावधि विश्व कौशल प्रतियोगितायां इयं भारतस्य बृहत्तमा विविधता पूर्णा च सहभागिता भविष्यति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः ब्रिक्स देशेभ्यः महिलाभ्यः अवसर विस्ताराय तथा अन्ताराष्ट्रिय व्यापारे महिला उद्यमिनीनां महिला नेतृत्वाधीनानां च उद्यमानां प्रोत्साहनाय मिलित्वा कार्यं कर्तुम् आह्वानं कृतवान्। श्री गोयलः बलं दत्तवान् यत् महिला नेतृत्वाधीनेभ्यः उद्यमेभ्यः अन्ताराष्ट्रिय व्यापारे अवसराणां लाभं स्वीकर्तुं स्वकीयां सहभागितां च वर्धयितुम् आवश्यकं सहकार्यं मञ्चश्च प्रदातव्यौ। ग्रामीण विकास मंत्रालयस्य अन्तर्गतं भूमि संसाधन विभागः अद्य डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम 3.0 इत्यस्य कार्यान्वयन संबद्धान् दिग्निर्देशान् प्रकाशयिष्यति। मंत्रालयेन सूचितं यत् आगामी DILRMP 3.0 इत्येतत् 50.65 लाख करोड़ रुपये अनुमानित वित्त व्ययेन केंद्रीय क्षेत्रीय योजना रूपेण कार्यान्वितं भविष्यति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन उड़ीसायाः पृथक पृथक स्थलेषु अद्य प्रबलाति प्रबल वृष्टेः संभावनां दृष्ट्वा रक्तवर्ण परा संचेतना प्रसारिता अस्ति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सरकार ने 20,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रमुख मार्गों पर लाइन क्षमता बढ़ाना, परिचालन दक्षता में सुधार करना और भीड़भाड़ कम करना है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कल सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 10,783 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 3 परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों को कवर करेंगी। इसके साथ ही मौजूदा रेलवे नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर का विस्तार होगा। लगभग 1,021 करोड़ रुपये की लागत वाली अन्य 5 परियोजनाएं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों को कवर करेगी। श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि सरकार ने लगभग 11,000 किलोमीटर लंबे सभी 7 उच्च घनत्व वाले रेलवे कॉरिडोर को चौगुना करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं पर मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, कनेक्टिविटी बेहतर होगी और माल ढुलाई क्षमता में वृद्धि होगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राईलैंड सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान संयुक्त रूप से कर रहे हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। टीम स्किल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों का दल शामिल हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी पहल के अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। दिल्ली नगर निगम MCD ने खतरनाक इमारतों, अनधिकृत निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान तथा भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। ये अभियान निगम के सभी 12 जोन में चलाया जा रहा है। MCD ने कल 34 ध्वस्त करने संबंधी कार्रवाई की। इसके अलावा 17 संपत्तियां सील की गईं, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 4 ध्वस्त करने संबंधी आदेश पारित किए गए। मंगलवार को भी MCD ने कार्रवाई करते हुए 17 संपत्तियों को ध्वस्त किया और 5 अन्य संपत्तियों को सील किया था। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय शिष्टमंडल ने उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि उनकी इस यात्रा के दौरान सामाजिक विकास और विरासत संरक्षण में आगा खान विकास नेटवर्क के साथ चल रहे सहयोग की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही विकास और सामुदायिक पहलों पर सहयोग की संभावनाओं का भी पता चलेगा। आगा खान विकास नेटवर्क के अध्यक्ष प्रिंस रहीम आगा खान उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन के निमंत्रण पर इस महीने की 15 तारीख तक भारत दौरे पर हैं। केरलम में अलपुजा और एर्णाकुलम जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज वर्षा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे पिछले 3 दिनों से पड़ रहा भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। कल तक राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। शुक्रवार और शनिवार के लिए 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ने आज से कल सुबह तक तिरुवनंतपुरम जिले के तटीय इलाकों में ऊंची लहरों और समुद्र के कटाव को लेकर चेतावनी दी है। अमेरिका ओपन टेनिस में अमेरिका के बेन शेल्टन और 11वीं वरीयता के खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो के बीच पुरुष सिंगल सेमीफाइनल मुकाबला होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। इससे हमारे भोपाल केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। 7:20 पर रविंद्रनाथ मिश्रा से सुनिए उनका काव्य पाठ। 7:30 फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुना जा सकता है और 8 समाचारों का समय होगा, जिसमें समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज बारी बारी से आप सुनेंगे। 8 समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। ये दोनों ही समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करते हैं।

8:30 बजे सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। इसे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। 9 बजे सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर सुना जा सकता है। 9:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में गीतिका उमड़ेकर का ख्याल गायन सुनेंगे आप। प्रस्तुत करेंगी राग भैरव। जिले की चिट्ठी सुबह 10 बजे भोपाल से अनुप्रसारित होगी और 10:05 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आप हमारे केंद्र से सुनेंगे। 11 बजे से सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

शाम की सभा में 4 बजे विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करते हैं। 5 बजे से कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। सभा के आरंभ में ही युववाणी कार्यक्रम होगा जो जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति होगा। 6 बजे शैक्षणिक कार्यक्रम सुनिए उमंग, इसे भी आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से ही अनुप्रसारित किया जाएगा।

7:20 पर हमारे केंद्र से आप सुनेंगे कुछ लोकगीत। 7:30 प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होगा। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज रात 8 बजे से हम आपको सुनवाएंगे। इसे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में खेला जा रहा है। इस मैच का आंखों देखा हाल बारी बारी से हिंदी और अंग्रेजी में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे रात 8 बजे से मैच की समाप्ति तक। मैच के दौरान समाचार संध्या 8:45 पर हम दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। इसके बाद मैच जारी रहेगा मैच की समाप्ति तक। ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम।

0: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब भोपाल से होंगे।
1: समाचार बस कुछ ही पलों में होंगे।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कैबिनेट ने मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के लिए 10,783 करोड़ रुपए की 3 रेल परियोजनाओं को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सागर अवैध शराब हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दिए। संभागायुक्त और आईजी भी बदले गए। न्यायमूर्ति अल्पेश यशवंत कोगजे ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की। आज मध्य प्रदेश के 30वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। और प्रदेश में 3 दिनों तक भारी बारिश के आसार नहीं, शुक्रवार तक हल्की बौछारों की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश समेत 5 राज्यों को रेलवे का बड़ा तोहफा मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने करीब 10,783 करोड़ रुपए की 3 मल्टी ट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इससे लगभग 656 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क का विस्तार होगा। इस फैसले के तहत एमपी में कटनी पेंड्रा रोड 4थी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड 3री लाइन का निर्माण होगा, जिससे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का

0: आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सागर में हुई घटना के पीड़ितों और बीमार लोगों से उन्होंने मुलाकात की है और प्रशासन के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने ऐसे मामलों में कड़े कानून बनाए हैं जिनमें हत्या के आरोप से लेकर उम्र कैद और मौत की सजा तक के प्रावधान है।
1: भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसमें कानून बनाया कि अगर इसमें 49 का और बाकी 304 जोड़ते हुए इसमें हत्या से लगा करके आजम कारावास और फांसी तक की सजा देने का प्रावधान है, जो इस प्रकार की घटना में लिप्त है, हमने प्रशासन को फ्री हैंड दिया कि वो इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे।
0: मुख्यमंत्री ने सागर में अवैध शराब से मृत्यु के मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर श्री दिलीप कुमार ने सागर संभाग के आयुक्त पद की कमान संभाल ली है। वहीं श्री इरशाद वली को सागर पुलिस रेंज का नया पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में 9वीं आसियान भारत कृषि और वानिकी मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान के संबंध हजारों वर्ष पुराने हैं और दोनों पक्षों के किसानों की छोटी जोत, महंगी मशीनरी, बदलते मौसम और बाजार तक पहुंच जैसी चुनौतियां समान हैं। उन्होंने कहा है कि विज्ञान, नवाचार और किसानों के अनुभव के जरिए इन चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है।
2: हमारी सभ्यता है अपनी करता हमें अपना पन देती, हमारी समाज किसी चुनौतियां हमें साथ काम करने के कारण देती और विज्ञान, नवाचार तथा किसानों का अनुभव हमें समाधान देती। आइए इस बैठक से संदेश जाए कि भारत और आसियान खाद्य सुरक्षा, किसान समृद्धि, जलवायु लचीलापन और प्रकृति के संरक्षण के लिए साथ खड़े हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी चर्चा से ठोस, मापने योग्य और किसान केंद्रित परिणाम निकलेंगे। नौवीं आसियान भारत कृषि एवं वानिकी मंत्रिस्तरीय बैठक की पूर्ण सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।
0: उज्जैन नगर निगम ने सड़क चौड़ीकरण की जद में आए प्राचीन खड़े हनुमान मंदिर की मूर्ति को सुरक्षित स्थानांतरित करने के लिए आईआईटी इंदौर की विशेषज्ञ टीम से मदद मांगी है। कंठाल चौराहा से छतरी चौक तक सड़क चौड़ीकरण के लिए पिछले 6 दिनों से मूर्ति हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद प्रतिमा अपनी जगह से नहीं हिल सकी। आईआईटी इंदौर की टीम ने बुधवार को आधुनिक उपकरणों से मूर्ति की गहराई और आसपास की मिट्टी की जांच की। बेसाल्ट पत्थर से बनी इस कालीन मूर्ति को बिना नुकसान पहुंचाए हटाने की संभावना विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर तय की जाएगी। उज्जैन जिला प्रशासन ने कहा है कि श्रद्धालुओं की भावनाओं का पूरा सम्मान किया जाएगा और मंदिर या प्रतिमा को बिना सहमति के दूसरी जगह स्थापित नहीं किया जाएगा। तेंदुआ शिकार और तस्करी मामले में फरार मुख्य आरोपी को हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ से राहत नहीं मिली है। गिरफ्तारी से बचने के लिए दायर याचिका न्यायालय ने निरस्त करते हुए आरोपी को जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अब तक हरियाणा, मध्य प्रदेश और दिल्ली के 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों से तेंदुआ के अवैध 6 लेग होल्ड ट्रैप और 1 चाकू जब्त किया गया है। जांच में शिवपुर और मुरैना के चीता लैंडस्केप में 10 तेंदुओं के शिकार के साक्ष्य मिले हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मनोनीत मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अल्पेश यशवंत कोगजे ने कल भोपाल पहुंचकर लोकभवन में राज्यपाल बंगूभाई पटेल से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने राज्यपाल का पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। न्यायमूर्ति कोगजे मध्य प्रदेश के 30वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। वे आज 10 सितम्बर को आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण करेंगे। वे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक रुसिया का स्थान लेंगे। इससे पहले न्यायमूर्ति कोगजे गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नकली और अमानक बीज के खिलाफ कड़ा कानून लाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आज देश भर के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर प्रस्तावित सीड एक्ट पर उनके सुझाव लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को अच्छी गुणवत्ता का बीज मिले और नकली बीज बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बालाघाट के बैहर विकासखंड के बैगा जनजाति बाहुल्य ग्राम

कोठरी में संभागायुक्त धनंजय सिंह ने कल रात चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, वनाधिकार, पट्टा, पेयजल, रोजगार और आजीविका से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय पर दिलाने के निर्देश दिए। प्रदेश में मानसून फिलहाल कमजोर है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले तीन दिनों तक कहीं भी भारी या अति भारी बारिश की संभावना नहीं है। शुक्रवार तक कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को पश्चिमी मध्य और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसका असर शनिवार से प्रदेश में दिखाई दे सकता है। शनिवार को छतरपुर, पन्ना, दमोह और कटनी में भारी बारिश का अनुमान है। प्रदेश में गेम डेवलपमेंट की नई प्रतिभाओं को मंच देने के लिए एमपी गेम उड़ान की शुरुआत होगी। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर में 24 से 26 सितंबर तक तीन दिवसीय गेम जोन आयोजित किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में वाणिज्यिक कर विभाग की संभागीय संयुक्त आयुक्त मिक्की अग्रवाल ने नागरिकों से कर चोरी और कर संबंधी अनियमितताओं की सूचना विभाग को देने की अपील की है। अशोकनगर जिले में जीवन रक्षक पुरस्कार दिए जाने के लिए प्रतिभागियों का चयन किए जाने के निर्देश गृह विभाग ने दिए हैं। स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन और पंजीयन 2026 योजना के तहत आगर मालवा जिले का चयन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया है। कटनी में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रेमनगर बस्ती में निर्मित 102 आवासों का पारदर्शी लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से आवंटन किया गया। झाबुआ जिले में सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर के 280 पदों पर भर्ती के लिए विकासखंडवार शिविर आयोजित किए जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया 17 सितंबर से 3 अक्टूबर तक जिले के सभी 6 विकासखंडों में होगी। धार जिला मुख्यालय पर उदय रंजन क्लब मैदान में द्वितीय जिला ओपन स्कूल पिकल बॉल टूर्नामेंट 2026 का शुभारंभ कलेक्टर राजीव रंजन मीणा द्वारा किया गया। निंडौरी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बूंदर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंडला में कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को अध्यापन कराने वाले शिक्षकों का 6 दिवसीय जिला स्तरीय अकादमिक प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ। ग्वालियर जिले में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गेश जाटव के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं रवींद्रनाथ मिश्रा से उनका काव्य पाठ।
1: मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत एक गीत से करना चाहता हूं।

जीवन आखिरी बन पछतावे की अलमारी में कुछ भूले वादे भी हैं, पछतावे की

रातें भीगी जब रिमझिम बरसातों में, रातें भीगी जब रिमझिम

भीगी जब रिमझिम बरसातों में, काजल की कोरों ने अपना नाम लिखा। एक नया प्रयोग देखे, धूप थकी चलकर दिन भर एक प्यास लिए, धूप थकी चलकर दिन

यादों की माचिस की जब भी तीली जली, यादों की माचिस की जब भी तीली जली, तब तेरे

अपना नाम लिखा। इसका आखिरी बंद, हुड़दंगी नदियां ने पहनी जब पायल, हुड़दंगी नदियां ने पहनी जब पायल।

0: लिखा।
1: अभी आपने सुना रविंद्रनाथ मिश्रा से उनका काव्य पाठ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं समीर की लिखी गीत रचना। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में इसे गाया है तौसीफ अख्तर ने। फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है।

0: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
1: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
0: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड एचआईवी टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एचआईवी एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस्ड ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
2: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: इतनी रात में SMS, KYC अपडेट कीजिए, नहीं तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। लिंक पे क्लिक करता हूँ, ब्लॉक ना हो जाए।
5: रुको, चेक किया, लिंक सिक्योर है, सेंडर आपका बैंक ही है। KYC अपडेट के लिए अनजान लिंक खोलना मतलब अनजान लोगों के लिए अपने अकाउंट का दरवाजा खोलना। झूठी जल्दबाजी में ना फंसिए और फर्जी KYC अपडेट लिंक से बचिए। RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक का गाया, समीर का लिखा और नदीम श्रवण का संगीतबद्ध किया ये गीत। फिल्म का नाम है हम है राही प्यार के।

सोनू निगम और अलका याग्निक का गाया ये गीत फिल्म जीत से है। समीर और नदीम श्रवण की गीतकार संगीतकार जोड़ी।

और आइए अब कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं फिल्म साथी का ये गीत। गीतकार संगीतकार समीर और नदीम श्रवण, आवाज़ें अनुराधा पौडवाल और जॉली मुखर्जी की।

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। सुबह के 8 बजते हैं समाचार
1: प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए। राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु नियमों का पालन न करने को लेकर ईरान का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजा। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में अमरीका के दोनों खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफू आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल है। इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं से लगभग 52 लाख की आबादी वाले लगभग 2100 गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि

0: सरकार ने सबसे व्यस्त सभी 7 रेलवे कॉरिडोर को 4 लाइन का बनाने का फैसला किया है। इनमें दिल्ली हावड़ा, मुंबई हावड़ा, दिल्ली मुंबई, दिल्ली गुवाहाटी, दिल्ली चेन्नई, हावड़ा चेन्नई और मुंबई चेन्नई शामिल है। इनमें से करीब 2000 किलोमीटर रेल मार्ग को पहले ही 4 लाइन का बनाया जा चुका है।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है। उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में श्री वैष्णव ने कहा कि ये सेवा अगले साल शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य प्रगति पर है और सूरत से वापी तक प्रारंभिक 100 किलोमीटर का खंड जल्द ही खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से विरासत और वन्य जीव पर्यटन को विशेष बढ़ावा मिलेगा और साथ ही लॉजिस्टिक लागत कम करने में मदद मिलेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुँच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहा है ताकि वे देश के आर्थिक विकास पर बड़ी भूमिका निभा सकें। श्री गोयल ने बताया कि भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं।
5: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
0: लखपति दीदी पहल का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और देश की आर्थिक प्रगति में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। ब्रिक्स देशों के बीच संवाद और सहयोग से सदस्य देशों, साझेदार देशों और पूरी दुनिया के लिए अधिक समृद्ध भविष्य का रास्ता तैयार होगा। श्री गोयल ने बताया कि भारत ने 2047 तक अपनी अर्थव्यवस्था को मौजूदा $4 ट्रिलियन से बढ़ाकर $30 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान

0: शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। रक्षा मंत्री ने डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया को श्रीलंका और भारत दोनों में महिलाओं के लिए एक आदर्श और महिला सशक्तिकरण तथा नारी शक्ति का प्रतीक बताया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने का फैसला किया है। करीब 20 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब IAEA बोर्ड ने ईरान को इस तरह सुरक्षा परिषद के सामने भेजा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 35 सदस्यीय बोर्ड ने कल इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव के पक्ष में 23 वोट पड़े, 5 विरोध में और 8 सदस्य मतदान से दूर रहे। ये प्रस्ताव अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने पेश किया था। रूस, चीन और नाइजर ने इसके खिलाफ वोट किया। ये कदम अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से जारी सैन्य टकराव और बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय शिष्टमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज, बचाव और फोरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर 8वां भारतीय वायुसेना विमान काठमांडू पहुँचा। एक रिपोर्ट।
2: 26 अगस्त से शुरू किए गए निरंतर सहायता अभियान में भारत ने विशेष तकनीकी उपकरण भी भेजे हैं। इनमें कीचड़ बचाव सूट, गैस डिटेक्टर, श्वास यंत्र, पोर्टेबल जनरेटर, प्रकाश टावर और जल निकासी पंप शामिल हैं। पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए भारत ने DNA किट, अर्भिक्रमक और DNA प्रोफाइलिंग उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के मंत्री महावीर पुन को राहत सामग्री सौंपी। इस बीच भारत के विशेष सुरंग बचाव दल ने नेपाल की सेना के साथ चिलिमे और लोंगटोंग में दो उच्च जोखिम वाले स्थलों पर संयुक्त अभियान शुरू किया। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2 से 3 दिन के भीतर पूरा होने की आशा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना है। केरलम में अलपुजा और एर्नाकुलम जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल तक राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। अमरीकी ओपन पुरुष एकल सेमीफाइनल में बेन शिल्टन की टक्कर फ्रांसिस टियाफो से होगी। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शिल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में गत चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। ये दिवस दुनिया भर में आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद प्रियंका। भारत में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ी खबरों को कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। ब्रिक्स इंडिया सम्मेलन शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार सीमा पार डिजिटल सेवा आसान करेंगे ब्रिक्स देश। ब्रिक्स देशों की डिजिटल सेवाओं के कारोबार में भारत की हिस्सेदारी 48%, दुनिया में 5वां स्थान। राजस्थान पत्रिका का कहना है, ब्रिक्स पर भारत का बड़ा दाव, सीमा पार व्यापार और स्थानीय मुद्रा में भुगतान पर जोर। पत्र ने लिखा है, चीन से सीधी उड़ान, ईरान से चाबहार और रूस से सुखोई फाइटर पर होंगे समझौते। नवभारत टाइम्स के आर्थिक पन्ने की खबर है, कच्चा तेल $100 के पार, पश्चिम एशिया में तनाव, तेल की कीमतों में तेजी से 3 महीने के निचले स्तर पर बाजार। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के शुभारंभ पर वंदे मातरम के पूरे गायन पर कांग्रेस की आपत्ति के जवाब में दैनिक जागरण ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान प्रकाशित किया है। वंदे मातरम कितना और कैसे गाना है, कांग्रेस यह सहयोगियों को ना सिखाए। जनसत्ता की खबर है, ओडिशा में बालासोर के जंगल में मिले 5 वन मानुष। मलेशिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो और सुमात्रा के वर्षा वनों में पाए जाने वाले इन वन मानुष के ओडिशा पहुंचने की जांच शुरू। लौटते मानसून से होगी राजस्थान समेत कई राज्यों में अच्छी बारिश। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, 11 से 15 सितंबर तक चलेगा नया दौर।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए, राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। और मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Union Cabinet approves Railway's 8 multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees. Prime Minister Narendra Modi says Cabinet decision will ensure faster passenger movement, stronger connectivity and additional freight capacity. India calls upon BRICS countries to work together to expand opportunities for women entrepreneurs and women-led enterprises in international trade. India ramps up Nepal flood relief with 8th aid flight specialized tunnel team and forensic experts. IAEA refers Iran to UN Security Council over nuclear non-compliance. IMD issues red alert for heavy rainfall in Odisha today. And in tennis, Ben Shelton and Francis Tiafoe set up an all-American men's singles semifinal at US Open in New York. Union Cabinet has approved 8 multi-tracking railway projects at a total cost of over 20,800 crore rupees. Briefing media after the Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav said, of these projects, 3 multi-tracking railway projects have been approved at a total cost of 10,783 crore rupees. Mr. Vaishnav said these projects cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, increasing the existing network of Indian Railways by about 656 kilometers. Mr. Vaishnav said that these projects are Kharagpur and Jharsugura, 4th line Katni to Pendra Road, 4th line and Bilaspur to Pendra Road, 3rd line. These projects are planned to be completed up to 2029-30. Mr. Vaishnav further informed that the other 5 multi-tracking projects have been approved at a cost of nearly 10,021 crore rupees. The projects cover 17 districts across the states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana, increasing the existing network of Indian Railways by about 540 kilometers. These projects are planned to be completed up to 2029-30. Mr. Vaishnav said these routes include Arnakonam to Renigunta, 3rd and 4th line, Whitefield to Bangarapet, 3rd and 4th line, and doubling of Hosur to Omalur line. The approved multi-tracking projects will enhance connectivity to approximately 2,100 villages having a population of about 52 lakhs.
6: Secunderabad to Kajipet, if you look at it, it basically connects one major corridor which

समय के निरंतर प्रवाह में तारीखें बीत जाती हैं, पीढ़ियां बदलती जाती हैं, लेकिन बीते समय के गलियारों में उन कदमों की आहट सुनाई देती रहती है जिन्होंने एक अलग रास्ता चुना, जिनका हर कदम देश के लिए बढ़ा। भारतीय स्वाधीनता इतिहास के गलियारों में ऐसे अनगिनत कदमों की गूंज सुनाई देती है। ये आहट उन नौजवानों की है जिन्होंने गुलामी के अंधेरों के बीच भी आज़ादी के सूरज का स्वप्न देखा, जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों के भाग्य में स्वाधीनता का सौभाग्य लिखा और अपनी सांसें देश के नाम कर दीं। ऐसे ही एक अमर बलिदानी हैं शहीद बूटा सिंह। अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंकने के लिए देश के भीतर और बाहर कई आंदोलन चलाए गए, लेकिन 20वीं सदी के आरंभ में शुरू हुए गदर आंदोलन का स्थान इन सबसे अलग और अनूठा है। गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य विदेशी धरती से

भारत में क्रांति की अलख जगाना और ब्रिटिश भारतीय सेना की बैरकों के भीतर तैनात भारतीय सैनिकों के माध्यम से एक व्यापक सैन्य संघर्ष आयोजित करना था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सन 1915 में गदर पार्टी द्वारा बुना गया सैन्य संघर्ष का तानाबाना इतना व्यापक था कि इसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। इस योजना में ब्रिटिश भारतीय सेना की 23वीं कैवलरी के सैनिक भी शामिल थे। इसी रेजिमेंट के घुड़सवार सैनिक थे बूटा सिंह। बूटा सिंह का जन्म पंजाब के अमृतसर जिले के कसैल नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम चंचल सिंह था। कसैल और उसके आसपास का क्षेत्र शुरू से ही अपनी देशभक्ति और धर्मनिष्ठा के लिए जाना जाता था। खेती किसानी के बीच ऐसे ही वातावरण में उनकी परवरिश हुई। इस तरह बूटा सिंह को बचपन से ही धार्मिक संस्कार, ईमानदारी और मातृभूमि के प्रति गहरी निष्ठा अपने परिवार से विरासत में मिली।

बूटा सिंह की आरंभिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई। उस समय पंजाब में ग्रामीण युवा आजीविका के लिए अक्सर सेना में भर्ती हुआ करते थे। बूटा सिंह शारीरिक रूप से बलिष्ठ, अनुशासित और अत्यंत साहसी थे, इसलिए युवावस्था में प्रवेश करते ही वो ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हो गए। अपनी योग्यता और क्षमता के बल पर बूटा सिंह 23वीं कैवलरी में एक सैनिक के रूप में नियुक्त हो गए। 23वीं कैवलरी ब्रिटिश भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण टुकड़ी थी, जिसे एक प्रसिद्ध घुड़सवार रेजिमेंट के रूप में जाना जाता था। इस रेजिमेंट में पंजाब के वीर जवानों की बड़ी संख्या थी। एक सैनिक के रूप में बूटा सिंह अत्यंत अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ और अपने साथी सैनिकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय थे, लेकिन वर्दी पहनने के बावजूद उनके सीने में भारत माता की गुलामी की टीस हमेशा बनी रहती थी। सन 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, तो अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को यूरोपीय और एशियाई मोर्चों पर अपनी तरफ से लड़ने के लिए भेजना शुरू कर दिया। इसी समय पंजाब और भारत के अन्य हिस्सों में अंग्रेजों के शोषण और उनकी दमनकारी नीतियों के कारण असंतोष अपने चरम पर था। इन परिस्थितियों ने बूटा सिंह जैसे संवेदनशील सैनिकों के मन को झकझोर कर रख दिया था। विदेशों में रह रहे प्रवासी क्रांतिकारी भी उद्वेलित थे। परिणाम स्वरूप बाबा सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी गदर पार्टी के माध्यम से स्वाधीनता संग्राम को एक नई दिशा दे रहे थे। गदर पार्टी का स्पष्ट मानना था कि जब तक ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिक अंग्रेजों का साथ देना बंद नहीं करेंगे और जब तक अपनी बंदूकें अंग्रेजों की तरफ नहीं मोड़ देंगे, तब तक भारत की आज़ादी संभव नहीं है। इसी रणनीति के तहत गदर पार्टी के प्रमुख क्रांतिकारियों ने विभिन्न सैनिक छावनियों जैसे लाहौर, फिरोजपुर, मेरठ और नौगांव में तैनात भारतीय सैनिकों से गुप्त रूप से संपर्क साधना शुरू किया। क्रांतिकारी प्रेम सिंह गदर पार्टी के संगठनकर्ताओं में से एक थे। उन्होंने मध्य प्रदेश के छतरपुर के पास स्थित नौगांव छावनी में तैनात 23वीं कैवलरी के सैनिकों से संपर्क स्थापित किया। प्रेम सिंह ने सैनिकों को गदर पार्टी के उद्देश्यों और अंग्रेजों की नीतियों के दुष्परिणामों से अवगत कराया। बूटा सिंह और उनके साथी सैनिकों के लिए ये एक निर्णायक मोड़ था। प्रेम सिंह के विचारों ने बूटा सिंह के भीतर देशभक्ति की ज्वाला को और अधिक प्रचंड कर दिया। उन्होंने अपनी आजीविका, भविष्य की सुरक्षा और जीवन की परवाह न करते हुए गदर आंदोलन से जुड़ने का संकल्प लिया। बूटा सिंह ने न केवल खुद को इस महायज्ञ से जोड़ा, बल्कि 23वीं कैवलरी के अपने अन्य साथी सैनिकों को भी इस गुप्त सैन्य संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। इस तरह 23वीं कैवलरी की नौगांव में तैनात टुकड़ी यूं तो बाहरी तौर पर अंग्रेजों की सेना नजर आ रही थी, लेकिन बूटा सिंह और उनके अनेक साथी जवान अंग्रेजों के विरुद्ध आज़ादी का शंखनाद करने को तैयार हो चुके थे।

साथी सैनिकों के साथ वो गुप्त क्रांति गतिविधियों में सघन रूप से सक्रिय थे। इसी बीच गदर पार्टी ने 21 फरवरी सन 1915 को पूरे देश में सैन्य संघर्ष की योजना बनाई। योजना ये थी कि देश भर की विभिन्न छावनियों में भारतीय सैनिक अंग्रेज अफसरों को बंदी बना लेंगे या मार गिराएंगे तथा शस्त्रागारों पर कब्जा कर लेंगे और गदर पार्टी का झंडा लहराकर भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कर देंगे। इस व्यापक योजना हेतु सभी सैन्य छावनियों से संपर्क किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश की नौगांव छावनी भी शामिल थी, जिसमें बूटा सिंह तैनात थे। इस विद्रोह को लेकर सैनिकों में बड़ा उत्साह था और तैयारी भी मजबूत थी, लेकिन किरपाल सिंह नामक एक गद्दार ने अंग्रेजों तक ये सूचना पहले ही पहुंचा दी और समय से पहले ही इस योजना का खुलासा हो गया। अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की और कई प्रमुख नेता गिरफ्तार हो गए। विद्रोह की योजना के उजागर हो जाने के बाद भी 23वीं कैवलरी के सैनिकों, विशेष रूप से बूटा सिंह का हौसला टूटा नहीं था। वो छावनी के भीतर रहकर सही समय का इंतजार करने लगे और गुप्त रूप से अपने पास विस्फोटक और हथियार इकट्ठा करते रहे। इस योजना की विफलता के बाद ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों को लगने लगा था कि अब स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन ऐसा था नहीं। मई सन 1915 में 23वीं कैवलरी की टुकड़ी को, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर के पास स्थित नौगांव छावनी में तैनात थी, उसे यहां से हटाकर युद्ध के मोर्चे पर भेजने का फैसला किया गया। सैनिकों को रेलगाड़ी से रवाना किया गया। 13 मई सन 1915 की तारीख थी। सैनिकों को ले जा रही ट्रेन हरपालपुर स्टेशन पर रुकी। सैनिक अपना सामान ट्रेन के डिब्बे में व्यवस्थित कर रहे थे कि अचानक एक बक्सा नीचे गिर पड़ा। इस बक्से में गुप्त रूप से रखी गई विस्फोटक सामग्री, बम और हथियार रखे हुए थे। बक्सा गिरते ही रेलवे स्टेशन में प्रचंड विस्फोट हुआ। धमाका इतना तेज था कि पूरे स्टेशन में अफरा तफरी मच गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। जब पूरे सामान की तलाशी ली गई तो अंग्रेजों के होश उड़ गए। बक्से के भीतर से बम बनाने की सामग्री और हथियार तो मिले ही, गदर पार्टी द्वारा प्रकाशित क्रांतिकारी साहित्य, पर्चे और गुप्त योजना के दस्तावेज भी बरामद हुए। मध्य प्रदेश के हरपालपुर स्टेशन का ये विस्फोट ब्रिटिश सरकार के लिए एक बड़ा झटका था। इस घटना से अंग्रेज ये समझ गए थे कि ये सैनिक सामान्य सैनिक नहीं हैं, बल्कि ये गदर पार्टी के उस गुप्त संगठन का हिस्सा हैं जो ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से उखाड़ने के लिए सेना के भीतर काम कर रहा था। अंग्रेजों ने हरपालपुर स्टेशन और नौगांव छावनी को घेर लिया। गहन जांच शुरू हुई और संदेह तथा साक्ष्यों के आधार पर 18 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन गिरफ्तारियों में बूटा सिंह मुख्य रूप से शामिल थे, क्योंकि वो छावनी में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। इन 18 सैनिकों के विरुद्ध शिमला के पास स्थित डगशाई सैन्य छावनी में कोर्ट मार्शल किया गया और एक तरफा फैसला सुना दिया गया। 12 सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई गई और शेष सैनिकों को आजीवन कारावास की सजा देकर काला पानी भेज दिया गया। मृत्युदंड पाने वाले 12 सैनिकों में बूटा सिंह का नाम प्रमुखता से शामिल था। बूटा सिंह और उनके साथी क्रांतिकारियों को अंबाला सेंट्रल जेल स्थानांतरित कर दिया गया। 3 सितंबर सन 1915 को बूटा सिंह को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। सबसे मार्मिक तथ्य ये है कि उनके परिवार के सदस्यों को उनकी फांसी की सूचना तक नहीं दी गई। इस तरह भारत माता के एक सच्चे सपूत ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। नमन ऐसे अमर बलिदानी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: आकाशवाणी भोपाल से अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। समय है इस घंटे की खास खबरों का।
2: प्रदेश समेत 5 राज्यों को रेलवे का बड़ा तोहफा मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने करीब 10,783 करोड़ रुपए की 3 मल्टी ट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इससे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सागर में हुए घटना अवैध शराब मामले के पीड़ितों से मुलाकात की और स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं, जिनमें हत्या के आरोप से लेकर उम्रकैद और मौत की सजा तक के प्रावधान है। उज्जैन में प्राचीन खड़े हनुमान मंदिर की मूर्ति को सुरक्षित स्थानांतरित करने की संभावना विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर तय की जाएगी। पिछले 6 दिनों से चल रहे परमारकालीन खड़े हनुमान की प्रतिमा को हटाने के प्रयास विफल रहे। प्रशासन ने कहा है कि श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए मंदिर या प्रतिमा को बिना सहमति के दूसरी जगह स्थापित नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मनोनीत मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अल्पेश यशवंत कोगजे मध्य प्रदेश के 30वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। वे आज 10 सितंबर को आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण करेंगे। इससे पहले न्यायमूर्ति कोगजे गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दे रहे थे और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 3 दिनों तक कहीं भी भारी या अति भारी बारिश की संभावना नहीं है। शुक्रवार तक कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। शनिवार को छतरपुर पन्ना दमोह कटनी में भारी बारिश का अनुमान है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
3: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। लीजिए सुनिए सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तूलिका का नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं यहाँ से सवाल तो आपसे पूछ सकती हूँ कि आप कैसे हैं, या आपका अभिवादन कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, बदले में आपके जवाब मुझ तक नहीं पहुँचते, ना ही मैं आपकी शक्ल देख पाती हूँ कि आप मेरे सवाल के बदले मुस्कुरा रहे हैं या आपने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। हालांकि जब भी आप किसी को अभिवादन करते हैं या सामने पढ़ते हैं, मुस्कुराते हैं, तो आपकी उम्मीद यही होती है कि वो पलट के जवाब देगा, होती है ना? सोचिए हम कितनी नाउम्मीदी में जी रहे हैं, क्योंकि हमें अपने अभिवादन का जवाब नहीं मिलता। श्रोता साथियों, कभी आपने सोचा है कि यदि ये आमने सामने आपके मित्रों, आपके परिचितों, आपके संबंधियों के साथ यदि आप रह रहे हों और आप अभिवादन करें और सामने से चिरपरिचित जवाब न मिले तो क्या हो, आपको कैसा लगता है? यकीनन थोड़ा सा मन में खटका उठता है, कहीं हमसे कुछ गलती तो नहीं हो गई, सामने वाला नाराज़ तो नहीं है, ऐसे विचार आते हैं? बिल्कुल आते होंगे। ऐसे विचार भी आते हैं क्या कि चिर परिचित जवाब न मिलने पर आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि सामने वाले का मूड खराब है, या वो किसी गहरी चिंता में है, या फिर वो किसी डिप्रेशन में है, या उसके मन में इतनी चिंता है कि उसका मन आत्महत्या की तरफ बढ़ रहा है? ऐसे विचार मेरे ख्याल से अधिकांश लोगों के मन में नहीं आते, लेकिन हाँ, हमें ऐसी संभावनाओं से बिल्कुल भी गुरेज नहीं करना है। यदि आपके मन में ऐसे सवाल आ रहे हैं तो समझिए आप ज़्यादा मानवीय तौर पर अपने संबंधों से जुड़े हुए हैं। ये बातें हम क्यों कर रहे हैं? आज दरअसल 10 सितंबर को हम मनाते हैं विश्व आत्महत्या निरोध दिवस। ये दिवस जब से भी मनाया जा रहा है, तब से लेकर अब तक यही प्रयास किए जा रहे हैं कि आत्महत्या के जो केसेस हैं उनमें कमी लाई जा सके। और कमी लाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि हम अपने संबंधों को ऐसा बनाएं कि आपस में होने वाले जो परिवर्तन है, मानसिक परिवर्तन है, व्यवहारगत परिवर्तन है, उनको नोटिस किया जा सके। हमारे आसपास के ही लोग अचानक से आत्महत्या कर लेते हैं और उसके बाद हम पड़ताल करते हैं कि हाँ, उसके व्यवहार में हम परिवर्तन तो देख रहे थे लेकिन हम समझ नहीं पाए। तो ये जो आसपास के लोग समझ नहीं पाते हैं ना, बस यही समझ डेवलप करने के लिए हमें हमेशा प्रयासरत रहना है। और चूंकि 10 सितंबर को आत्महत्या निरोध दिवस मनाया जाता है, इसलिए पूरे सितंबर माह को आत्महत्या निरोध माह के रूप में मनाया जाता है। तमाम सारी संस्थाएं जो हैं इस संदर्भ में लोगों को जागरूक करती हैं, और इसी जागरूकता के लिए ही हम आज आपसे बात कर रहे हैं। श्रोता साथियों, दरअसल ज़रूरत होती है बात करने की, कहने की, सुनने की। हम अच्छे श्रोता नहीं बन पाते, अपनी बात कह के चल देते हैं, दूसरे की बात सुनने की का समय हमारे पास नहीं है, या यूं कहें कि धैर्य नहीं है हमारे पास। यदि हम किसी का अभिवादन करते हैं या स्वीकार करते हैं किसी का अभिवादन, तो हमें किस तरह से अभिवादन को सामने वाला स्वीकार कर रहा है, इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। हमारे आसपास हमारे मित्र, हमारे परिचित, हमारे संबंधी हो सकते हैं, जिनके व्यवहार में यदि आप अचानक परिवर्तन देखते हैं, तो आपको भी सचेत हो जाना चाहिए। सामने वाले से ज़्यादा देर तक बात करनी चाहिए। हो सकता है आपसे की गई वो थोड़ी सी बातचीत उसके मनस्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन ला दे। यही चीज़ आपके साथ भी है। यदि आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, किसी तरह का तनाव दबाव महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा डिप्रेस्ड हैं, या मन कहीं नहीं लग रहा, तो किसी भी व्यक्ति से बात कीजिए, जिंदा व्यक्ति से बात कीजिए,
मैं यहाँ बिल्कुल आपसे नहीं कहूँगी कि किसी सोशल मीडिया के व्यक्ति से बात कीजिए, आभासी व्यक्ति से बात कीजिए। हाँ, आप किसी सच में परिचित, जिससे आप मिल चुके हों व्यक्ति से, उसको फ़ोन कर सकते हैं। रैंडम किसी भी नंबर पर फ़ोन लगाकर, जिसे आप नहीं जानते हैं, उससे बात करना थोड़ा सा मुश्किल है, जब तक कि वो व्यक्ति ट्रेंड ना हो किसी को भी मानसिक तौर पर सांत्वना देने के लिए, जो स्पेशल काउंसलर्स होते हैं वो ना हो, तब तक आप किसी रैंडम व्यक्ति से बात करके अपनी समस्याओं का समाधान नहीं पा सकते। तो सबसे पहली चीज़ है बात करना। यदि हम आपस में बातचीत करते रहेंगे तो हम ऐसी परिस्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे जहां हम में से कोई भी आत्महत्या की तरफ उन्मुख हो सके। दरअसल आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमारे पास बात करने का

समय नहीं रह गया है। हम रुक कर दो मिनट किसी से बात नहीं करना चाहते। एकदम आखिरी मोमेंट पर हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, दौड़े दौड़े अपने कार्यस्थल पर पहुंचते हैं। रास्ते में यदि कोई मिल गया, दो मिनट बात करने की कोशिश यदि सामने वाला कर रहा है, तो हमें लगता है यार इससे हम बात करेंगे तो हम दो मिनट लेट पहुंचेंगे अपने कार्यस्थल पर। ऐसा ही होता है ना। ये दो मिनट आपने कहाँ गंवाए हैं जो उससे बात नहीं कर पा रहे हैं? जी हाँ, ये दो मिनट आपने अपने मोबाइल फ़ोन को स्क्रॉल करते हुए बिताए हैं, जो आप उस व्यक्ति को दे सकते थे जिसको आपसे बात करके थोड़ी सी राहत महसूस हो। ये बातें हम आपसे इसलिए कर रहे हैं कि जो सामाजिक मेलजोल हमारे समाज की नींव था, सामाजिक व्यवस्था की नींव था, वो धीरे धीरे सामाजिक मेलजोल कम होता जा रहा है। आप याद कीजिए, आपने पिछले दिनों कब किसी की मेहमान नवाजी कबूल की है, या ख़ुद किसी को घर पर बुला करके थोड़ा समय क्वालिटी टाइम बिताया है? ये मेलजोल कम होता जा रहा है। पहले हर छुट्टी में या हर फुर्सत के समय साथ मिलकर बैठने का रिवाज था, पिकनिक हुआ करती थी। आज पिकनिक के नाम पर आप मॉल चले जाते हैं, जहां आप व्यस्त हो जाते हैं, या तो किसी मल्टीप्लेक्स में बैठकर सिनेमा देखने के लिए आप मॉल जाते हैं, या फिर अपनी शॉपिंग करने के लिए, और आँखों को तमाम सारी चमकदार चीज़ें दिखाई देती हैं तो आपकी ज़ुबान जो है वो बंद हो जाती है और सिर्फ़ आँखें ही तमाम सारी चीज़ें देख रही होती हैं और आपकी पॉकेट ढीली हो रही होती है। आप जाते हैं अपने मन को सुकून देने के लिए ऐसी जगहों पर, लेकिन फिर से वैसे ही अशांत वापस लौट आते हैं। ऐसे संबंध बनाइए जहां जाकर आप हल्का महसूस कर सकें। यदि आपके पास ऐसे संबंध हैं तो ये आपकी खुशकिस्मती है। ऐसे संबंध यदि आपके पास हैं तो आप भी किसी के लिए ऐसा संबंध बनकर दिखाइए। अपने आसपास ऐसा माहौल तैयार कीजिए जिससे कि वहाँ लोग हल्का महसूस करें।

0: किधर है?
1: बेटी का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी अपडेट।
0: ये तो झटपट काम है।
1: कैसे?
0: अगर केवाईसी डिटेल्स में चेंज नहीं या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल, ऑनलाइन या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो।
1: और बाकी चेंजेस?
0: घर बैठे वीडियो केवाईसी या आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, सिर्फ बैंक ऑथराइज्ड चैनल से। ये नूडल्स बनाने जितना आसान है।
1: RBI कहता है
2: KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: श्रोता साथियों, एक और ख़ास बात हम आपसे करना चाहते हैं और वो ये कि आप क्या करें जब आपको ऐसा लगे कि आपका कोई मित्र, आपका कोई साथी थोड़ा सा डिप्रेस्ड है या आप खुद इतने डिप्रेस्ड हैं कि आपका मन बार बार आत्महत्या की तरफ जा रहा है, या किसी में आप इस तरह की बात देखें कि वो इतना निराश है कि अपनी बात तक नहीं कह पा रहा। और यदि काफ़ी लंबे समय तक कोई अपनी बात किसी से नहीं कह पाता तो यकीनन उसका मन आत्महत्या की तरफ जाने लगता है, इस दुनिया से उसका मोह भंग होने लगता है। ऐसे में आपकी मदद कर सकती है नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन लाइफलाइन। ये सिर्फ आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के लिए भी एक राहत साबित हो सकती है जो अपने किसी प्रियजन के आत्महत्या के विचारों या आत्महत्या जैसे व्यवहार से चिंतित हैं। यहाँ फ़ोन करने से फ़ोन पर मौजूद कॉल स्पेशलिस्ट आपको अपने प्रियजन से बात करने का तरीका बता सकते हैं, कुछ संकेत बता सकते हैं जिससे आपको समझ में आए कि क्या सचमुच कोई आत्महत्या की तरफ अग्रसर हो रहा है। उन कारणों को पहचानने में आपकी मदद कर सकते हैं और सही जगह बता सकते हैं कि आप कहां जाकर के मदद ले सकते हैं। नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन लाइफलाइन इतनी प्रभावी है कि यूनाइटेड नेशंस भी उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन के तौर पर देखता है। प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से यदि कोई आत्महत्या की समस्या से जूझ रहा है तो ये हेल्पलाइन बहुत कारगर सिद्ध हो सकती है। दरअसल आत्महत्या की रोकथाम किसी घटना के बाद नहीं, उससे पहले व्यक्ति के मन में चल रहे उथल पुथल को पहचानने से संबंधित है। कई बार व्यक्ति सीधे मदद नहीं मांगता, चुप हो जाता है, निराश हो जाता है, सामाजिक दूरी बना लेता है, खुद को बोझ जैसा बनाने के संकेत देने लगता है। ऐसे संकेतों को नज़रअंदाज करने के बजाय समय पर बातचीत की जा सकती है और उसे मदद उपलब्ध कराई जा सकती है। ऐसी हेल्पलाइंस पर रोज़ बहुत बहुत कॉल्स आते हैं और उसमें ज़्यादातर कॉल आत्महत्या के विचारों से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे व्यक्ति को काउंसलर्स की ज़रूरत होती है जो उनकी गंभीरता का आंकलन करते हैं और उन्हें सही सलाह देते हैं। यदि व्यवहार पहचानना चाहते हैं आप, तो व्यवहार में अचानक बदलाव यदि आपको दिखता है, सामाजिक दूरी बना लेता है व्यक्ति, चीज़ों में उसकी पसंद की चीज़ों में उसकी रुचि कम होने लगती है, नींद में बदलाव हो जाता है, भूख में बदलाव हो जाता है, भूख या तो ज़्यादा लगने लगेगी या कम होगी बहुत ज़्यादा, चिड़चिड़ा हो जाता है, निराश हो जाता है, खुद को दूसरों पर बोझ समझने लगता है, इस तरह की चीज़ें एक साथ यदि हो रही हैं या ऐसी हो रही हैं जिसे नोटिस किया जा रहा है तो आप ज़रूर इंटरवीन कीजिए। ये जो हेल्पलाइन है उसका नंबर है 988। इसके अलावा भी कुछ हेल्पलाइंस हैं जो इस तरह की सहायता देती हैं। कैम्सकेयर करके एक वेबसाइट है जहां जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये सुसाइड प्रिवेंशन अवेयरनेस प्रदान करती है। यदि हम समय पर इन संस्थाओं की मदद लेंगे तो निश्चित तौर पर हम समाज को या समाज के लोगों को आत्महत्या से बचा सकेंगे।

एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। तुलिका आपके साथ है। श्रोता साथियों, आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे आने वाला समय त्योहारों का है। बस कुछ ही दिनों में गणेशोत्सव की शुरुआत हो जाएगी, गणपति स्थापना करेंगे आप। यदि आप अपने घरों में गणपति स्थापना करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी थोड़ा वक्त है, आप बाज़ार में ढूंढिए, मिट्टी की मूर्ति ढूंढिए, पंचगव्य की मूर्तियां भी अब बाज़ार में मिलने लगी हैं, वो ढूंढिए। पीओपी की मूर्ति अब की बार प्रण कीजिए कि आप अपने घर में नहीं लाएंगे और अपने गणेश जी को अपने घर में ही विसर्जित करेंगे। किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी तालाब में विसर्जित करने के लिए नहीं जाएंगे। जिस दिन आप ये प्रण कर लेंगे ना, आप पर्यावरण संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम उठा लेंगे। इसीलिए हम आपको समय पर चेता रहे हैं कि यदि आपको मिट्टी के गणेश जी नहीं मिलते हैं ना, तो अपने शहर के किसी भी कुम्हार के घर जाइए, पॉटर के घर जाइए, उससे चिकनी मिट्टी ले आइए, घर पर अपने हाथों से अपने गणेश जी को गढ़िए और फिर देखिए आपको वो आराधना करने में कितना सुख मिलेगा। और ऐसा कोई भी सामान पूजा में मत रखिए जो बायोडिग्रेडेबल नहीं हो, प्लास्टिक या इस तरह की चीज़ें जो सड़ गल के वापस धरती में नहीं समा सकती हैं, उन चीज़ों का इस्तेमाल न कीजिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस अपील का आप पर ज़रूर असर होगा।

और अब इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी दोस्त तुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सूचना पर कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज हम आपको सुनवा रहे हैं गीतिका उमरेकर का ख्याल गायन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं महेश कुमार बिशोपिया। आइए सुनते हैं राग भैरव में गीतिका उमरेकर से ख्याल गायन।

गीतिका उमड़ेकर से अभी आप सुन रहे थे राग भैरव में ख्याल। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे महेश कुमार विशोपिया। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने को हैं। जिले की चिट्ठी अब भोपाल से हम अनुप्रसारित करेंगे।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नीमच जिले की चिट्ठी। आलेख दिनेश प्रजापति, वाचन स्वर दीपा सिंह। नीमच जिले में इन दिनों प्रशासनिक कार्रवाई से लेकर धार्मिक आयोजनों, कृषि गतिविधियों, सामाजिक सेवा और स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें सामने आई हैं। नीमच जिले में प्रशासन ने अवैध रेत के भंडारण और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की है। नीमच तहसील के गिरदोड़ा गांव में मुख्य सड़क और दुकानों के पास रेत के बड़े बड़े ढेर लगाकर अवैध तरीके से भंडारण किया जा रहा था। दिन में सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद शाम को जिला प्रशासन हरकत में आया। जिला खनिज अधिकारी जगन सिंह भिड़े अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कार्रवाई शुरू की। विभाग ने मौके से करीब 5 डंपर रेत, 3 ट्रैक्टर जब्त किए। इसके अलावा नीमच शहर के ग्वालटोली स्थित श्री कृष्णा कांटे के सामने और उमापति महादेव मंदिर के पीछे भी अवैध रूप से परिवहन और भंडारण की जा रही रेत के खिलाफ कार्रवाई की है। आगामी रवि सीजन की बुआई से पहले जावद कृषि उपज मंडी ऊटी लहसुन के कारोबार का बड़ा केंद्र बन गई है। हाल ही में हुई बारिश और अच्छे मौसम के कारण किसान बड़ी संख्या में बीज के लिए अच्छी क्वालिटी का लहसुन खरीदने मंडी पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के स्थानीय किसानों के साथ साथ राजस्थान के बेगू और सिंगोली बेल्ट से भी किसान बड़ी संख्या में आ रहे हैं। मंडी में हर दिन करीब 40 से 60 गाड़ियां और ट्रॉलियां पहुंच रही हैं। धार्मिक और सामाजिक आयोजनों की भी जिले में धूम रही। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर बघाना उपनगर में अहीर यादव समाज ने वाहन रैली निकाली। रैली बघाना के अहीर मोहल्ले से शुरू हुई और शहर के कई रास्तों से गुजरी। जगह जगह लोगों ने फूल बरसाकर रैली का स्वागत किया। सबसे आगे डीजे की गाड़ियां चल रही थी, जिन पर भगवान कृष्ण के भजन बज रहे थे। इन भजनों की धुन पर युवा और समाज के लोग नाचते गाते दिखाई दिए। वहीं सरवानिया महाराज की सांदीपनी सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भी जन्माष्टमी का उत्सव एक दिन पहले ही उत्साह के साथ मनाया गया। ईद मिलादुन्नबी का पर्व भी श्रद्धा उल्लास और भाईचारे के साथ मनाया गया। जावद में 3 दिवसीय जश्न ईद मिलादुन्नबी कार्यक्रम के अंतिम दिन मुख्य जुलूस निकाला गया। मदरसे के प्रतिभावान बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया। नीमच में सामाजिक सेवा से जुड़े कई कार्यक्रम भी हुए। कनावटी जिला जेल में रक्षाबंधन का पर्व भावुक माहौल में मनाया गया। जेल प्रशासन की विशेष व्यवस्था के तहत करीब 500 कैदियों ने अपनी बहनों से रक्षा सूत्र बंधवाया। दूसरी ओर सिंगोली अंचल में श्री धाकड़ महासभा युवा संघ और टीम जीवनदाता के संयुक्त तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। स्थानीय शासकीय डूम में आयोजित इस शिविर में 538 यूनिट रक्त संग्रह का नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों का मैदानी निरीक्षण भी जारी है। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के सख्त निर्देशों के बाद अपर कलेक्टर BS कलेश ने जिला अस्पताल स्थित ट्रॉमा सेंटर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने OPD और इमरजेंसी वार्ड का दौरा किया। उसके बाद पर्ची केंद्र, डिलीवरी वार्ड, SNCU और सामान्य वार्डों का जायजा लिया। धार्मिक आयोजनों की बात करें तो श्रावण मास के तीसरे सोमवार को नीमच के राजा श्री किलेश्वर महादेव की शाही सवारी निकाली गई। किलेश्वर मंदिर प्रांगण से शाम 4:30 बजे पूजा अर्चना के बाद शुरू हुई सवारी 7 घंटे में 9 किलोमीटर का भ्रमण कर रात 12 बजे वापस मंदिर पहुंची। महाआरती और प्रसादी के साथ यात्रा का समापन हुआ। नया गांव में नागपंचमी के अवसर पर श्री खाकल देव महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा से पहले मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और अभिषेक किया गया। देवनारायण मंदिर से शुरू हुई शोभा यात्रा नगर भ्रमण पर निकली। इसमें बग्गी में नागराज और देवनारायण जी की सवारियों के साथ कैयापुर की कश्मीरी ढोल और डीजे शामिल थे। उधर स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर नीमच में पुलिस और RTO की संयुक्त टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। वीर पार्क रोड स्थित अग्रवाल सन्स घी डीलर के ठिकाने पर छापे के दौरान श्री मूल ब्रांड का शुद्ध घी और गाय का घी मिला। टीम ने मौके पर मौजूद 179 लीटर और 302 किलोग्राम घी को सील किया, जिसकी कुल बाजार कीमत लगभग 2,32,000 रुपए आंकी गई। गुणवत्ता जांच के लिए कुल 8 सैंपल लिए गए। उन्हें परीक्षण के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला ईदगाह हिल्स भोपाल भेजा गया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे नीमच जिले की चिट्ठी। आलेख था दिनेश प्रजापति का, वाचन स्वर दीपा सिंह का था। ये प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दोस्त तुलिका।

ये गीत था मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और आशा भोसले के स्वर में फिल्म शान से। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत राहुल देव बर्मन का, पसंद आप सबकी। MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना और SK पप्पी। गांव कैरो, जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शमी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और उनका पोता गुरशबद। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल। और शेरवानी स्कूल गंजुनवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। कार्यक्रम का अगला गीत आप सबके पसंद पर है। आप हैं जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसमान अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। कुम्भार गली कोलगांव से पांडू चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन और पांडुरंग कुम्भार। बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लक्की नारंग, तानिया नारंग और उनके साथी। और गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और पूजा खटक। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर। बप्पी लाहिरी का गाया फिल्म डिस्को डांसर का ये गीत, गीत अनजान का, संगीत खुद बप्पी लाहिरी का है।

कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर है। आप हैं नया पारा भिरई से वसंत कुमार सूर्यवंशी, सरोज सूर्यवंशी, ईशराज सूर्यवंशी, चंद्रकांत सूर्यवंशी, प्राची और ट्यूशी सूर्यवंशी। बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल और रामनिवास अग्रवाल। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कवर तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। और आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर इंदिवर का लिखा गीत फिल्म मनोकामना के लिए। इसे गाया है बप्पी लहरी ने और संगीत भी बप्पी लहरी का ही है।

सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ सिटी डी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा अनिल शर्मा जयवी ठाकुर अमनदीप कालका से शुभचंद्र बजाज बिट्टा बजाज और साहिल आदर्श नगर मनोट से राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा मैंडी शर्मा सौरभ शर्मा साइना शर्मा और निवान शर्मा ग्राम संदलपुरांतरी से कालीचरण यादव चांदनी यादव दीपक यादव और उर्मिला देवी यादव और दौलत बाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन नईमा बेगम कासिम अली नदीम अली और जुनेद अब्बासी आप सब सुनिए अपनी पसंद पर बप्पी लहरी और अलका याग्निक का गाया अनजान का लिखा और बप्पी लहरी का ही संगीतबद्ध किया ये गीत फिल्म का नाम है फूल बने अंगारे।

0: So, your place or mine?
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम तो
1: क्या हुआ? ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से HIV AIDS और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी, मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा शाइना, विशाल मिगलानी, अनमोल और रमेश मिगलानी, प्रमिलागंज आलोट रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा, और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर आशा भोसले और अमित कुमार का गाया फिल्म इल्ज़ाम का ये गीत। गीतकार अनजान, संगीतकार बप्पी लाहिरी।

दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। सौदागर संतर मुरार से गुड्डू मिश्रा, गिरीश मिश्रा और निशा मिश्रा। धनोरा विटाली तहसील नांदुरा जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल, सचिन पाटिल। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जितेग विरक और मीका विरक। और आप हैं निहारमन टोला मधुबनी बिहार से मोहम्मद साबिर परवाना, मोहम्मद साजिद अली, मोहम्मद जाहिद अली और मोहम्मद शाहिद अली। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर किशोर कुमार के स्वर में फारूक कैसर का ये गीत। फिल्म का नाम है लहू के दो रंग और संगीतकार बप्पी लहरी।

आइए अब आपको सुनवाते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद ग्राम महेशवाड़ी तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, निनाजी धाड़े और स्वप्निल धाड़े, नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी थांडी, प्रियंका, प्रशांत, थियम, बेबी वामिका और वाणी, पटेलनगर मलोट से रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया, आरजू जाजौरिया और गुड्डू। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर एस जानकी और बप्पी लहरी के स्वर में फिल्म साहिब का ये गीत, गीतकार अंजान, संगीतकार बप्पी लहरी।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं अपने इन श्रोताओं की पसंद। आप हैं झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। बोरखेड़ा पित्रामल उज्जैन से विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक और मयंक मुड़त, चेतन नाहटा, दिशा और कुश मुड़त। आप सब सुनिए अपनी पसंद पर मजरू सुल्तानपुरी की लिखी है गीत रचना राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में। फिल्म कालिया के लिए इसे गाया है आशा भोसले और किशोर कुमार ने।

0: इस गीत के साथ ही व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अगला कार्यक्रम मध्य प्रदेश केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।
1: राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज लोकभवन में न्यायमूर्ति अल्पेश यशवंत कोगजे को मध्य प्रदेश के 30वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाएंगे। इससे पहले न्यायमूर्ति कोगजे गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दे रहे थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सागर में अवैध शराब से मृत्यु के मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि ऐसे मामलों के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं, जिनमें हत्या के आरोप से लेकर उम्र कैद और मौत की सजा तक के प्रावधान हैं। उज्जैन में प्राचीन खड़े हनुमान मंदिर की मूर्ति को सुरक्षित स्थानांतरित करने के लिए पिछले 6 दिनों से चल रहे प्रयास विफल रहे हैं। अब विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर संभावना तय की जाएगी। साथ ही श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए मंदिर या प्रतिमा को बिना सहमति के दूसरी जगह स्थापित नहीं किया जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 3 दिनों तक कहीं भी भारी अति भारी बारिश की संभावना नहीं है। शुक्रवार तक कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। शनिवार को छतरपुर पन्ना दमोह कटनी में भारी बारिश का अनुमान है। और प्रदेश में गेम डेवलपमेंट की नई प्रतिभाओं को मंच देने के लिए भोपाल ग्वालियर और इंदौर में 24 से 26 सितंबर तक गेम जैम का आयोजन होगा। प्रतिभागियों को उद्योग विशेषज्ञ मार्गदर्शन करेंगे। इसमें विद्यार्थी डेवलपर्स डिजाइनर्स कलाकार और स्टोरी टेलर्स हिस्सा ले सकेंगे। इसके लिए इंडी कनेक्ट पर MP गेम उड़ान पेज के जरिए निःशुल्क पंजीयन किया जा सकता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज के फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो सखी कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे कि तीज त्यौहार यानी उपासना का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इसे हमें किस तरह करना चाहिए। जानेंगे आप सभी की राय और सुनवाएंगे हमारी पसंद के चंद गीत। तो कॉल कीजिए 2660902 पर। हेलो,
1: नमस्कार।
0: नमस्ते जी, स्वागत है आपका हमारे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में।
1: जी, अमिता जी बोल रही हैं।
0: हाँ, अमिता जी रिटायर्ड हो चुकी हैं, मैं कविता रावत बोल रही हूँ।
1: अरे, आपकी आवाज अमिता जी से मिलती जुलती ही है।
0: अरे
1: बिल्कुल,
0: ये तो बड़ा धोखा है।
1: जी नहीं, पर बात ये स्वीकार नहीं होगी क्योंकि मैं तो आश्वस्त हो चुका था कि शायद अमिता जी से ही बात हो रही है।
0: अच्छा, लेकिन मुझे लगता है शायद अंदाज अलग अलग है हम लोगों का।
1: जी जी थोड़ा बहुत है, पर आवाज की जो गहराई है ना, बस वही है मैडम जी।
0: चलिए, धन्यवाद। वो हमारी काफी सीनियर रही हैं और उनसे आप हमारी तुलना कर रहे हैं।
1: उनकी वजह से भारत वर्ष का श्रोता जो श्रवण आनंद से जो अनुभूति मिली है उनकी आवाज से,
0: जी जी जी जी,
1: उसके तो बस उसका कोई तुलना ही नहीं हो सकती है।
0: लेकिन आपने हमसे तुलना कर दी है।
1: जी, बात ये है जो प्रसारक होता है, मेरा मानना ये है कि प्रसारक एक ऐसा व्यक्तित्व होता है कि जो निष्पक्षता और पूरी पारदर्शिता से जो भी अपनी वाणी की जो मधुरता है उससे जो सुनने वाला श्रोता है उसको एक श्रवणानंद से परिपूर्ण, एक जो उसे कहते हैं कि जो निर्विकार आनंद होता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अपना शुभ नाम तो बताइए, इतनी सारी बातें हो गई आपसे और हमने आपका नाम ही नहीं जाना।
1: मैं गांव बिटोड़ा भोयर से, जिला वाशिम महाराष्ट्र से, योगीराज मस्के, आपका नियमित श्रोता ही हूँ।
0: योगीराज जी
1: जी।
0: अच्छा, अब हम आज के विषय पे थोड़ी चर्चा करें क्या?
1: जी बिल्कुल।
0: आज हमने विषय रखा है व्रत त्योहार का, ये सीजन अपना जो आ चुके हैं मंथ, है ना, लगातार अपने व्रत त्योहार चल रहे हैं।
1: ये बस मान के चलिए श्रावण मास से शुरुआत।
0: बिल्कुल, तो दिवाली तक कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ व्रत त्योहार चलेंगे
1: और सारे त्योहार प्रकृति के जो प्राकृतिक एक विधा है, जो स्नेह भाव की जो विधा है
0: जी,
1: उसी को संवर्धन और संरक्षण के हित में ही ये सारे त्योहार त्योहारों का।
0: तो प्रकृति ने जो भी कुछ रचा है ये हम सब के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही रचा है, लेकिन मानव ने अपने स्वार्थ के चलते इसे इसका प्रतिरूप बदल दिया है, इसका स्वरूप बदल दिया है।
1: इसके लिए हम समूची मानव जो इंसानी नस्ल है यही जिम्मेदार है।
0: वही तो बस यही जानना चाहते हैं कि उपासना का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इसे हमें किस तरह करना चाहिए, इस बारे में आप थोड़ी सी रोशनी डालिए।
1: उपासना तो एक जैसे आपका आपकी जिम्मेदारी है, उपासना आपकी जिम्मेदारी है। जो प्रकृति ने आपको, जब प्रकृति ने आपको जना है तो आपकी एक जिम्मेदारी उसके प्रति ये थी कि आपको उसका संरक्षण और संवर्धन के लिए हर क्षण हर पल आपको सचेत रहकर अपना कार्य निर्वहन करना चाहिए था। पर विगत दिनों जैसे हम कहते हैं कि वैश्वीकरण, ये सारी चीजें, पर हम आज की तौर में अंधाधुन दौड़ते जा रहे हैं, सिर्फ भौतिकता के लिए ही दौड़ते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: जो पूरी तरह से हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत ही बड़ी विपदा का कारण बनने वाली है।
0: हाँ, तो इसे हमें कैसे

0: रोकना है?
1: हमें हम जो भी हमारा हमारी दैनिकी है तो उसमें हम हर रोज हर क्षण हमें जो भी चीजें करनी है पूरी सचेतता से, जैसे मान के चले जल संरक्षण हुआ, आपके आपके आस पड़ोस में वृक्षारोपण हुआ, और ना हम प्रदूषण जितना हो सके कम करें।
0: उससे बिल्कुल। चलिए योगिराज जी, अब हम आपसे माफ़ी चाहेंगे क्योंकि हमारे दूसरे श्रोता सोच रहे होंगे कि आज फोन इन प्रोग्राम है भी कि नहीं है ना।
1: जी, कविता
0: चलिए,
1: जी, पुनः से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए योगिराज जी।
1: जी
0: जी।

0: हेलो,
1: हाँ नमस्कार। कितना
0: नमस्ते जी। स्वागत है आपका हमारे फोन इन प्रोग्राम में।
1: सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी कविता में बहन जी से बात हो ही
0: अरे
1: गई।
0: भाई, क्या बात है, आपने एक ही आवाज में पहचान लिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: एक भाई अपनी बहन को जो है वो कैसे नहीं पहचानेगा।
0: बहुत बढ़िया, आपने सार्थक कर दिया रक्षाबंधन।
1: मैं सोच रहा था, बार बार सोच रहा था, भगवान जी से प्रार्थना कर रहा था कि आज मेरी बहन कविता मैडम से बात हो जाए,
0: जी।
1: और वो मेरा आज पूरा हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। और अब आप अपने भाई का नाम बताइए, मैं कौन बोल रहा हूँ।
0: आप देखिए, अगर हम गलत बोल दें तो प्लीज़ माफ़ी चाहते हैं हम,
1: बिल्कुल
0: पर
1: नहीं चाहे,
0: फूल सिंह
1: बिल्कुल
0: जी
1: मत
0: बोल रहे
1: बोलो,
0: हैं शायद,
1: बिल्कुल
0: हमें ऐसा लग रहा है।
1: है।
0: फूल सिंह जी।
1: ओहो, क्या बात है। अब तो मेरा सीना चौड़ा हो गया आज
0: देखिए,
1: बिल्कुल।
0: जब भाई ने बहन को पहचाना तो बहन का भी कर्तव्य बनता है कि वो पहचान ले, है ना।
1: बहुत खूब, बहुत खूब,
0: चलिए, हमें भी
1: बहुत
0: बहुत खुशी
1: खूब,
0: हुई।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो आप खजुराहो से बोल रहे हैं
1: जी सर, बिल्कुल खजुराहो से बोल रहा हूँ मैं,
0: ना।
1: छतरपुर जिले से।
0: जी। और क्या हाल है फूल सिंह जी आपके?
1: हाल चाल बहुत बहुत बहुत बढ़िया हाल चाल है, और बढ़िया प्यारा सा मौसम भी बढ़िया है,
0: बिल्कुल सही
1: और
0: कह
1: अभी
0: रहे हैं।
1: बरसात जो है बहुत ज्यादा, हमारे बुंदेलखंड में काफी बरसात बहुत ज्यादा हो गई, तो
0: हाँ जी,
1: अब बरसात तो रुक गई है, मौसम साफ हो गया है।
0: मौसम साफ हो गया है, यहाँ पर भी
1: जी
0: साफ हो गया है। थोड़ा
1: जी जी
0: सूरज देवता ने अब दर्शन दिए हैं 2 दिनों से। है
1: जी जी
0: ना।
1: बिल्कुल। और हमें लगता है कि जो है कम से कम 15-20 दिन हो गए, तो बराबर पानी गिरा तो कुछ फसलों को भी नुकसान हो गया।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: वो तो अब ठीक है, कुदरत का क्या फैसला है वो ईश्वर जाने।
0: कहाँ तो पानी की बिल्कुल कमी होने को आ गई थी कि, है ना, बारिश हो ही नहीं रही थी, और कहाँ
1: जी जी
0: कुदरत
1: जी
0: का ऐसा वो कि बढ़िया सब लेवल कर दिया।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है
1: ऐसा
0: ना।
1: लग रहा था कि इस साल पानी बहुत कम होगा, लेकिन यह है
0: हाँ
1: जो चरित्र रचा भगवान ने, यह है मरम
0: बिल्कुल
1: लक्ष्मण न जाना।
0: बिल्कुल।
1: परमात्मा का मरम क्या है, परमात्मा को क्या करना है, वो किसी को पता नहीं है। और उन्होंने कहा है कि वेद हमारे अंग है, हम वेदन के आए, और जो कुछ हमको करना है वो वेदन में ना आए।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फूल सिंह जी, अब हम

0: आज के विषय पे इसी प्रकार का कुछ इसी से रिलेटेड हमारा आज का विषय है कि उपासना का हमारे जीवन में क्या महत्व है।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रखा है आपने जो है। देखिए, उसमें उपासना का एक तालुका जो है एक परमात्मा पे भी जाता है कि हम जब कोई त्योहार होता है तो उपासना करते हैं, व्रत करते हैं, तो वो तो बढ़िया है, लेकिन ये व्रत रखना स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है।
0: तो व्रत किस प्रकार रखना चाहिए ये भी मतलब हमारे बाकी श्रोताओं को थोड़ा सा आप बताएंगे।
1: अभी आपने बताया कहा, मैं सुन नहीं पाया आपका,
0: कि व्रत किस प्रकार का रखना चाहिए, खूब खा पीकर या थोड़ा अपने बॉडी को रेस्ट देकर।
1: देखिए, व्रत रखने का सबसे बड़ा तो एक बात ये है कि व्रत रहने का मतलब होता है कि हम अपने शरीर को यानी एक हफ्ते या सगा एक हफ्ते में भी अगर आप रखें तो उसमें जो रखेंगे आप तो पाचन क्रिया जो होती है आपका जो शरीर का संतुलन होता है वो एक अच्छा रहता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: और इसमें धर्म या कोई भी है वो तो जुड़ा है ही है, उसमें ये कुछ नहीं है, वो तो परमात्मा का मतलब सब कुछ सही है, लेकिन एक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। और अब रही बात ये है कि साथ अगर आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका व्रत रखने के योग्य है कि नहीं है, या मान लो जो है अब कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जैसे निर्जला व्रत रखते हैं जो है, तो उसमें बड़ा एक कई जगह तो हमने ये भी देखा है कविता जी के कुछ महिलाएं जो है पानी की कमी के द्वारा वो जो है मर भी जाती हैं।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: कई जगह हमने देखा है कि जैसे अपना अभी जो आने वाला अभी जो त्योहार है वो उसमें हमारे यहाँ तीज
0: हरतालिका तीज व्रत
1: हाँ तो उसमें महिलाएं जो है
0: निर्जला हाँ जी हाँ
1: तो उसमें कई जगह हमने देखा है कि वो पानी नहीं पीती है 24 घंटे, तो उसमें कई जगह पानी की कमी हो जाती है तो वो बीमार पड़ जाती है।
0: तो वही बात है कि
1: हमने ऐसा भी देखा है कि बहुत बड़ी समस्या बन गई तो माने वो जो है जान से भी हाथ धो देती है।
0: बिल्कुल, तो वही बात है कि उपासना आप अपने मन को शुद्ध करो, तन को शुद्ध करो, वही सच्ची उपासना है। उपासना में ईश्वर ने ये नहीं कहा कि ना आप भूखे रहकर उनकी तपस्या करो, है ना।
1: देखिए, पहली तो सबसे पहली तो ये है बात हम आपसे बोले कि व्रत रखना ठीक है, लेकिन अपने मन का विचार रखना, मन के शुद्धिकरण रखना।
0: बिल्कुल, सबसे पहले मन शुद्ध करना। बिल्कुल, चलिए,
1: व्रत है जो है हम हमारे मन में जो मैल है वो भरा हुआ है,
0: उसे सबसे पहले दूर करना है।
1: हम दूसरे के प्रति गलत भाव सोच रहे हैं, तो ये व्रत का मतलब क्या है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए फूल सिंह जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बाकी श्रोता,
1: कविता जी, मैं आपको बता दूं कि मेरा तो देखिए मैंने तो पूरा जीवन हो गया, मैंने तो आज तक कभी व्रत रखा ही नहीं है।
0: हाँ, लेकिन आप सत्कर्म कर रहे होंगे, वही आपका व्रत है।
1: बस बस बस बस, क्या बात है, पर है तो सनत धर्म नहीं। बिल्कुल, देखिए क्या है, दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, है ना। चलिए फूल सिंह जी, हम आपसे अनुमति चाहते हैं क्योंकि हमारे बाकी कॉलर भी लाइन में है। ठीक है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी, धन्यवाद,
1: नमस्कार,
0: नमस्ते।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते
1: नमस्ते नमस्ते जी।
0: जी। शुभ नाम आपका?
1: मेरा
0: आपका शुभ नाम क्या है?
1: नाम प्रियस परिहार।
0: प्रियेश परिहार।
1: ग्राम
0: कहाँ से?
1: लाहौली, जिला रीवा, मध्य प्रदेश
0: प्रियेश परिहार रीवा से।
1: जी।
0: प्रियेश जी, आपने पहली बार कॉल किया है क्या?
1: नहीं, पहली बार नहीं किया है, किया था कई बार, लगता ही नहीं है, लगता रहता है, कभी कभार लगा है।
0: मेरी तो आपसे पहली बार ही बात हो रही है।
1: आपका शुभ नाम?
0: कविता रावत।
1: नहीं, हुआ है, एक आध बार हुई है, पर बहुत दिन में लगता, हमारा लगता नहीं, पता नहीं, बहुत कम लगता। मैं लगता कि
0: कंटिन्यूअसली
1: आपका
0: प्रयास
1: कॉल
0: करते
1: डेली।
0: रहिए, लगा करेगा।
1: अच्छा, ये बताइए,
0: हाँ जी,
1: ये रिकॉर्डिंग कब से कब तक होती है?
0: ये 10:30 से लेके 11, कभी कभी 11:30 तक भी हो जाती है। और
1: जी
0: प्रोग्राम आएगा नेक्स्ट डे, कल आएगा यानी 11 बजे।
1: जी जी आज
0: अच्छा,
1: है क्या? तो
0: आज रिकॉर्डिंग हो रही है और ये प्रोग्राम कल आएगा।
1: आज काहे का है?
0: आज हम बात कर रहे हैं कि उपासना का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस विषय पर। हम उपासना, व्रत, तो बताइए आप।
1: ये अपने आस्था पर निर्भर
0: हाँ जी
1: अपने आस्था पर निर्भर करता है। देखिए,
0: हाँ जी, तो इतने शॉर्टकट में निपटा देंगे क्या? थोड़ा सा डिटेल में बताइए।
1: जिसका जिस पे विश्वास हो, कोई करता है, कोई नहीं करता, कोई भी जरूरी थोड़ी है।
0: ज़रूरी नहीं है, लेकिन सच्ची उपासना किसे कहते हैं आप?
1: उपासना मतलब ये जो व्रत करते हैं, इसको बोलते हैं आप?
0: उपासना यानी यही कहलाता है कि जिसे हम व्रत करते हैं। लेकिन उपासना का दूसरा अर्थ ये भी है कि अपने मन को भी शुद्ध करना, सत्कर्म करना, दूसरों की मदद करना, ना कि सिर्फ भूखे
1: जी
0: रहकर भगवान का भजन करना।
1: जी हाँ, ये तो सब करते हैं, अपन भी करते हैं, ऐसा नहीं है।
0: हाँ जी।
1: हमारे पास जो भी लड़के आते हैं, सबको पढ़ाता हूँ।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, स्टेट बैंक में मैनेजर था।
0: अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। प्रियेश जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लगातार प्रयास करते रहिएगा, आपका कॉल भी लगा करेगा। ठीक है
1: अच्छा, ठीक है,
0: जी,
1: थैंक
0: नमस्ते।
1: यू।

0: हेलो। हाँ
1: हेलो,
0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते जी। मैं राधा बोल रही हूँ जी,
0: राधा
1: सतना
0: कहाँ से?
1: से।
0: अच्छा, आपसे पहले भी बात हो चुकी है।
1: हाँ, उस दिन मेरा लगा नहीं था,
0: हाँ
1: नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ था इस कारण जी।
0: कोई बात नहीं। और क्या करती हैं राधा जी, अभी क्या कर रही थी आप?
1: जी, घर में ही अभी नाश्ता बना के बच्चों को दिया है।
0: और अब जो व्रत त्योहार अपने आ रहे हैं, तो उनमें आप भी उपासना रखती होंगी, तो ईश्वर की उपासना आप किस तरह करती हैं?
1: मेरे लिए तो जैसे मैं उठती हूँ सवेरे, अपने घर की साफ सफाई और भगवान की जिस दिन जो व्रत होता है मैं उनका स्मरण करती हूँ पूरा दिन, और कोशिश करती हूँ कि किसी की बुराई ना करूँ,
0: सिर्फ उसी
1: सबसे
0: दिन
1: पहला।
0: या बाकी दिन भी?
1: बाकी नहीं, मैं ज्यादातर तो मैं ज्यादा किसी से बोलती चलती हूँ कि ज्यादा
0: हाँ
1: बोलो तो ये होता है कि दूसरे की बुराई ज्यादा निकलती है,
0: बिल्कुल
1: ये
0: सही।
1: हम लोगों का है ही। चाहे वो घर का रहे, बच्चों के बारे में कहे, पड़ोसी के बारे में कहे, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कम शब्दों में अच्छे बोले और बहुत अच्छा बोले कि जिनके लिए फायदेमंद हो।
0: बहुत अच्छी बात बोली आपने, और मुझे लगता है आपकी इन बातों से हमारे बाकी श्रोता भी लाभान्वित होंगे,
1: जी
0: है ना? तो ठीक है,
1: जी
0: इसी प्रकार की उपासना हम अपने सारे श्रोताओं से चाहते हैं कि, है ना, मन शुद्ध करें, किसी की निंदा ना करें, दूसरों की जितनी संभव हो मदद करें, यही सच्ची
1: जी
0: उपासना है ना?
1: सही कहा आपने, बिल्कुल
0: ठीक है राधा जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: आपका भी।
0: जी।

0: हेलो
1: मैडम, नमस्ते
0: नमस्ते।
1: जी। आज कुछ कौन सा कार्यक्रम चल रहा है?
0: आज चल रहा है बात आपकी गीत हमारे।
1: अच्छा, बात आपकी गीत हमारे। कौन सा विषय है आज का?
0: आज विषय हमने रखा है कि उपासना का हमारे जीवन में क्या महत्व है।
1: अच्छा, जो व्रत करते हैं वो।
0: बिल्कुल, आप
1: अच्छा
0: व्रत
1: अच्छा
0: किसे कहते हैं ये भी हमें आपसे जानकारी चाहिए।
1: जो उपवास होता है उसी को हम लोग व्रत के नाम से सुनते आए हैं कि भाई चलिए आज जैसे अभी अभी जन्माष्टमी गुजरी।
0: अच्छा, सबसे पहले आपसे माफी चाहेंगे, नाम तो बताइए अपना।
1: हाँ, वो बात शुरू हो गई थी।
0: हाँ,
1: मैं सोमत सिंह बात कर रहा हूँ धार से। जी
0: अच्छा, सोमत सिंह।
1: जी पहले भी आपसे बात हुई है
0: हाँ, हो
1: मेरी।
0: चुकी है आपसे।
1: हाँ,
0: हाँ, अब बताइए।
1: तो व्रत भी हम लोग सुनते आए हैं उसी को, और उसी को उपवास सुनते आए हैं। अब ऐसे तो मतलब अब ये फर्क जो है वो तो मुझे, मैं अभी नहीं आपको क्लियर कर पाऊंगा कि दोनों के मतलब तो एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है, तो उनका क्या होगा मुझे नहीं पता।
0: मैं बताती हूँ ना, उपासना यानी ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करना। और ईश्वर क्या चाहता है? ईश्वर ये नहीं चाहता कि आप भूखे रहकर, निर्जला रहकर उनका व्रत या उपवास रखें और उनकी आराधना करें। वो चाहता है कि समाज में सद्भावना हो, लोग एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की निंदा ना करें। यही हमें ऐसा लगता है कि यही सच्ची उपासना
1: हाँ, वो तो है, वो तो है। और
0: है ना?
1: इसका ये भी एक, और दूसरा एक कहीं ना कहीं ये भी है कि अगर हम उपवास करते हैं तो अपने खुद के शरीर के लिए भी तो कहीं ना कहीं फायदे होते हैं।
0: बिल्कुल होता है। तो उससे भी यदि हमें ना, एक दिन कहते हैं ना कि सबको आराम की जरूरत है,
1: हाँ
0: रेस्ट
1: जी,
0: सब
1: बिल्कुल,
0: चाहते हैं, तो ऐसे ही हमारा शरीर भी रेस्ट चाहता है। तो एक
1: बिल्कुल
0: दिन का
1: बिल्कुल।
0: उसको रेस्ट दिया जाए, महीने में एक आध बार या 2 महीने में एक आध बार की, बिल्कुल सिर्फ

0: लिक्विड पर आप रहें और आपकी बॉडी डिटॉक्स हो, है ना?
1: बिल्कुल सही बात
0: है। चलिए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी जी, आपके साथ साथ सभी श्रोताओं को नमस्कार।
0: जी नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो, मैं
0: हाँ जी,
1: गाँव बालाघाट मध्य प्रदेश से बसंती बघेल बोल रही हूँ। बसंती
0: बालाघाट से।
1: बघेल, माने गाँव बालाघाट मध्य प्रदेश
0: अच्छा, बसंती
1: बघेल।
0: जी। बसंती जी, कैसी हैं आप? आपसे पहली बार बात हो रही है।
1: नहीं, मैं बहुत पहले से फोन करती हूँ, पर अभी ना मेरी शादी हो गई थी
0: हाँ
1: और ये रिकॉर्डेड वाला कार्यक्रम हो गया,
0: हाँ
1: तो मेरे को पता ही नहीं चला कि मतलब यहाँ पे रेडियो लाई नहीं थी और मोबाइल से फिर मेरी बेटी हो गई, तो इसके वजह से मैं मतलब समय नहीं मिल पा रहा था।
0: हाँ
1: हाँ, तो मैं सोची कि अब लगाया जाए फोन।
0: चलिए। तो बसंती जी, आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो विषय है कि उपासना का हमारे जीवन में क्या महत्व है।
1: उपवास ना, मतलब उपवास।
0: हाँ, इसे आप उपवास भी कह सकती हैं, इसे आप ईश्वर की आराधना भी कह सकती हैं,
1: हाँ,
0: है ना?
1: जी।
0: तो बताइए, आप उपासना से क्या समझती हैं और कैसे रखना चाहिए?
1: उपासना मतलब ये है कि जैसे कि हम महिलाएं हैं और भगवान के प्रति हमारा लगाव,
0: हाँ
1: ईश्वर के प्रति जो है हमारा लगाव है कि हम ईश्वर को कहते हैं कि ईश्वर हमको हमारी इच्छा पूरी करने से हम ये उपवास करेंगे ऐसा। और जैसे कि अभी आने वाला है तीज, तो ये तीज कहते हैं कि पार्वती मैया ने अपने भोले बाबा जी के लिए रखा था, है ना।
0: हाँ जी,
1: और हम लोग क्या है, महिलाएं हैं, अपने पति के लिए कहते हैं
0: हाँ
1: कि इस उपवास को रखेंगे तो हमारी पति की आयु बढ़ेगी।
0: बिल्कुल
1: और
0: सही बात है।
1: अभी इसके पहले कवरछठ उपवास हुआ, जिसको हरछठ कहते हैं, तो
0: हाँ,
1: अपने बच्चे के लिए रखा गया।
0: ये बात सही कह रही हैं आप, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि, है ना, कभी कभी हम कष्ट में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, लेकिन फिर भी व्रत और उपवास रखते हैं, तो वो उचित है क्या? उससे क्या ईश्वर प्रसन्न होते होंगे?
1: नहीं, ये अपने अगर ऐसा नहीं है, अगर श्रद्धा मन में है तो उपवास रखने की जरूरत नहीं है।
0: वही है ना
1: हाँ, जैसे
0: सच्ची।
1: कि अभी अपन कष्ट में, जैसे कि कुछ महिलाएं होती हैं, महिलाओं की इतनी बुरी स्थिति रहती है, जैसे कि प्रेग्नेंट रहते हैं,
0: बिल्कुल।

0: प्रेग्नेंट रहने रहते हैं उसके बाद भी उपवास करते हैं, तो कोई भी ईश्वर नहीं कहता कि आप मुझे कष्ट, अपने आप को कष्ट दे करके
1: बिल्कुल
0: मेरे लिए आप उपवास रखो। कोई भी ईश्वर, चाहे माँ दुर्गा की बात करे, चाहे श्री कृष्ण,
1: बिल्कुल सही बात है,
0: कोई भी भगवान, चाहे भोलेनाथ की बात करे, चाहे कोई भी धर्म हो, अपन ये नहीं कहते कि अपन हिंदू धर्म की बात करें, कोई भी धर्म में ये नहीं लिखा है कि आप कष्ट, आप अपने आप को कष्ट दे करके मुझे खुश करो।
1: बिल्कुल सही बात बोल रही हैं आप, और आपकी बात बहुत सटीक लगी, हमारे बाकी श्रोता भी खुश हुए होंगे और खुश होंगे कल जब आपका प्रोग्राम सुनेंगे और आपकी बातें सुनेंगे। तो ठीक है बसंती जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत।
0: मेरी बेटी का नाम लूंगी,
1: हाँ
0: अभी 12 सितंबर को मेरी बेटी की दूसरा साल कंप्लीट होगा।
1: अच्छा चलिए, हाँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी बिटिया रानी को, ठीक है।
0: धन्यवाद मैम, सभी श्रोता मेरी बिटिया को धन्यवाद दे कि मेरी प्रथम पुत्री है।
1: हाँ जी,
0: मुझे बेटी का बहुत, मेरे पति और मुझे बहुत इच्छा थी कि मुझे बेटी हो।
1: हम तो सबकी बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है, चलिए जी
0: जी, जी।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे फोन इन कार्यक्रम में।
1: नमस्ते मैडम, नमस्ते। मैं
0: हाँ जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: बोल रहा हूँ कटनी जिला से, जयसवाल, कोजूलाल जयसवाल। पहले
0: जी पूरा नाम
1: बुला हुआ से। नमस्कार मैडम,
0: कहाँ
1: आप
0: से?
1: कौन बोल रही है? जिला कटनी, तहसील बिरागढ़,
0: अच्छा
1: ग्राम
0: कटनी।
1: बैसवाई, कोजूलाल
0: नाम अपना?
1: जयसवाल।
0: ठीक है जयसवाल जी, और हम कविता रावत बोल रहे हैं।
1: अच्छा नमस्कार मैडम, अच्छा
0: नमस्ते।
1: ठीक है। हाँ
0: तो जयसवाल जी,
1: बताइए।
0: क्या करते हैं आप?
1: मैं सर अब कुछ नहीं करता, 80-85 साल की उम्र हो गई
0: ओहो,
1: अब
0: अस्सी
1: घर में।
0: पिचासी साल
1: हाँ
0: अरे
1: 80-85 साल की हो गई, घर में रहता हूँ, ये मेरा
0: बस बहुत कर
1: शांति जो
0: लिया,
1: है उसी
0: बिल्कुल।
1: को सुनता रहता हूँ, और कुछ नहीं करता हूँ मैडम।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है,
1: बहुत
0: लेकिन
1: बुढ़ा हो गया हूँ, क्या है कि मेरे को शुगर बीपी दोनों है, बाकी मेरा जीवन साथी यही है। मेरे पास कोई राय चाहे ना रहे, जो मेरा अच्छा साथ देता है मैडम,
0: अरे वाह
1: ये
0: क्या
1: बहुत
0: बात,
1: अच्छी खुशी की बात है मैडम। हमेशा
0: बहुत
1: सुनता रहता हूँ मैं
0: बहुत
1: डेली, और
0: बहुत ही बढ़िया बात है
1: काफी
0: ये।
1: काफी सालों से सुन रहा हूँ, ये भी बताऊँ आपसे।
0: अरे वाह, हम सभी का सौभाग्य है
1: जब ये
0: कि
1: बताइए आप भी, जब हवा में हिलाता रहा है तो
0: हाँ
1: विविध
0: हाँ
1: भारती में 9:15 बजे,
0: हाँ
1: उस
0: हाँ
1: समय मेरी उम्र कितनी रही? 10-12-15 साल की, तब से
0: बिल्कुल।
1: सुन रहा हूँ मैं।
0: अरे
1: हाँ
0: वाह क्या बात है
1: बहुत
0: भाई,
1: शौकीन हूँ।
0: हम लोगों का सौभाग्य है कि आज आप
1: एक
0: हमारे
1: चीज
0: साथ
1: नहीं
0: जुड़े
1: बताइए
0: हुए
1: यार
0: हैं।
1: साहब मैडम, उस जमाने में फ्लिप रेडियो खरीदा था, टेप प्ले का 315 का, अब तो उसका पता नहीं कहाँ मिलता है।
0: सही बात है,
1: जी
0: पहले वो छोटे
1: हाँ,
0: छोटे रेडियो बहुत काम आते थे, तो
1: अरे
0: अभी
1: मैडम
0: भी
1: पूरी दुनिया का खबर मिलता है।
0: वही।
1: रेडियो का ऐसा माध्यम है कि आप
0: हाँ
1: अपना काम भी करते रहिए और बढ़िया मनोरंजन गाना भी सुनते रहिए, है कि
0: बिल्कुल
1: नहीं?
0: बिल्कुल सही बात है।
1: हाँ
0: तो
1: बहुत,
0: मतलब
1: रेडियो से बहुत फायदा मैडम, मनोरंजन
0: चलिए
1: होता रहता है और काम करो कोई नुकसान नहीं हुआ, सबसे बड़ी चीज है।
0: भाई, हम सभी रेडियो के परिवार को बहुत खुशी है कि इतने उम्रदराज आप हम सभी से जुड़े हुए हैं, रेडियो के प्रेमी हैं, हम लोगों का सौभाग्य है ये।
1: जी सर,
0: जयसवाल जी, अब हम क्या ही बोलें आपसे, लेकिन बस आज जो हमारा प्रोग्राम है वो है बात आपकी गीत हमारे, और ये
1: जी
0: कल
1: मैडम,
0: 11 बजे से आएगा ये प्रोग्राम।
1: जी
0: और आज हमने जो विषय रखा है वो ये रखा है कि उपासना का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो आपसे
1: जी
0: बेहतर इस विषय पे प्रकाश कौन डाल सकता
1: जी
0: है तो
1: सर
0: बताइए, आपने तो इतनी उम्र पार कर ली है, तो आप अपना अनुभव बताइए इस विषय पर,
1: क्या क्या पूछा मैडम आपने?
0: उपासना का हमारे जीवन में क्या महत्व है?
1: उपासना मतलब व्रत, ये व्रत से मतलब क्या है कि आत्म शांति मिलती है, और दूसरी क्या है कि अगर आप एक दिन व्रत धारण कर लेंगे, सुबह से शाम के 7-7:30 बजे आप खाना भोजन करेंगे, तो आपका जो पेट में जो अब्जियत कब्जियत होगी वो भी सही हो, साफ हो जाती है मैडम। बहुत फायदे
0: बिल्कुल
1: भगवान, अच्छे अच्छे लोग जिंदगी भर व्रत धारण करते, क्यों करते? आज से नहीं, सनातन से करते आ रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: इससे
0: सही
1: बहुत कुछ
0: बात है,
1: फायदे होंगे, तभी तो कर रहे हैं मैडम कि नहीं, आप
0: बिल्कुल
1: बताइए।
0: बिल्कुल सही बात है ये।
1: जमाने से करते आ रहे हैं, सनातन से, जब से आदमी जन्म लिया है तब से ईश्वर की प्रार्थना
0: सही बात है।
1: भजन आज भी श्रद्धा मैडम,
0: हाँ
1: ईश्वर है, ईश्वर आज भी है, कहीं गया
0: बिल्कुल
1: नहीं है
0: बिल्कुल
1: हमारे और आपके बीच में। अगर उसको अच्छे मन से मानो, पूछो और जानो, तो आपके सामने वो पूरा काम करेगा, दिखाई भले ना दे, बाकी
0: बिल्कुल
1: आपकी 100% सहायता करता, मैं अनुभव करके देख लिया मैडम,
0: बिल्कुल
1: ईश्वर
0: सही
1: आज भी है, कहीं गया नहीं है।
0: बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। चलिए आपसे
1: उसे
0: बातचीत
1: अगर
0: करके
1: आस्था है
0: बहुत,
1: वो बिल्कुल साथ देता है, कहीं नहीं छोड़ता,
0: बिल्कुल
1: मैं
0: नहीं
1: कई बार
0: छोड़ते,
1: अनुभव के देख लिया हूँ मैडम।
0: सही कह रहे हैं आप, हम
1: जी
0: आपकी
1: हाँ
0: बातों से पूरी तरह सहमत हैं, और कॉल करने के
1: जी
0: लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल 11 बजे से आप अपना प्रोग्राम सुनिएगा, ठीक है
1: जी सर,
0: जयसवाल जी?
1: नमस्कार
0: जी
1: मैडम।
0: नमस्ते।

0: हाँ जी मैम नमस्ते।
1: हाँ जी नमस्ते
0: जी, मैं चंदन कुमार गौर बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट अनूपपुर से।
1: हाँ चंदन कुमार जी, लेकिन शोर बहुत आ रहा है आपके पीछे से।
0: नहीं, मैं दिल्ली में हूँ ना, तो मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं DTH पे आपके सारे कार्यक्रम सुनता रहता हूँ।
1: चलिए तो अभी लेकिन आप दिल्ली में हैं, वैसे आप अनूपपुर के हैं।
0: हाँ जी अनूपपुर।
1: चंदन कुशवाहा?
0: नहीं, चंदन कुमार गौर।
1: अच्छा चंदन कुमार, चलिए तो चंदन जी आज जो हमने विषय रखा है वो ये है कि उपासना का हमारे जीवन में क्या महत्व है।
0: किससे
1: उपासना?
0: जैसे व्रत वगैरह से।
1: ईश्वर की आराधना अधिकतर हम लोग सब यही करते हैं ना, कि व्रत रख लिया
0: जी मैम, बिल्कुल
1: पूजा करी और
0: व्रत,
1: सोचा
0: पूजा, सब चीज भी जिंदगी में जरूरी होता है।
1: हाँ।
0: जो मानता है उसके लिए जरूरी है, जो नहीं मानता उसके लिए कुछ कुछ होकर अरे हम व्रत पूजा नहीं करते, हमारे ऊपर भगवान ऐसे ही प्रसन्न है, तो ये तो उनकी नैतिकता होती है।
1: बिल्कुल, तो वही मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ व्रत पूजा से ही ईश्वर प्रसन्न होता है, सच्ची उपासना यही कहलाती है, या सच्ची उपासना ये है कि हम दूसरों की मदद करें, निंदा ना करें किसी की,
0: जी नहीं मैम,
1: सत्कर्म करें।
0: हम जो है भगवान का पूजा पाठ करें और दूसरे के प्रति जलन ईर्ष्या रखें,
1: वही
0: अरे फलाने आदमी इस काम से गया, भगवान करे इसका ये काम ना हो, ऐसा तो हम किसी के प्रति अगर सोचेंगे तो ये गलत है, क्योंकि एक प्रति हम पूजा पूजा पाठ भी कर रहे हैं, दूसरे तक लोगों के प्रति हमारे मन में प्रति सोच है, तो ये गलत है।
1: बिल्कुल सही बात है, तो इसका मतलब ही यही है कि सच्ची आराधना सच्ची उपासना वही है कि हमारा मन शुद्ध रहे, हम दूसरों की निंदा ना करें, दूसरों का बुरा ना सोचें, और जितना संभव हो सके दूसरों की मदद करें, है ना चंदन जी? चलिए तो हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और कल आप 11 बजे से अपना प्रोग्राम सुन सकेंगे। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी मैम।
1: नमस्ते।
0: ओके जी।

0: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। हम उम्मीद करते हैं हमारा ये प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम से अपनी रेडियो सखी कविता रावत को नमस्कार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। अब समय है इस घंटे की खास खबरों का।
2: राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज लोकभवन में न्यायमूर्ति अल्पेश यशवंत कोगसे को मध्यप्रदेश के 30वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई। इससे पहले न्यायमूर्ति कोगसे गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दे रहे थे। शपथ समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल हुए। यात्री परिवहन विजन समिट 2026 कल से इंदौर में शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में होने वाली 2 दिवसीय समिट मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा पर केंद्रित होगी। इसमें मध्यप्रदेश मोबिलिटी विजन 2030 का रोडमैप तैयार करने पर चर्चा होगी। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज बचाव फोरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। लघु उद्योग भारती द्वारा 2 और 3 अक्टूबर को इंदौर में उद्योग समागम आयोजित किया जाएगा, जहां नई तकनीक निवेश उद्योगों और नेटवर्किंग के लिए एक साथ लाने का अवसर मिलेगा। आयोजन में मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में उद्यमी और उद्योग जगत के प्रतिनिधि सहभागिता करेंगे। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 3 दिनों तक कहीं भी तेज बारिश की संभावना नहीं है। पश्चिमी मध्य और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से शनिवार को छतरपुर पन्ना दमोह कटनी में भारी बारिश का अनुमान है। और विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का 3रा चरण संपन्न हुआ। भारत ने 4 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक जीते। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आदमी और इंसान फिल्म के उस गीत के साथ जिसे आवाज़ दी है आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने। साहिर लुधियानवी की रचना है, संगीत रवि का है। पसंद आप सब श्रोताओं की। ये हैं भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश दादा, कार्तिक भाऊ, परी, रंजना, संजना और ललिता नारायण खर्चे।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है मुगले आजम। गीत लिखा है शकील बदायूनी ने, नौशाद ने संगीत तैयार किया है। पसंद आप सब श्रोताओं की। ये हैं जयराज प्लॉट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमीन और प्रयागराज भट्ट। इसी गीत को सुनना चाहते हैं सिंहपुर बड़ा के श्रोता। ये हैं राजेश नेमा, संगीता।

भावना और प्राची। एक और फरमाइशी पत्र हमें मिला है। ये पत्र लिखने वाले श्रोता हैं मेहर नगर उमरेखेड़ महाराष्ट्र से। अभिजीत गवाड़कर, सरिता, प्रिंस, एकांश, सिद्धांत, प्रणीता, अर्जुन, वैशाली, शैलेश, सुमित और ध्वनि गवाड़कर इस गीत को सुनना चाहती हैं। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर ये गीत फिल्म मुगले आजम से।

ये गीत है फिल्म सागर से। एसपी बाला सुब्रमण्यम और आशा भोसले की आवाज़, जावेद अख्तर की रचना, संगीत आरडी बर्मन का, पसंद आप सब श्रोताओं की। यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से, दिलीप मालाकर, योगेश, सुनीता, मुस्कान, धर्मेंद्र, जितेंद्र मालाकर इस गीत को सुनना चाहते हैं। इसी गीत को पसंद किया है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप और साथियों ने। कालका के श्रोता हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक नज़र फिल्म का वो नगमा जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंद आप सब श्रोताओं की। एरोड्रम थाने के पास वृंदावन नगर इंदौर मध्य प्रदेश से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र, पूजा विक्की, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक ये गीत सुनना चाहते हैं। इसी गीत को पसंद किया है दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और पिपरिया से दुर्गा राम साहू ने। रंगिनी के श्रोता भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं, ये हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। एक और पत्र हमें मिला है गोला बाजार बक्सर के श्रोताओं का। श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित इस गीत को सुनना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं एक नज़र फिल्म का ये नगमा।

कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने आपके लिए चुना है फिल्म प्रेम तपस्या से, आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, पसंद आप सब श्रोताओं की। शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, हिना कौसर और साजदा रानी इस गीत को सुनना चाहते हैं। इसी गीत को पसंद किया है मोहम्मद

0: इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा, स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
5: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से, जिसमें इन दिनों आप सुन रहे हैं धारावाहिक जमुनिया। आज सुनिए इसकी 23वीं कड़ी।

करने गुनों में। जमुनिया अपने आरंभिक दुख और तिरस्कार के बावजूद पढ़ लिख कर जीवन संघर्ष में उतरती है। गांव वालों की मर्जी से वो ग्राम सरपंच भी चुनी जाती है और बहुत कम समय में सरकार की दी योजनाएं लागू करके गांव में सारी आधारभूत संरचनाएं खड़ा करती है। शीघ्र ही गांव में एक अजब सा उत्साह और जोश भर देती है। जहां कभी गांव तक आने के लिए पगडंडी भी ढंग से नहीं थी, वहां गांव तक सड़क आई, बस आई, गांव में बिजली आई, गली गली खंभे बिछाए गए, स्कूल बना, अस्पताल खुला, पोस्ट ऑफिस और बैंक भी गांव आए। और उधर जमुनिया के बच्चे गोलू और चिरैया पढ़ लिख कर कलेक्टर और डॉक्टर बने, जिन्हें गांव के गुरुजी ने तेजस और रूपस नाम दिया। और एक दिन ये दोनों बच्चे गांव लौटने वाले हैं और जमुनिया उनकी प्रतीक्षा में बैठी है सुबह से ही। अब आगे

0: चमोनिया, क्या बात है, तुम इतने चिंतित क्यों हो?
1: मैं कहाँ चिंतित हूँ, अच्छा भला आपके सामने बैठी आपसे बात कर रही हूँ।
0: हम सब देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तुम बात हमसे कर रही हो पर तुम्हारा दिल दिमाग कहीं और है। चमोनिया, आ जाएंगे बच्चे, अब वो इतने छोटे भी नहीं है।
1: आप तो एक ही बात लेकर बैठ गए। आप बैठो, मैं जरा गांव का चक्कर लगाकर आती हूँ, देखती हूँ सब ठीक ठाक तो है ना।
0: मैं सब समझ रहा हूँ, कौन सा गांव घूमने जा रही हो तुम? अरे भाई, वो अगर बस स्टैंड तक आ जाएंगे तो दो कदम घर नहीं आ सकते क्या? अच्छा चलो, हम भी चलते हैं आपके साथ।
1: अच्छा आइए, आप भी चलिए।
0: लाओ भैया, हमें एक एक चाय पिला दो।
2: जी साहब, लाता हूं।
1: क्यों भैया, बस तो अब तक आ जाती है ना शहर से।
2: आगे पीछे थोड़ा बहुत होता रहता है, पर दोपहर को तो आती ही है।
0: अब आप चाय पीजिए, बस अपने हिसाब से आ जाएगी।
1: आप ठीक कह रहे हैं, अब पता नहीं क्यों मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है।
0: अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वो देखिए, बस भी आ गई।
1: अरे हाँ, बस तो आ रही है। हाँ,
0: अरे अब आपके खड़े होने से बस जल्दी नहीं आ जाएगी। आप बैठिए, बस को आने दीजिए, आखिर उसे यहीं पर आना है।
1: बात तो सही कह रहे हैं आप, बैठ जाती हूँ ना।
3: चलो भाई, फतेहपुर आ गया। फतेहपुर खाली करो बस, फतेहपुर वाले उतर जाए
4: भैया। आगे बढ़ो, बढ़ो यार, निकल तो तुम।
2: भैया अब तो उतर ही जाएंगे, आप कौन बैठेगा गाड़ी में? अब तो वो बैठ का बैठे जिन्हें शहर जाना है। हाँ हाँ,
3: शहर वाले बैठिए।
1: ये गोलू और चिरैया क्यों नहीं निकले अभी तक?
0: अगर बैठे होंगे तो निकल भी आएंगे, आप इतना परेशान क्यों हो रही है? बस में थोड़ी बैठे रहेंगे उन लोग।
1: वो देखो, बस तो लगभग खाली हो गई और अभी तक वो लोग नहीं आए।
0: हाँ, अभी तक तो नहीं आए, हो सकता है शहर में कोई काम बाकी रह गया होगा। बस खाली हो चुकी है, अब यहाँ बैठने से कोई फायदा नहीं। चलिए अब घर चलते हैं।
1: अच्छा चलिए।
5: अरे का बेटा जबुनिया, अरे बेटवा आया नहीं अभी तक?
0: हाँ बाबा, इस बस से तो नहीं आए।
5: कोई काम वाम बाकी रह गया होगा बेटा, या हो सकत है शाम की बस से आ जाए। अरे बेटा जबुनिया,
1: मुझे ठीक नहीं लग रहा बाबा, मैं अंदर जाती हूँ।
0: बाबा
5: हाँ,
0: आप भी अंदर जाइए और जबुनिया को समझा दीजिए कि इस तरह दुखी और परेशान होने से कोई बात नहीं बनती।
5: अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं जाता हूँ और उसको समझाता हूँ। हाँ

0: अरे ओ ओ इधर आता अनेक।
1: अजी जी मालिक।
0: हाँ
1: जी।
0: काय रे, हमने सुना है कि जमुनिया के बेटा बेटी आने वाले थे शहर से, का हुआ? अरे अब का जाके पता करो कि आए या नहीं।
1: हाँ।
0: साला इनका नसीब तो देखो, जो हमारे घर के आंगन में गोबर लीपता था उस असुर आज कलेक्टर हो गया है।
1: हाँ माली।
0: हाँ, और जो बच्ची कल तक जंगल से लकड़ी बीनकर घर में ईंधन लाती थी उस असुर आज डॉक्टर हो गई है।
1: देखो माली।
0: और हमारे हमारे मुन्ना बच्चा, वाह का कहने, उस असुर शराब पीकर मोटरसाइकिल दौड़ाने में ही अपनी शान समझते हैं। अरे ऐसे नवाब हैं कि कमबख्तों को ढंग से भट्टा चलाना भी नहीं आता।
1: ये बात तो है मालिक, जमुनिया का नसीब ही जोरदार है। देख के आता हूँ कि उसके बच्चे आए हैं कि नहीं।
0: अरे जब से जमुनिया ये गांव की सरपंच बनी है, एक भी काम ऐसा नहीं हुआ कि हमारे मन में थोड़ी बहुत भी ठंडक पैदा हुई हो। अरे हम जो जो चाहते हैं वो सब कुछ नहीं हुआ। अरे हमको जलाने वाली सारी बातें हो गई।
1: हाँ मालिक।
0: अरे हम इतने सालों गांव के दीवान रहे और गांव में कोई काम हमने होने नहीं दिया, और इसने इस जमुनिया ने थोड़े दिनों में गांव में सारी चीजें ले आई। अब देखो ना, गली गली में खड़ंजे बिछ गए, बिजली आ गई, अस्पताल और स्कूल खुल गया, और तो और छोटे छोटे उद्योग लगा रही है, अचार पापड़ अगरबत्ती घर घर बन रहे हैं, हर घर में शौचालय बन गया है। अब ये गांव के लोग घर के पीछे संभाल के कचरा डालते हैं। पूरे गांव को देखकर इसकी सफाई से तो भैया हमें खुद हैरत होने लगी। अरे आखिर बुरा भी कहूं तो किसे और कैसे।
1: अब सोचिए मालिक कि अगर आपने ये काम कर दिया होता तो आज जमुनिया क्या करती
0: है? तुम भी ससुर पूरी बात में भी कछु ना कुछ अच्छा निकाल ही लेते हो। हाँ
1: हम आप ही के सेवक हैं मालिक।
0: हैं आप ही के सेवक हैं मालिक। जा जा, मुंह मत देख मेरा, ज्यादा बातें न बना और पता करके आ कि क्या हुआ उसके लड़का लड़की का।
1: जी मालिक, अभी जाता हूँ।

0: आओ बहन, अब देखें तो सही, अभी तक पोस्टिंग आई नहीं है और अम्मा भी उधर गांव में राह देख रही होंगी।
1: तुम चिंता मत करो भैया, पोस्टिंग आज तो आ ही जाएगी, पर मेरी तो पोस्टिंग हो गई।
0: अरे वाह, तो रूपस जी कहाँ पोस्ट हुई हैं आप?
1: मुझे तो अपनी मनपसंद जगह मिल गई है, बेसिक डिस्पेंसरी फतेहपुर।
0: अरे वाह, तूने तो बड़ी अच्छी खबर दी है। अब मुझे भी कहीं आसपास ऐसी ही पोस्टिंग मिल जाए तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ भैया,
0: अम्मा की सेवा भी हो जाएगी, गांव के लिए हम लोग कुछ अच्छा भी कर पाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: पर मुझे तो अभी बहुत फिक्र हो रही है कि पोस्टिंग आए तो फिर घर चलें, अम्मा तो बहुत परेशान होंगी ना।
1: हाँ भैया, वो तो है, पर अब हम लोग यहाँ पर इंतजार करने के सिवा और कर भी क्या सकते हैं ना।
0: सो तो है।

0: अरे बेटा जमुनिया,
1: जी
0: इस तरह बेचैन होने से वो आ तो नहीं जाएंगे और उल्टा तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी।

0: बाबा,
1: हाँ?
0: यही तो मैं भी कह रहा हूं। चमुनिया, अगर तुम्हें लगता है तो चलो शहर चलते हैं और पता करके आते हैं।
2: शाम हो चुकी है, अब शहर जाके क्या करेंगे? शाम की बस और देख लेते हैं। हाँ
0: अच्छा चलो वापस बस स्टैंड चलते हैं।
2: ये तो बस फिर खाली होने को है और ये लोग आए नहीं।
0: कोई बात नहीं चमुनिया, कल आ जाएंगे। चलो अब घर चलते हैं। चमुनिया,
2: हाँ?
0: तुम ठीक तो हो ना?
2: क्यों, क्या हुआ?
0: नहीं, जिस तरह तुम चल रही हो मुझे लग रहा है कुछ ठीक नहीं है।
2: हाँ, थोड़ी कमजोरी सी है और कुछ खास नहीं है। चलिए।
0: चमुनिया, चमुनिया क्या हुआ तुम्हें? चमुनिया,
3: अरे अरे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ?
0: बाबा, मुझे लगता है चमुनिया को कमजोरी आ गई है।
3: हाँ।
0: बाबा, आप एक गिलास में शक्कर और थोड़ा सा नमक खोल कर ले आओ ना, और हाँ उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ देना।
3: अभी लो बेटा।
0: चमुनिया, चमुनिया तुम हिम्मत रखो।
3: हाँ, ये लो बेटा, ये पियो, ये शरबत पी लो, लो लो पियो,
0: लो चमुनिया पी लो। चमुनिया
3: पियो, पियो, पियो, पियो।
0: इसके पीने से ताकत आ जाएगी तुम्हें। हाँ ये लो पी लो।
2: बस बच्चे, लगता है बच्चे आज भी नहीं आएंगे।
0: तुम आराम करो चमुनिया, कल मैं शहर जाके पता करूंगा और हो सकेगा तो उन्हें साथ लेकर लौटूंगा।
2: ठीक है,
0: अब तुम आराम करो, मैं अभी आता हूं। बाबा।
3: हाँ बेटा।
0: इन्हें बहुत कमजोरी हो गई है।
3: हाँ सो तो है,
0: इसलिए मैं इन्हें लेकर शहर के अस्पताल ले जा रहा हूं। देखता हूं एम्बुलेंस है कि नहीं।
3: ठीक है बेटा, मैं तब तक इसका ख्याल रखता हूं। हाँ
0: बाबा।
3: हाँ बेटा।
0: बाबा एम्बुलेंस आ गई है।
3: अच्छा,
0: जमुनिया को थोड़ा सहारा लेकर ले आइए ना।
3: हाँ
0: एम्बुलेंस से शहर ले जाता हूं मैं जमुनिया को।
3: हाँ चलो चलो, उठो बेटा। अरे बेटा, हाँ और सुनो मेरी बात। अरे मैं यहाँ रह के क्या करूंगा? अरे दो मिनट रुक जाओ बेटा, हैं? मैं ताला बंद कर देता हूँ, अब मैं भी चलता हूँ।
0: ठीक
3: बेटा, तुम्हें सहारा भी हो जाएगा।
0: ठीक है बाबा, आप भी साथ चलिए।
3: हाँ।

0: मालिक,
1: हाँ
0: मालिक, मालिक पता करके आ गया।
1: अच्छा, क्या खबर लाया?
0: अभी तक तो गोलू और चिरैया आए नहीं है।
1: हैं? गोलू और चिरैया?
0: हाँ मालिक।
1: अरे गोलू और चिरैया तो पुरानी बात हो गई रे। वो इनका नाम तो वो गुरुजी ने कहा कुछ बड़ा जगर मगर टाइप कर दिया था ना। अरे कहा तो है, हाँ याद आ गई, तेजस और रूपस।
0: हाँ जी मालिक, जी मालिक।
1: हाँ तो क्या खबर है वहां की?
0: खबर तो यह है कि जमुनिया बेहोश हो गई है,
1: हैं?
0: उसकी तबीयत खराब है।
1: हाँ?
0: जयंत और जुल्लन उसे लेकर शहर गए हैं।
1: तबीयत खराब है? का मतलब का होगा उरे?
0: ये तो पता नहीं मालिक, लेकिन जयंत भैया उसे शहर अस्पताल लेकर गए।
1: हाँ
0: मालिक बड़ी देखभाल करते हैं वो जमुनिया की।
1: अच्छा, देखभाल कर रहे? सेवा? अरे जोरू की गुलामी है जे तो।
0: हाँ मालिक।
1: अच्छा भला पढ़ा लिखा काबिल लड़का था ये जयंत। अरे जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकता था, पर नहीं, शहर की ऐशो आराम और चकाचौंध करने वाली जिंदगी छोड़कर मरने के लिए गांव की जगह चुन ली इसने। नहीं भैया, ये त्याग वाली बात तो अपनी समझ में नहीं आई।
0: ये तो

0: अपना अपना स्वभाव है मालिक।
1: हैं? अपना अपना स्वभाव? अरे वाह रे, तू भी फिलॉसफी झाड़ रहा है आज तो है। हमसे स्वभाव की बात करता है, पर कुछ भी हो अपनी बुद्धि में एक ही बात आ रही है कि दिल लगा गधी से तो परी का चीज है कि नहीं।
0: मालिक ये बात तो है। मालिक।

0: डॉक्टर साहब इन्हें देखिए ना क्या हो गया इन्हें।
1: हाँ हाँ जल्दी कीजिए ले आइए, मैं आपको इमरजेंसी में मिलती हूँ।
0: प्लीज डॉक्टर मैं अभी आया। बाबा
2: हाँ बेटा
0: बाबा हाँ जब उन्हें सहारा देकर इस कुर्सी पर बिठाइए।
2: अच्छी बात चल चल बैठो अरे घबरा मत बेटा सब ठीक हो जाएगा। हाँ अरे हम लोग अब अस्पताल आ गए हैं बेटा। हाँ
0: निश्चित रहिए आप कुछ नहीं होगा आपको।
1: हाँ हाँ यही ले आइए और इसी पर लेटा दीजिए।
2: हाँ
1: मैं इनका चेकअप करती हूँ, तब तक आप रिसेप्शन पर इनके एडमिशन की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लीजिए।
0: ठीक है डॉक्टर। और बाबा
2: हाँ
0: आप यहीं रुकिए।
2: ठीक है बेटा
0: मैं अभी आता हूँ।
2: हाँ अरे राम ए राम।
0: बाबा
2: हाँ बेटा
0: डॉक्टर साहब ने कुछ बताया आपको?
2: अरे नहीं बेटा अभी तो बाहर आए ही नहीं हूँ। हाँ
1: नो नो नथिंग टू वरी, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है बाबा।
0: लगता है इन्होंने कुछ खाया नहीं है, ये उसी का असर है।
1: आज की बात नहीं है जयंत जी, मुझे तो लगता है इन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है या फिर ठीक से नहीं खाया है और पानी भी ढंग से नहीं पिया है इन्होंने। ये तो आपने अच्छा किया कि लगातार ORS दिया। ये अब ठीक हैं और रात भर में रिकवर कर लेंगी, किसी तरह की मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। मैंने ग्लूकोज लगवा दिया है, समय समय पर देखते रहिएगा, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा।
0: थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर रात को यहाँ कोई डॉक्टर तो होते हैं ना?
1: हाँ हाँ होते हैं ना, रात भर एक डॉक्टर की ड्यूटी रहती है और कोई ज़रूरत हो तो आप उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
0: ठीक है डॉक्टर साहब।
1: जहाँ तक मैं समझती हूँ इन्हें आराम करने दीजिए और आप लोग भी कुछ खा पी कर आ जाइए और यहीं आराम कर लीजिएगा, कोई ज़रूरत होगी तो बताएंगे। ठीक है मिस्टर जयंत।
0: थैंक यू वेरी मच।
1: ओके ओके

0: अरे बेटा जयंत।
1: जी बाबा।
0: तुम बाहर जाके कुछ खाकर आ जाओ, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। और हाँ सुनो,
1: जी
0: साथ में कुछ बिस्कुट मौसमी को जूस वगैरह लेते आना बेटा। है
1: ठीक है बाबा।
0: हाँ ठीक ठाक तो हो बेटा?
2: हाँ बाबा ठीक हूँ, अच्छा लग रहा है। बाबा ये कहाँ गए?
0: कौन जयंत? अरे वो बाहर तक गए हैं, कुछ फल और बिस्कुट और मौसमी का जूस लाने के लिए। हाँ अरे बिल्कुल हट्टा कट्टा हूँ, बड़ा चंगा हूँ मैं। अरे मुझे क्या हुआ बेटा? अरे मेरी बात सुन के काहे मुस्कुरा रही जब उन्हें बेटिया? अरे लो जयंत बेटा भी आ गया।
1: हाँ बाबा। बाबा
0: हाँ
1: अब आप जाइए।
0: अच्छा बेटा।
1: जमुनिया अब कैसा लग रहा है आपको?
2: अच्छी तो हूँ।
1: हाँ आप कितनी अच्छी हैं हमें सब पता है। चलिए अब आप आराम कीजिए और मैं यहीं बाहर हूँ। हाँ
2: ठीक है।
1: जमुनिया और कुछ ज़रूरत हो तो बता देना।
0: मैं भी आ गया बेटा। अब एक काम करते हैं, अभी तुम सो जाओ, मैं बैठता हूँ, फिर मैं तुम्हें जगा दूंगा बेटा। तुम बैठना, मैं सो लूंगा तब तक।
1: जी अच्छा बाबा।
0: हाँ

0: हमारी नींद को छोड़िए, आप अपनी बताइए।
1: अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, रात भर अच्छी नींद आई। अब तो यहाँ से छुट्टी कराकर बस घर चलिए।
0: बड़ी अच्छी बात है। ये कुछ बिस्किट ले लो, पानी पियो और मैं चाय लेकर आता हूँ। हाँ बाबा।
2: हाँ बेटा।
0: आप अंदर जाइए।
2: अच्छा,
0: जमुनिया ठीक है, अभी आप उनके पास बैठिए।
2: हाँ,
0: मैं ज़रा चाय लेकर आता हूँ।
2: ठीक ठीक है बेटा, मैं जाता हूँ। अरे का बेटा जमुनिया।
1: हाँ बाबा।
2: ठीक ठाक बीती रात?
1: हाँ बाबा, आराम से सोई। बाबा, कोई कमजोरी वोरी नहीं है मुझे। अब तो यहाँ से छुट्टी करा कर घर ले चलिए बस।
2: अच्छा बेटा, जयंत को आजान दो।
0: मैं आ गया बाबा।
2: हाँ,
0: लीजिए गर्मा गर्म चाय पीजिए और ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि आप कुशल मंगल हैं। पर भगवान के लिए, भविष्य में ऐसे निर्जला व्रत मत कीजिएगा जिससे सामने वाले के भला हो ना हो पर आपका नुकसान हो जाए। देखो बाबा कैसे मुस्कुरा रही है मेरी बातों पर।

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जमुनिया की 23वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज लोकभवन में न्यायमूर्ति अल्पेश यशवंत कोगजे को मध्य प्रदेश के 30वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई। इससे पहले न्यायमूर्ति कोगजे गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दे रहे थे। शपथ समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शामिल हुए। यात्री परिवहन विजिट समिट 2026 कल से ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में होगी। दो दिवसीय इस समिट के दौरान मध्य प्रदेश मोबिलिटी विजन 2030 का रोडमैप तैयार करने पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सागर में अवैध शराब से मृत्यु के मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि ऐसे मामलों के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं, जिनमें हत्या के आरोप से लेकर उम्र कैद और मौत की सजा तक के प्रावधान हैं। उज्जैन में प्राचीन खड़े हनुमान मंदिर की मूर्ति को स्थानांतरित करने के पिछले 6 दिनों से चल रहे प्रयास विफल रहे हैं। अब विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर संभावना तय होगी। इसके साथ ही श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए मंदिर या प्रतिमा को बिना सहमति के दूसरी जगह स्थापित नहीं किया जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से शनिवार को छतरपुर, पन्ना, दमोह और कटनी में बारिश का अनुमान है। और प्रदेश में नई प्रतिभाओं को मंच देने के लिए भोपाल, ग्वालियर और इंदौर में 24 से 26 सितंबर तक गेम जैम का आयोजन होगा, जिसमें विद्यार्थी, डेवलपर्स, डिजाइनर्स, कलाकार और स्टोरी टेलर्स हिस्सा ले सकेंगे। इसके लिए इंडी कनेक्ट पर MP गेम उड़ान पेज के जरिए निःशुल्क पंजीयन किया जा सकता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

श्रोता बहनों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चहेते कार्यक्रम महिला सभा में। आज की प्रस्तुति में आपके साथ हूं मैं, आपकी सखी सुधा मिश्रा। बहनों, हर बार की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं समसामयिक विषयों पर जानकारी, गीत संगीत, कविताएं, कहानियां और भी बहुत बहुत कुछ। तो ये आधा घंटा आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। तो बहनों, आप सब जहां भी हों आ जाइए अपने रेडियो सेट के करीब और कर लीजिए अपने आप को एकदम तरोताज़ा। कुछ सखियां अभी भी ऐसी होंगी जिन्हें मेरी ये बातें सुनकर कोई उत्साह नहीं आ रहा होगा, क्योंकि कई बार ऐसा आपने भी महसूस किया होगा बहनों कि हमारी मनस्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि मन में अवसाद भर जाता है, किसी की कोई बात हमें उत्साहित नहीं कर पाती है। इसके पीछे के कारणों पर अगर हम गौर करेंगे तो पता चलेगा कि

हो सकता है लगातार किन्हीं विपरीत परिस्थितियों में जीवन जीने के कारण जिंदगी में एक खालीपन आ गया हो। परिस्थिति तब ज्यादा सोचनीय हो जाती है जब कभी ऐसी मनस्थिति आत्महत्या का रूप ले लेती है। तो इसीलिए आत्महत्या विरोध दिवस मनाए जाने का विचार लोगों के मन में आया और आज हम आपसे यह चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज है विश्व आत्महत्या निरोध दिवस। विश्व आत्महत्या निरोध दिवस हर साल आज ही के दिन यानी 10 सितंबर को मनाया जाता है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम संघ द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ के सहयोग से किया जाता है। आत्महत्या रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह दिवस वर्ष 2003 से मनाया जा रहा है। पेनो, यह दिन हमें याद दिलाता है कि मानसिक स्वास्थ्य भी हमारे स्वास्थ्य का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जितना कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। कई बार हम अपने खाने पीने का, व्यायाम करने का, सैर का, इन सभी का ख्याल रखते हैं लेकिन मन में चल रहे विचारों पर हमारी पकड़ वैसी नहीं बन पाती जैसी हम चाहते हैं। कभी पढ़ाई का दबाव, कभी नौकरी और भविष्य की चिंता, कभी पारिवारिक परिस्थितियाँ, तो कभी रिश्तों में तनाव और कभी कभी तो बहनों बिना किसी स्पष्ट कारण के ही मन बहुत भारी हो उठता है। हमारे यहाँ आज भी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को लेकर कई तरह की झिझक और गलत धारणाएं मौजूद हैं। तो जैसे हम सर्दी बुखार के लिए चिकित्सक से सलाह लेते हैं ना, वैसे ही मन से जुड़ी परेशानी में मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक जैसे प्रशिक्षित विशेषज्ञों की सलाह लेना भी बिल्कुल सामान्य और उचित है। क्योंकि बहनों, तेजी से बदलते इस समय को हम और आप अच्छी तरह देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। जहाँ कभी अपने घरों में ढेरों सदस्य संख्या हुआ करती थी, बच्चे वहीं कब बड़े हो गए पता ही नहीं चलता था। उनकी सारी भावनाएं, उनकी इच्छाएं सब उन्हीं लोगों के बीच ही समझ ली जाती थीं। समस्या समाधान हो जाया करता था। अब स्थिति एकदम उलट है। अपने अपने घरों से दूर अपनी पढ़ाई और करियर बनाते बच्चे कई तरह की शारीरिक मानसिक परेशानियों को अकेले ही संभालते संभालते थक जाते हैं। कभी कभी ऐसे में उन्हें अपने अपनों के साथ की बहुत ज़रूरत होती है। तो बस बहनों, हमें करना इतना ही है कि कभी कोई व्यक्ति परेशान दिखे या वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा करे तो उसे अकेला मत छोड़ें। कई बार किसी के साथ अपनी बात साझा करने से मन का बोझ हल्का हो सकता है और समस्या को देखने का नया रास्ता मिल सकता है। बहनों, किसी की ज़िंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़े बड़े शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। कभी एक फ़ोन कॉल काफ़ी होता है, कभी कुछ देर किसी के पास बैठ जाना बहुत होता है, कभी सिर्फ इतना कहना भी काफ़ी होता है, बताइए मैं सुन रही हूँ। इसलिए उम्मीद का हाथ थामे रखें और अपने आसपास किसी को अगर आपकी ज़रूरत हो तो उसे भरोसा दिलाएं। इन्हीं बातों से मिलता जुलता अपने मन को और मजबूत करता हम आपको सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: और बहनों, अब हम आपके लिए लेकर आए हैं काव्य कुंज, और काव्य कुंज के अंतर्गत आज हम आपको सुनाते हैं डॉक्टर अनामिका तिवारी से उनकी कुछ कविताएं जो कि देश प्रेम पर आधारित हैं।
1: मेरी पहली कविता देश प्रेम की प्रस्तुत है।

जन्मी गर्भ तुम्हारी, कितनी पुण्य हमारी जन्मी गर्भ तुम्हारी। तुम्हारी

जाने किस घड़ी झुका हवा का मछली, भपका के बुझा देला स्वप्न मेरे कुचले। ना उजड़ू

जग के काम आओ मैं अगरबत्ती सी जलूं, खुशबू बिखेरू सांस सांस और राख हो जाऊं, न रहूं।

फूल जग को सजाऊं मैं, जीवन न हो रसहीन रस गंध लुटाऊं मैं, रस रूप

सात समंदर पार उड़ो, देखू मैं संसार। बुद्धि श्रम से पाऊं मैं जीने का अधिकार। मत काटो मत काटो।

नदी से बहो निरंतर प्यास बुझाऊं, नदी से

बहनों, अभी हमने काव्य कुंज के अंतर्गत डॉक्टर अनामिका तिवारी से उनकी ये कविताएं सुनी और अब हम आपको फिर से लिए चलते हैं एक बार गीत संगीत की खूबसूरत दुनिया में।

मेरा इंडिया। बहनों अब समय है आपसे विदा लेने का। हमेशा अपने मन को ये भरोसा दें कि मुश्किल समय में आप अकेले नहीं हैं। उम्मीद, संवेदना और जीवन के प्रति हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें। आज बस इतना ही। अनुमति दें सुधा मिश्रा को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम, प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की थी। अब समय है एक अंतराल का।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
3: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए राजा राम विश्वकर्मा और साथियों के गाए लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की है। आरंभ में ये देवी गीत।

इस लोक भजन के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज आप सुन रहे थे राजा राम विश्वकर्मा और साथियों के गाए लोकगीत, प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है सुगम संगीत के कार्यक्रम में शर्मिष्ठा घोष के गाए कुछ गीत और भजन। आरंभ में सुनिए ये गीत, रचना गोपाल दास ने रच की।

सोहनलाल द्विवेदी की इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे शर्मिष्ठा घोष के गाए कुछ गीत और भजन, प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की थी। अब समय है एक अंतराल का।

0: बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। अमित कुमार और लता मंगेशकर का गाया फिल्म तेरी कसम का ये गीत है, आनंद बख्शी ने लिखा, आरडी बर्मन की धुन है।

0: बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर का गाया फिल्म चलते चलते का ये गीत था। इसके साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। 12 और 13 सितंबर को होने वाले सम्मेलन में वे बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और वैश्विक संस्थाओं में सुधार की जरूरत पर जोर दे सकते हैं। श्री गुटारेस का कहना है कि मौजूदा आर्थिक और भू राजनीतिक हालात 1945 से काफी बदल चुके हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी बदलाव जरूरी है। उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात और दूसरे नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी प्रस्तावित हैं। भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस ब्रिक्स सम्मेलन में पश्चिम एशिया संकट समेत कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। गुजरात हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अल्पेश यशवंत कोगजे को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश मनोनीत किया गया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज भोपाल स्थित लोक भवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी मौजूद रहे। न्यायमूर्ति कोगजे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 30वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। शपथ के बाद जस्टिस कोगजे जबलपुर पहुंचेंगे और 11 सितंबर को हाईकोर्ट में औपचारिक रूप से कार्यभार संभालेंगे। प्रदेश के प्रमुख रेलवे केंद्र कटनी के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बिलासपुर से कटनी के बीच 367 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग को 4 लाइन में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। करीब 6,528 करोड़ रुपए की इस परियोजना से कटनी जंक्शन पर ट्रेनों के आउटर पर रुकने की समस्या कम होगी। वहीं अतिरिक्त ट्रैक मिलने से यात्री और मालगाड़ियों की आवाजाही आसान होगी। कोयला, सीमेंट समेत दूसरे सामान की ढुलाई भी तेज हो सकेगी। परियोजना पूरी होने के बाद इस रूट पर भविष्य में नई यात्री और एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन की राह भी आसान हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने विदेश दौरे से लौटते ही सागर के जहरीली शराब मामले में एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश देते हुए कहा कि आम लोगों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ ही सागर संभाग के नए आयुक्त के रूप में दिलीप कुमार और सागर पुलिस रेंज के आईजी की जिम्मेदारी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी इरशाद वली को दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब मुक्ति के लिए सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है।
2: शराब किसी प्रकार से वैध हो या अवैध, शराब से जो खतरा होता है इससे निपटने के लिए सामाजिक स्तर पर भी प्रतिबद्धता की जरूरत पड़ेगी। नशा मुक्ति अभियान चलाने के लिए हम धार्मिक संस्थाओं के साथ में, सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ अलग अलग प्रकार से शासन के स्तर पर भी नशा मुक्ति के भी अभियान चलाने की आवश्यकता है।
1: प्रदेश में यात्री परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और सुरक्षित बनाने के लिए कल से इंदौर में 2 दिवसीय यात्री परिवहन विजन समिट आयोजित होगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में इस समिट का शुभारंभ करेंगे, जिसमें निजी बस ऑपरेटर, परिवहन विशेषज्ञ, आईटी कंपनियां और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिट का मुख्य फोकस मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा और पीपीपी मॉडल के जरिए बस सेवाओं को बेहतर बनाने पर रहेगा। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून की सक्रियता फिलहाल कमजोर पड़ गई है। मौसम विभाग ने आज किसी भी जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया है। कल यानी शुक्रवार को उमरिया, मंडला, बालाघाट और डिंडौरी में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 सितंबर से मौसम में फिर बदलाव के आसार हैं और पश्चिमी हिस्से में तेज बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने 189 पात्र कॉलेजों के छात्रों को परीक्षा में शामिल होने की बड़ी राहत दी है। शिवपुरी जिले में स्वास्थ्य विभाग ने 39 वार्डों के लिए 134 सर्वे दलों का गठन किया है। खंडवा जिले के ग्राम कालमुखी में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत कल जनसेवा शिविर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय पोषण माह के शुभारंभ पर कल नर्मदापुरम के आंगनवाड़ी केंद्रों में एक पेड़ बेटी के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं पन्ना जिले में अभियान का शुभारंभ रैली निकालकर किया गया। अशोकनगर के जिला शिक्षा केंद्र में रिक्त सहायक परियोजना समन्वयक और बीआरसी पद के लिए योग्य अभ्यर्थियों से 25 सितंबर 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। झाबुआ में जनजाति कार्य विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए जिला स्तरीय हेल्प डेस्क गठित किया गया है। और आगरमालवा जिले के वृंदावन ग्राम तनोड़िया में कल पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। दोपहर समाचार दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम और समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने दिवंगत आगा खान चतुर्थ और विकास कार्यों में उनके अमिट योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ग्रामीण विकास, युवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में आगा खान विकास नेटवर्क के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने भी आज नई दिल्ली में प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि उन्होंने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क द्वारा सामाजिक विकास और विरासत संरक्षण में किए जा रहे प्रभावशाली कार्यों तथा भारत एवं विदेश में आगे की संभावनाओं पर चर्चा की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमार के कृषि मंत्रियों के साथ कल उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की।

0: विश्वसनीय आपस में जुड़े और वैश्विक सिस्टम। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आज तीसरा दिन है। एजेंटिक एआई एंड द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग इन अ बिलियन यूजर नेशन विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा कि भारत में बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन के अगले चरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के चेयरमैन तुहिनकांत पांडे और यूआईडीएआई के पूर्व चेयरमैन नंदन नीलेकणी एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे। शाम को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कनेक्टेड इंडिया एम्पावर्ड फाइनेंस बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये मुलाकात तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र के दौरान हुई। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर टेड्रोस ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य और गैर संक्रामक रोगों के खिलाफ भारत की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के करीब 1,60,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए लोगों को उच्च रक्तचाप, मधुमेह और सामान्य कैंसर की जांच की सुविधा मिल रही है। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की भी सराहना की जो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक माताओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। डॉक्टर टेड्रोस ने बताया कि टीकाकरण और संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिली है। उन्होंने भारत के तपेदिक उन्मूलन, चिकित्सा उत्पादों के बेहतर नियमन और WHO को समर्थन देने के प्रयासों की भी सराहना की। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारे वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत यह आदेश जारी किया। एक रिपोर्ट।
4: ये प्रतिबंध ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली क्वाडकॉप्टर, रिमोट से संचालित विमान, पैराग्लाइडर, पैरामीटर, हैंग ग्लाइडर, मैक्रोलाइट विमान, छोटे संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे और विमान से पैरा जंपिंग सहित कई हवाई प्लेटफार्मों पर लागू होता है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है जिसमें यह संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, VIP और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसी हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने ये भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
0: ब्रिक्स सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिन के गुजरात दौरे पर आज अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने कहा कि गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल की जन्मभूमि है। श्री कुमार ने कहा कि वे राज्य के बूथ लेवल अधिकारियों, BLO और चुनावी साक्षरता क्लब ELC के सदस्यों से बातचीत करेंगे। श्री कुमार आज शाम अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रमुख नागरिकों के साथ भारत में चुनाव विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र विषय पर संवाद करेंगे।
5: गुजरात की पावन भूमि पर आने पर मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी महान विभूतियों की जन्मभूमि भी और कर्म भूमि भी रहा है गुजरात। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदस्यों के साथ भी और गुजरात के कर्मठ बूथ लेवल ऑफिसर्स, वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स, छात्र और छात्राओं के साथ आज और कल विभिन्न कार्यक्रमों में संवाद करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 270 सदस्यों वाली पूर्ण राज्य कार्यकारिणी की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को सूची में प्रमुख स्थान दिया है और उन्हें तमलुक संगठनात्मक जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तमिलनाडु में 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए तमिलगा वित्तीय कषगम टीवीके के नेतृत्व वाले सेकुलर सोशल जस्टिस विक्ट्री गठबंधन ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। गठबंधन ने धरपुरम से सत्यबामा और मधुरंतकम से मरगथम कुमारवेल को मैदान में उतारा है। विपक्षी डीएमके ने मधुरंतकम से पारदंथमन और धरपुरम से एस सुगन्या को उम्मीदवार बनाया है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। उपचुनाव के लिए नामांकन 16 सितंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को होगी और 19 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1377 हो गई है। 5000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि सबसे अधिक मौतें चितवन में हुई, जहां 364 लोगों की जान गई। प्रभावित क्षेत्रों से 13600 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। इस बीच भारत ने विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है, जिसके तहत 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी गई है। बिहार में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। कई नदियों का जलस्तर घट रहा है। राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक, बागमती समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात में थोड़ा सुधार हुआ है। जलस्तर में कमी के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य और तेज कर दिए हैं। पटना, वैशाली, सारण, मुंगेर, भागलपुर, अरवल समेत 14 जिलों में इस समय 40 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से पीड़ित है। विभिन्न स्थानों पर लगाए शिविरों के माध्यम से भोजन, मेडिकल सहायता और राहत सामग्रियां प्रभावितों तक पहुंचाई जा रही है। वहीं लगभग 700 ग्रामीण सड़कों के जलमग्न हो जाने से सड़क संपर्क टूट गया है। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने सड़कों की स्थिति पर निगरानी बनाए रखने और पानी निकलते ही इन्हें तत्काल ठीक करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से निरीश्री।
0: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। उत्तरी ओडिशा के सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। विभाग ने आज मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी आने की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। हालांकि ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की कोशिश से इनकार करता रहा है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रही। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से जहाजों पर किए गए सबसे बड़े हमलों के बाद आपूर्ति में और अधिक व्यवधान की आशंका जताई जा रही है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड 0.1% बढ़कर 101 अमरीकी डॉलर और 86 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 40 अंक बढ़कर 74,804 पर, जबकि निफ्टी 12 अंक की बढ़त के साथ 23,000

0: 443 पर था। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के फ्लीट कमांडर रियर एडमिरल अनीता विलियम से मुलाकात की। अधिकारियों ने दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और संयुक्त रूप से काम करने की क्षमता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक क्षमताओं, प्रस्तावित रक्षा खरीद और दोनों नौसेनाओं के बीच अधिक परिचालन सहयोग के अवसरों पर विचार विमर्श हुआ। दक्षिण पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में तेज बारिश से हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। सोईचुआन काउंटी से 18,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा। भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। भारत ने महिला हॉकी जूनियर विश्व एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को हराया। भारत की पूजा मलिक ने हैट्रिक लगाई, जबकि सनिका चंद्रकांत माने, मधुसिदार सुप्रिया और रोशनी एंद ने दो दो गोल किए। भारत 12 सितंबर को सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से खेलेगा। अमरीकी ओपन पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में कल बेन शेल्टन का मुकाबला फ्रांसिस टियाफो से होगा। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शेल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में पिछले वर्ष के चैंपियन कार्लोस अल्काराज को हराया। 11वीं वरीयता प्राप्त टियाफो ने हमवतन अमरीकी खिलाड़ी एलेक्स मिशेलसन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं के पत्रों द्वारा भेजी पसंद इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं। पहला पत्र शामिल कर रहे हैं अनुरोध एरोड्रम थाना के पास वंदना नगर इंदौर से है। मध्य प्रदेश से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे की। बुरहानपुर मुकाम पोस्ट मोहद से मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज तड़वी, बिटिया रोजमीन, तैमूर तड़वी, भैया तड़वी, रीना मुशर्रफ तड़वी, रोजूबाई तड़वी, सनी बाबू, परू तड़वी और समस्त तड़वी परिवार। ध्रुव कुमार गिरी, ज्योति गिरी, तेजस गिरी, प्रणीता गिरी, शैलेश पुरी, सोनम पुरी, धनुष पुरी, मनोरा वाशिम से अपनी पसंद भेजते हैं और ये पसंद है धामड़ी मनोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे, प्रज्वल डेरे और अनुत डेरे की। तेजाब फिल्म का गीत अनुराधा पोडवाल और अमित कुमार का गाया, जावेद अख्तर ने लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन है।

अगले गीत के लिए अनुरोध आया है दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार का। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले की फरमाइश है। थाना रोड बक्सर से जीवत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी की पसंद। गौरी नगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा कामले की। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभचंद बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज की। नूरी फिल्म का गीत लता मंगेशकर का गाया, जहां निसार अख्तर ने बोल लिखे हैं और तर्ज खयाम की है।

कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म बेटा से है। उदित नारायण अनुराधा पोडवाल का गाया, समीर का लिखा, आनंद मिलिंद ने स्वरबद्ध किया। सुनना पसंद किया छत्तीसगढ़ से दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू, जयराज प्लोट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा जासमिन और प्रयागराज भट्ट, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद रोहित और मोहित की पसंद है ये। बुरहानपुर से मुशर्रफ खान तड़वी, जरीना तड़वी और इनके समस्त परिवार की।

मौसम फिल्म का गीत लता मंगेशकर और भूपिंदर ने गाया है, जिसे गीतकार गुलजार, संगीतकार मदन मोहन। सुनना पसंद किया है छाबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो ने। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, साइमा खान, पोतरा मुस्तबा खान, पोतरी आफिया खान, राउफ भाई और शहीद भाई। गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर की। रिग्नी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा की।

0: इस घंटे की खास खबरें।
1: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेज 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। 12 और 13 सितंबर को होने वाले सम्मेलन में वे बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और वैश्विक संस्थाओं में सुधार की जरूरत पर जोर दे सकते हैं। गुजरात हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अल्पेश यशवंत कोगजे को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश मनोनीत किया गया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज भोपाल स्थित लोकभवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रदेश के प्रमुख रेलवे केंद्र कटनी के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बिलासपुर से कटनी के बीच 367 किलोमीटर लंबे रेलमार्ग को 4 लाइन में अपग्रेड की मंजूरी दी है। करीब 6,528 करोड़ रुपए की इस परियोजना से कटनी जंक्शन पर ट्रेनों के आउटर पर रुकने की समस्या कम होगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने विदेश दौरे से लौटते ही सागर के जहरीली शराब मामले में एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश देते हुए कहा कि आम लोगों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रदेश में यात्री परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और सुरक्षित बनाने के लिए कल से इंदौर में 2 दिवसीय यात्री परिवहन विजन समिट आयोजित होगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में समिट का शुभारंभ करेंगे। और मौसम विभाग के मुताबिक 13 सितंबर से मौसम में फिर बदलाव के आसार हैं और प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में तेज बारिश हो सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मौसम फिल्म का ये गीत था, लता मंगेशकर और भूपिंदर का गाया हुआ, गुलजार के बोल थे और मदन मोहन का संगीत था। इसके साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश खत्म हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश है।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और साथ ही वेव्स ओटीटी ऐप पर। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव पर सभा समापन के पूर्व बता दें आपको सांध्यकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। युवाओं का कार्यक्रम युववाणी शाम 5:02 पर प्रसारित होगा। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की होगी। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:00। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं शाम 5:33 पर और शाम 6:30 पर। शाम 7:30 पर किसान वाणी कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन की संभावनाएं एवं एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति विषय पर जानकारी। किसान वाणी कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होगा शाम 7:30 पर। रात्रि 8:00 से आप सुन सकेंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के मध्य दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल। इसे दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये थे मुख्य आकर्षण सांध्यकालीन सभा के। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और साथ ही वेव्स ओटीटी ऐप पर। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। इस समय दोपहर के 3:02 होने वाले हैं। मीडियम वेव पर हमारा ये प्रसारण समाप्त होता है, डीटीएच पर जारी रहेगा। शाम 5:00 अपने कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे राजा राम विश्वकर्मा और साथियों के गाए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की है।

इस लोक भजन के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे राजा राम विश्वकर्मा और साथियों के गाए लोकगीत, प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर की थी। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए शर्मिष्ठा घोष के गाए कुछ गीत और भजन, प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर केंद्र की है। आरंभ कर रहे हैं नीरज के लिखे इस गीत के साथ।

सोहनलाल द्विवेदी के लिखे इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे शर्मिष्ठा घोष के गाए कुछ गीत और भजन। ये DTH के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। बेताब फिल्म का ये गीत है, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने गाया है। आनंद बख्शी के बोल हैं, धुन RD बर्मन की।

मुकुल अग्रवाल और अलका याग्निक का गाया फिल्म सपने साजन के फिल्म से ये गीत है। समीर ने गीत लिखा है और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने। लीजिए सुनिए।

0: महालक्ष्मी अय्यर और उदित नारायण के गाए फिल्म टशन के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी भोपाल है डीटीएच के ऑडियो चैनल पर। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने नाबालिगों के सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के लिए सुरक्षा उपायों की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है। याचिका में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को अनुबंध करने से रोकने की मांग की गई है। गुजरात हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अल्पेश यशवंत कोगजे को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश मनोनीत किया गया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज भोपाल स्थित लोकभवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इंदौर में साइबर अपराध, ऑनलाइन उत्पीड़न और डिजिटल नुकसान का सामना कर रही महिलाओं और बच्चों को अब एक ही जगह पर काउंसलिंग के साथ कानूनी और तकनीकी मदद मिलेगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कल

हादसों और उनसे होने वाली मौतों को कम करने के लिए सड़क विकास निगम ने मैदानी स्तर पर सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। एमपीआरडीसी के प्रबंध संचालक भरत यादव ने कल सड़क सुरक्षा कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी के निर्देशों का पालन जरूरी है और भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को हराया। भारत की पूजा मलिक ने हैट्रिक लगाई जबकि सनिका चंद्रकांत माने, मधु सिद्धार्थ, सुप्रिया और रोशनी एंद ने दो दो गोल किए। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: चार बज चुके हैं, आइए सुनते हैं आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमा के कृषि मंत्रियों के साथ कल उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफॉर्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार दो दिन के गुजरात दौरे पर आज अहमदाबाद पहुंचे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 270 सदस्यों वाली पूर्ण राज्य कार्यकारिणी की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को सूची में प्रमुख स्थान दिया गया है। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। बिहार में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है, कई नदियों का जलस्तर घट रहा है। मौसम विभाग ने उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। FM रेनबो पर ये थे अब तक के मुख्य समाचार।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

आनंद मिलन का संगीत समीर की लिखे बोल, सुनी निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म पुलिस फोर्स से। और इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चुनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित तो होनी चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग इस सप्ताह नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति शी 12 और 13 सितंबर को होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने न्यायमूर्ति अल्पेश यशवंत कोगजे को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति अल्पेश यशवंत कोगजे ने प्रदेश के 30वें मुख्य न्यायाधिपति की शपथ ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। सर्वोच्च न्यायालय ने नाबालिगों के सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के सुरक्षा उपायों की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है। याचिका में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को अनुबंध करने से रोकने की मांग की गई है। और प्रदेश में यात्री परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और सुरक्षित बनाने के लिए कल से इंदौर में 2 दिवसीय यात्री परिवहन विजन समिट आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में इस समिट का शुभारंभ करेंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। करते हैं शुरुआत गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी जी द्वारा भेजे गए सुविचार के साथ। बीतता वक्त है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। सचमुच कैसे नादान हैं हम सब। दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। आपके सुविचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच है श्रोता मित्रों, जीवन को जीने का हमारा दृष्टिकोण हमेशा संतुलित और परिपक्व होना चाहिए। सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे जी लिखते हैं, जल है तो कल है, वृक्ष है तो फल है। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से जी ने। मिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, असमानाज अंसारी और सुल्तान अंसारी, और शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, आज के प्रेरक प्रसंग में एक बार फिर से हम याद करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर को, जब अंग्रेजी शासन का शिकंजा भारत पर कसता जा रहा था। हम आजादी के बहुत से अमर शहीदों के बारे में जानते हैं, लेकिन आज हम तीन ऐसे नौजवानों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है, लगभग नहीं के बराबर। मित्रों, अगर मैं कहूं कि मात्र 18, 19 या 22 साल के तीन आजादी के दीवाने नौजवान अंग्रेजों के सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित सरकारी भवन में घुस गए थे, तो क्या आप विश्वास करेंगे? असंभव सा लगता है ना, लेकिन ऐसा हुआ। वे तीन जवान थे, बिनॉय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। उन दिनों कोलकाता में अंग्रेजों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दफ्तर था जो राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता था। ये ब्रिटिश शासन का एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र था। बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी वहीं बैठते थे। ये 8 दिसंबर 1930 की घटना है। सामान्य दिन था। अंग्रेज अधिकारी अपने दफ्तर यानी राइटर्स बिल्डिंग में आ चुके थे और अपना काम कर रहे थे। महत्वपूर्ण जगह होने के कारण वहां की सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत कड़ी थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सुरक्षा का घेरा तोड़कर बिनॉय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता उस भवन में प्रवेश कर जाएंगे। लगभग दोपहर की बात है, वे तीनों युवा क्रांतिकारी भवन में घुस गए। उस दफ्तर में कई भारतीय भी काम करते थे, इसलिए उन्होंने यूरोपीय अधिकारियों जैसा पहनावा पहना और अंदर प्रवेश किया। उनके निशाने पर थे लेफ्टिनेंट कर्नल एनएस सिम्पसन, जो जेलों में भारतीय राजनीतिक बंदियों के साथ कठोर व्यवहार के लिए कुख्यात माने जाते थे। और देखते ही देखते तीनों ने लेफ्टिनेंट कर्नल सिम्पसन पर गोली चला दी। कर्नल की वहीं मृत्यु हो गई। इसके बाद वही हुआ जो आमतौर पर होता है, राइटर्स बिल्डिंग के अंदर ही ब्रिटिश पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ शुरू हो गई। तो श्रोताओं, आप जरूर जानना चाहेंगे कि क्या वे तीनों वहां से निकलने में सफल हुए? इसका उत्तर है नहीं। उन्होंने प्रण कर लिया था कि किसी भी कीमत पर अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। वे समझ गए थे कि अब बच निकलना लगभग असंभव है। तो नौजवान बादल गुप्ता और बिनॉय ने स्वयं को गोली मार ली। बादल गुप्ता की वहीं पर मृत्यु हो गई। बिनॉय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद 13 दिसंबर 1930 को उनकी भी मृत्यु हो गई। उनके साथी दिनेश गुप्ता घायल अवस्था में पकड़े गए, उन पर मुकदमा चला और 7 जुलाई 1931 को अलीपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। और अब जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद देश ने इन तीनों की स्मृति को कैसे जीवित रखा। कोलकाता के बेहद प्रसिद्ध डलहौजी हाउस का नाम बदलकर बीबीडी बाग यानी बादल, बिनॉय और दिनेश रखा गया और एक स्मारक बनाया गया। श्रोताओं, एक बात बहुत स्पष्ट है, वो ये है कि हम इन क्रांतिकारियों के साहस और बलिदान को आभार के साथ याद करते हैं, लेकिन हिंसा को जीवन का रास्ता नहीं मानते। हम बस उस दौर के इतिहास को उस समय के संदर्भ में समझते हैं। तो श्रोताओं, जब हम बीडीडी बाग का नाम सुने तो केवल उसे कोलकाता की एक जगह समझकर नजरअंदाज न कर दें। हम जरूर याद करें इन क्रांतिकारी युवाओं को, देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। आजादी को केवल एक विशेषाधिकार की तरह ही नहीं बल्कि एक उत्तरदायित्व की तरह भी देखें, और जिन्होंने देश के लिए अपना आज दे दिया। हम उनके बलिदान को याद करके अपने आज को बेहतर बनाएं। तो श्रोताओ, ये था हमारा आज का प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है, देश के लिए शहीद हुए इन तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताएं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, देश के लिए शहीद हुए इन तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताएं। आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit

0: nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो करें। किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है बरसात और मेंढक। इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें पशु पक्षियों और संपूर्ण जीव जगत का ख्याल रखना चाहिए और उनसे प्यार करना चाहिए।
1: बरसात और मेंढक।

0: सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।

0: हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं।
1: कमली और सोमारू चले घास लेने।
2: घास घास थोड़ी सी घास ले ले,
1: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
3: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
1: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
2: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
1: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
3: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
1: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
2: बादल, तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो? थोड़ा बरस जाओ ना।
1: बादल बोले,
4: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
1: कमली और सोमारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले,
5: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
6: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
1: मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
7: तो बच्चों, सुना आपने? बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेंढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ,
8: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। प्रेरक प्रसंग श्रृंखला के अंतर्गत इस कार्यक्रम में रूस के एक भालू से जुड़ी एक घटना के बारे में बताया गया है और ये संदेश दिया गया है कि हमें अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को पूरी तरह से पहचानना चाहिए।
0: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
0: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है? सोचिए, जरा बताइए तो।
0: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
0: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई। वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते, वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही। लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।

0: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
1: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
0: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं, तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं, तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।
0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था?
0: बात स्पष्ट है। उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
0: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
1: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे

0: और भी बहुत अच्छा कर सकती हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
1: और अब सुनते हैं एक सुंदर गीत।
2: फूल सी गुड़िया हमारी,

अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं नीरज श्रीधर की आवाज में फिल्म तुम मिले से।

प्रीतम का संगीत कुमार के लिखे बोल नीरज श्रीधर की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म तुम मिले से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है शंकर महादेवन की आवाज में फिल्म लंदन ड्रीम से।

शंकर एहसान लॉय का संगीत प्रसून जोशी के लिखे बोल, शंकर महादेवन की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म लंदन ड्रीम से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है सुहेल सेन की आवाज़ में फिल्म व्हाट्स योर राशि से।

सुहेल सेन का संगीत, उन्हीं की आवाज़, बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने। फिल्म वॉच राशि से ये गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम है फिल्म संगीत का और अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं नीरज श्रीधर और सुनिधि चौहान की आवाज़ में फिल्म लव आजकल से।

प्रीतम का संगीत इरशाद कामिल के लिखे बोल नीरज श्रीधर और सुनिधि चौहान की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म लव आजकल से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है अभिजीत और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। फिल्म है ओम शांति ओम।

0: विशाल शेखर का संगीत जावेद अख्तर के लिखे बोल, श्रेया घोषाल और अभिजीत की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म ओम शांति ओम से। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाने रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
2: For centuries, space inspired our imagination. Today, it shapes life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors

0: अर्थ मोर न्यूमरस।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग इस सप्ताह नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति जिनफिंग 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वैश्विक अस्थिरता, पश्चिम एशिया में संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यह यात्रा ब्रिक्स सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल मानी जा रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस के सुरक्षा प्रभाग के विशेष आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने कहा कि आने वाले विशिष्ट अतिथियों की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आम लोगों को कम से कम असुविधा हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है।
2: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेके ट्रैफिक से लेके लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफ़ी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट्स किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान जनता के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि इस शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में प्रसिद्ध समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आगा खान विकास नेटवर्क के समाज सेवी कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये इस बात का उदाहरण है कि सरकार के साथ मिलकर काम करने वाले गैर लाभकारी संगठन लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पानी और साफ सफाई, महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों, शिक्षा और सामुदायिक विकास में आगा खान विकास नेटवर्क के योगदान पर चर्चा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2026 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। चीन के पूर्वी बंदरगाह शहर चिंगदाओ में एक मरम्मत के लिए खड़े विदेशी ध्वज वाले मालवाहक जहाज में आग लगने से 20 लोगों की मौत हो गई। सरकारी प्रसारक सीसीटीवी के अनुसार लाइबेरिया के ध्वज वाले बल्क कैरियर ओशन मेलोडी में आज सुबह आग लगी। और खेलों में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज रात 8 बजे दुबई में भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए अब हम आपको आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के मध्य दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे पहले सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित होगा आज रात 8 बजे। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से खेल की समाप्ति तक अनुप्रसारित करेंगे। फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने प्रसारित होगा कल दोपहर 11 बजे। कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुन सकेंगे दोपहर 12 बजे और 2:30 पर। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक जमुनिया की 24वीं कड़ी सुनिएगा कल दोपहर 12:30 पर। महिला कार्यक्रम सुनवाया जाएगा।

कल दोपहर 1 बजे 1:30 पर सुने लोक संगीत का कार्यक्रम और सुगम संगीत का कार्यक्रम प्रसारित होगा दोपहर 1:45 पर। ये तीनों कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति होंगे। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी प्रसारित होगा कल शाम 5:02 पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति होगा। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुन सकेंगे कल शाम 6 बजे। महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत श्रीलंका और पाकिस्तान के मध्य दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित होगा कल रात 8 बजे से। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से खेल की समाप्ति तक अनुप्रसारित करेंगे।

आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। रात 7:30 पर सुनिए कार्यक्रम किसान वाणी। कार्यक्रम नमस्कार भोपाल सुन सकेंगे कल सुबह 7:20 पर। 8:30 पर सुनिए कार्यक्रम सुरमई सवेरा और कल सुबह 9:15 पर सुनिएगा गांधी चर्चा। जिले की चिट्ठी सुनवाई जाएगी कल सुबह 10:00। 10:05 पर सुने कार्यक्रम महिला संसार। कार्यक्रम के अंतर्गत कल सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम आओ सखी बातें करें। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में कल सुबह 10:30 पर सुने हरविंदर शर्मा का सितार वादन राग मियां की तोड़ी। ये थे आज की शेष और कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: रास्ता।
1: सड़क पर पैदल चलते समय रखें हम कुछ बातों का ध्यान।
2: हमेशा सड़क के किनारे बनी पटरियों पर ही चलें।
1: सड़क पार करने के पूर्व दाएं और बाएं अवश्य देख लें।
2: तेज गति से आ रहे वाहन के सामने से निकलने की भूल ना करें।
1: सड़क पार करते समय मोबाइल पर बात ना करें।
2: चौराहे पर हमेशा ज़ेब्रा क्रॉस से ही सड़क पार करें।
1: हम रहेंगे अगर सावधान, राह हो जाएगी आसान।
0: ए भाई दर्द।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को किया संबोधित, कहा भारत का लक्ष्य 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है। सागर में शराब मामले से जुड़े आरोपियों के मकान और निर्माण पर चला बुलडोजर। टीकमगढ़ में बलराम कृषि महोत्सव, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा केन बेतवा परियोजना से बुंदेलखंड में बढ़ेगा सिंचाई का दायरा। और कल से इंदौर में 2 दिवसीय यात्री परिवहन विजन समिट की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत अंतरिक्ष को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, आपसी संवाद और सहयोग के आधार पर आगे बढ़नी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और वर्ष 2040 तक भारतीय को चंद्रमा पर भेजने का है। प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन की उपलब्धियां गिनाते हुए इसरो की भूमिका की भी सराहना की। भारत 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। समिट को लेकर राजधानी को पोस्टरों और रोशनी से सजाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी मेजबानी करेंगे। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ सहयोगी और आमंत्रित देशों के नेता, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख और दूसरे बड़े प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस बार भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और समिट की थीम रेजिलियंस, इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी पर रखी गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग समेत कई देशों के नेता इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सागर दौरे के बाद जिला प्रशासन ने बंडा में 5 अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त कर दिया है। अवैध शराब से हुई मौतों के मामले में मुख्यमंत्री ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की। नगर परिषद और पुलिस की संयुक्त टीम ने मनीष लोधी के 3, चंद्रभान राजपूत के 1 और आशीष साहू के 1 निर्माण पर बुलडोजर चलाया। प्रशासन का कहना है कि इन लोगों ने शासकीय जमीन पर मकान, पक्की बिल्डिंग और गोदाम बना रखे थे। प्रदेश में फर्जी दस्तावेजों से पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह की जांच अब ग्वालियर के डबरा से भोपाल तक पहुंच गई है। एसटीएफ का दावा है कि उसे भोपाल के अन्नानगर के एक पते पर करीब 40 रजिस्टर्ड पासपोर्ट मिले हैं, लेकिन जांच के दौरान वहां इनमें से कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। इससे पहले डबरा के सिमरिया में 17 जबकि छिंदवाड़ा और बैतूल के पतों पर 13 पासपोर्ट रजिस्टर्ड मिलने की बात सामने आई थी। एसटीएफ की जांच में बौद्ध मठों और दूसरे स्थानों के पतों का इस्तेमाल कर दस्तावेज और पासपोर्ट बनवाने की बात भी सामने आई है। डीआईजी एसटीएफ राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया कि इस मामले में अब तक 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं।
1: गोविंदपुरा थाना क्षेत्र के 40 ऐसे पासपोर्ट हैं जो फर्जी तरीके से बनाए गए हैं अन्ना नगर क्षेत्र से, जो और भी एक दो जगह से है, बैतूल, छिंदवाड़ा। कुल मिला के लगभग 60-70 ऐसे फर्जी पासपोर्ट के बारे में जानकारी आई है, उसको मर्ज करके ये मामला जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है स्पेशल टास्क फोर्स की तरफ से। अभी तक इसके अंदर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पहला जो रियाल चौधरी नाम का व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार किया गया। हम लोगों ने एक और आरोपी को पकड़ा है, विप्लव अधिकारी करके, उसका भी हम लोग पासपोर्ट जब्त किए हैं और उससे पूछताछ जो है वो जारी है।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज टीकमगढ़ में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। डॉक्टर यादव ने कहा कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से बुंदेलखंड में सिंचाई का विस्तार होगा और आने वाले समय में इस क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी। उन्होंने उन्नत और प्राकृतिक खेती, पॉली हाउस, फूलों की खेती, बीज उत्पादन और मधुमक्खी पालन कर रहे किसानों से बात की और उनके काम की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि टीकमगढ़ में किसान नए तरीके अपनाकर खेती के साथ रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रायसेन में संत रविदास महाराज की मूर्ति स्थापना समारोह को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के उपदेश आज भी समाज का मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही रायसेन पहुंचकर संत रविदास जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। प्रदेश में संत रविदास की 650वीं जयंती के मौके पर समरसता संकल्प अभियान के तहत विकास शिविर और यात्राएं आयोजित की जा रही हैं। प्रदेश में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। एक महीने के इस अभियान में प्रदेश के सभी 55 जिलों में नागरिकों की सेवा और जनभागीदारी से जुड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे। अभियान के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को जिले

का नोडल अधिकारी बनाया गया है, जो कलेक्टर के साथ मिलकर कार्यक्रमों की निगरानी और माइक्रो प्लानिंग करेंगे। प्रदेश में यात्री परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और सुरक्षित बनाने के लिए कल से इंदौर में 2 दिवसीय यात्री परिवहन विजन समिट आयोजित होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में समिट का शुभारंभ करेंगे। इसमें निजी बस ऑपरेटर, परिवहन विशेषज्ञ, आईटी कंपनियां और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिट का मुख्य फोकस मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा और पीपीपी मॉडल के जरिए बस सेवाओं को बेहतर बनाने पर होगा। प्रदेश में 7,500 पुलिस आरक्षकों की भर्ती के लिए कर्मचारी चयन मंडल ने शेड्यूल जारी कर दिया है। भर्ती के लिए आवेदन 22 सितंबर से 6 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे। अभ्यर्थियों को आवेदन के समय प्रदेश के 55 जिलों में से अपनी पसंद की यूनिट चुननी होगी और गृह जिले में पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थियों को यह भी बताना होगा कि वे सामान्य आरक्षक या विशेष सशस्त्र बल के आरक्षक पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून की सक्रियता फिलहाल कमजोर पड़ गई है। मौसम विभाग ने आज किसी भी जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया है। कल उमरिया, मंडला, बालाघाट और डिंडौरी में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 सितंबर से मौसम में फिर बदलाव के आसार हैं और प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में तेज बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सनराज फाइनेंस लंदन की एमडी मयूरी चोरड़िया ने रतलाम प्रवास के दौरान एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप से जिले के निवेश क्षेत्र में संभावित निवेश एवं औद्योगिक अवसरों पर चर्चा की। शहडोल जिले में धरती आबा योजना के तहत लगभग 2,500 आदिवासी परिवारों के घरों में बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। विद्युत विभाग ने इसकी कार्ययोजना तैयार कर ली है। शिवपुरी जिले में परिवहन विभाग द्वारा जिले में परिवहन नियमों के पालन और सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। आगरमालवा के ग्राम आवर तथा ग्राम लाडवन की समूह महिलाओं द्वारा मुख्य बाजार में गोबर एवं मिट्टी से तैयार की गई गणेश प्रतिमाओं का स्टॉल लगाया गया है। नर्मदापुरम में लता मंगेशकर संगीत प्रतियोगिता शासकीय नर्मदा महाविद्यालय सभागार में 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। झाबुआ में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने उत्कृष्ट विद्यालय खेल मैदान के पास जिला पुस्तकालय के नवीन भवन का शुभारंभ किया। कान्हा टाइगर रिजर्व में हाथियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के उद्देश्य से हाथियों के पुनर्यौवन शिविर का आयोजन 15 से 20 सितंबर तक किया जाएगा। विश्व आत्महत्या निषेध दिवस पर खंडवा शासकीय महाविद्यालय और अशोकनगर शासकीय विधि महाविद्यालय में विद्यार्थियों के साथ जागरूकता एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना के अंतर्गत 8 सड़क निर्माण कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन पर करीब 6,33,00,000 रुपये की लागत आएगी। उमरिया में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत 11 सितंबर यानी कल मानपुर विकासखंड मुख्यालय के अमरपुर में 3 बजे से शिविर का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत धार से द्वारका सोमनाथ की यात्रा 21 से 26 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। पात्र श्रद्धालु जिसके लिए 11 सितंबर यानी कल तक आवेदन कर सकते हैं। और भोपाल में अवैध शराब के परिवहन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के दौरान कोलार रोड पर शराब से भरी एक स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस ने इस वाहन से 41 पेटी शराब बरामद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है। सागर में शराब से जुड़े आरोपियों के मकान और निर्माणों पर चला बुलडोजर। टीकमगढ़ में बलराम कृषि महोत्सव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, केन बेतवा परियोजना से बुंदेलखंड में बढ़ेगा सिंचाई का दायरा। और कल से इंदौर में 2 दिवसीय यात्री परिवहन विजन समिट की शुरुआत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: कमाई भी मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
1: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।

तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। हमारे सभी श्रोता और कृषक भैया बहनों को दो ही हाथ जोड़ के राम राम। हम हैं अमृता जैन, आज की ई किसान वाणी कार्यक्रम में आपकी अपनी साथी। जब भी कार्यक्रम में आप लोगन से जुड़त हैं तो सोचत हैं कि ऐसी का जानकारी आप लोगन का दे दें जो आप लोगन के लाने फायदेमंद हो और आपकी आय बढ़े, संगे संगे हमारा कृषि क्षेत्र मजबूत बने। तो भैया बहनों देखो, सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाएं तो हम आप लोगन को बताऊत रहते हैं और आज ऐसी ही एक महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। भारत सरकार की जो एक महत्वपूर्ण योजना है जो केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ई योजना को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा लागू करोगा है। और यदि हम ई योजना की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात है योजना के अंतर्गत आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण को विकास करने की बात रखी गई है और ई के अलावा किसानों को उनकी फसल के बेहतर मूल्य मिले और जो फसलों की बर्बादी हो रही है वह कम हो सके, रोजगार के अवसर बढ़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास लावे के लाने तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देवे के लाने जो योजना चलाई गई है। अब हम बात करें कि जा योजना इतनी महत्वपूर्ण काय है, काय कि देखो भैया बहनों, लगभग ई योजना के अंतर्गत हमारे कई कृषक भैया बहन ई योजना से लाभान्वित हैं, लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं, हर साल लाखों टन खाद्य प्रसंस्करण की क्षमता विकसित हो रही है। अब हम कहें कि किसानन भैया बहनों को क्या फायदा है, तो देखो एक तो फसलन के बेहतर दाम मिल रहे हैं, भंडारण और प्रोसेसिंग सुविधाएं मिल रही हैं, फसल खराब होवे या नुकसान कम होवे की संभावना जितनी हो सके उतनी कम करी जा रही है, नए नए रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं जिसे युवाओं के लाने भी नए अवसर मिल रहे हैं जिसे वे इन कार्यों से जुड़ सकें। अब यदि हम सरल भाषा में कहें तो यही बात है कि हमारे भैया बहन प्रोसेस के माध्यम से ज़्यादा कीमत मिले ई पे काम हो रहा है और सरकार की जो योजना लगातार चलत है कि कैसे भी हमारे कृषक भैया बहनन को लाभ मिले, उनकी आय बढ़े और उनकी खेती उन्नत बने। आज आप लोगों को एक बढ़िया जानकारी सुनवा रहे हैं मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन की संभावनाएं एवं एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति 2026 जा जानकारी देवे में हमें सहयोग दो है बहन अंशु तिलेठे ने, तो सुनत है जा महत्वपूर्ण जानकारी।
4: नमस्कार किसान भाइयों, मैं अंशु तिलेठे आज संचालनालय मत्स्य उद्योग कार्यालय जो कि प्रदेश का मछली पालन विभाग का मुख्यालय है वहां उपस्थित हुई हूं। मैं आज यहां स्थल रिकॉर्डिंग के लिए आई हूं और आज हमारे साथ हैं श्री मनोज कुमार पथरोलिया जी, आप संचालक मत्स्य उद्योग हैं जिनसे हम मत्स्य पालन से जुड़ी शासन की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। सर आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में मत्स्य पालन के क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं हैं?
5: सभी को नमस्कार, मैं मनोज कुमार पथरुलिया, संचालक मत्स्य उद्योग मध्य प्रदेश। जैसा कि आपका प्रश्न है कि क्या क्या संभावना है, तो मैम एक्चुअली हमारे मध्य प्रदेश में ना जो वाटर बॉडी है वो पर्याप्त है, मतलब अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अच्छा वाटर बॉडी है, जल क्षेत्र है, हमारी नदियां बहुत अच्छी हैं और तालाब के क्षेत्र में, मतलब जो हमारे बड़े बड़े तालाब हैं, मेजर रिजर्वायर हैं जो मत्स्य महासंघ के आधिपत्य में है, जिला पंचायत तालाब हमारे विभाग के आधिपत्य में है, तो बहुत बड़ी वाटर बॉडीज है। लेकिन हमारे साथ ये है कि हम इनका जो उत्पादन है वो आज हम जितना उत्पादन इनसे ले रहे हैं वो हम अभी इंडिया में, हमारा जो मध्य प्रदेश है वो 7वें स्थान पर है। लेकिन हमारी संभावना ये है कि अगर हम पूरे जल क्षेत्र का दोहन करते हैं, उपयोग करते हैं,

0: तो शायद हम नंबर 2 पे भी पहुंच सकते हैं, 3 पे भी पहुंच सकते हैं, 3 या 2 पे मतलब जा सकते हैं। इसलिए कि आज हमारा मत्स्य उत्पादन और हमारे जो ग्रामीण तालाब है उससे हमने पूरा पर केजी 5000 केजी पर हेक्टर उत्पादन ले लिया है। नदियों से भी हमारा पूरा उत्पादन हो गया है। जो हमारे बड़े तालाब हैं चूंकि उसमें हार्वेस्टिंग पूरा होता नहीं है तो हम लोग 170-180 केजी पर हेक्टर हमने उत्पादन लिया है जो अधिकतम है। लेकिन यदि हम इस उत्पादन को डबल करना चाहते हैं, जैसे हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की ये परिकल्पना है कि हम अपने उत्पादन को डबल करें, तो उसमें हम यही कर सकते हैं कि जो हमारे तालाब हैं इनमें हम केज कल्चर, मतलब एक हमारी एक नीति आई है उसमें हम लोग केज स्थापित करते हैं और उसमें हम लोग पूरा वाटर बॉडी जो जल क्षेत्र है उसका दोहन कर सकते हैं। इसमें हमारी एक नीति भी अभी लॉन्च हुई है जो 2 मार्च 2026 को माननीय सीएम साहब ने उसको अनुमोदित किया है। तो उस संभावनाएं तो बहुत कुछ है ना
1: सर। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि मछली पालन व्यवसाय से कौन कौन जुड़ सकता है और उनके पास क्या पात्रता या योग्यता होना आवश्यक है।
0: हाँ, मछली पालन व्यवसाय से तो हर प्रत्येक व्यक्ति जुड़ सकता है। आज हमारे पास इतनी नई टेक्नोलॉजी है, हमारे बच्चे जो युवा बच्चे हैं जो युवा वर्ग भी पढ़ के आए हैं ना, वो बहुत ही नई टेक्नोलॉजी को उपयोग करके हमारे मछली पालन को नई तकनीक से पालन करेंगे तो वो जुड़ सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जुड़ सकता। इसमें युवा वर्ग जुड़ सकता है, जो हमारी गृहिणी महिलाएं हैं वो भी हमारे मत्स्य पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, और सभी लोग इसमें जुड़ सकते हैं।
1: कोई ऐसा विशेष पात्रता नहीं है, सभी। हाँ,
0: जो आदमी आगे आएगा जो थोड़ा सा समझेगा और मत्स्य उत्पादन करेगा तो इसमें जरूर उनको फायदा तो होना ही है, लाभ का धंधा है ये, इसमें नुकसान कहीं से कहीं तक नहीं।
1: जी सर, जी सर, बहुत अच्छी जानकारी सर। सर, हमारे श्रोताओं को शासन की कौन सी कल्याणकारी योजनाओं द्वारा मत्स्य विभाग लाभान्वित कर सकता है।
0: हाँ मैडम, सही है आपका प्रश्न। कल्याणकारी योजनाएं भी हमारी बहुत सारी हैं और इसमें सबसे पहले PMSSY है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना थी।
1: जी सर।
0: इसमें भी बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट आया है। सेकंड, हमारी एकीकृत जो अभी हमने बताया कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2 मार्च को अनुमोदित हुई है वो भी बहुत अच्छी योजना है। इसमें हमारे बहुत सारे केज लग रहे हैं, हमारे पूरे मतलब केजों से अगर उत्पादन होता है तो हम आगे आ सकते हैं मत्स्य उत्पादन में। और एक CMSY है, मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण मछुआ समृद्धि योजना, वो उसमें हमारे फिश पार्लर बनते हैं, जो हमारे मछुआरे भाई बाहर दुकान लगा के सड़क पे और ऐसे लगाते हैं, तो अभी इस योजना हमारे फिश पार्लर बन रहे हैं जो बहुत ही हाइजीनिक कंडीशन में रहेंगे और उनसे हम लोग मछली को विक्रय कर सकते हैं।
1: जी सर, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे क्या मत्स्य पालक बैंक द्वारा लोन या क्रेडिट ले सकते हैं।
0: हाँ, मत्स्य पालन में लोन और क्रेडिट मिलता है।
1: जी सर,
0: हमारे यहाँ मछुआ क्रेडिट कार्ड योजना है।
1: जी।
0: उसमें 40,000 से लेके और 2 लाख तक लोन ले सकते हैं। दो वो जाता है जो प्रोजेक्ट बन के इससे जाके, और वो अपने उसमें जो भी उसका परसेंटेज होता है लोन का, उस परसेंटेज में वो लोन बैंक से ले सकता है।
1: जी सर, बहुत अच्छी जानकारी सर। हम आगे बढ़ेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि मछली पालन के लिए सबसे जरूरी मत्स्य बीज कहाँ से आम नागरिक प्राप्त कर सकता है।
0: ये भी एक आपका बहुत सही क्वेश्चन है, इसलिए कि हम जब भी मछली पालन करेंगे, कोई भी करेगा, जो अन्य व्यक्ति आएगा जुड़ेगा, तो सबसे पहली प्राथमिकता मत्स्य बीज की होती है। क्योंकि हम मत्स्य बीज अच्छा देंगे, क्वालिटी देंगे, क्वांटिटी अच्छी देंगे तो उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। तो हमारे यहाँ मत्स्य बीज चूंकि बेसिक चीज है, जब भी हम मछली पालन करेंगे सबसे पहले बात आती है कि मछली बीज कहाँ से मिलेगा, अच्छा मिलेगा और सही प्रजाति का मिलेगा। तो वो हमारे जो प्रक्षेत्र हैं, शासकीय प्रक्षेत्र हैं, हर जिलों में है, हमारी हैचरी स्थापित है, हैचरी जिससे हम लोग ब्रीडिंग करा के, प्रजनन करा के और शीट उत्पादन करते हैं और अपने प्रक्षेत्र पे उसको रियरिंग करते हैं, मतलब संवर्धन करते हैं। और जब वो 26 mm का हो जाता है फ्राई स्टेज में या फिंगरलिंग, तब उसको हम लोग सप्लाई करते हैं। स्पान भी सप्लाई करते हैं, किसी को अगर स्पान रियर करना है तो वो भी हम लोग शासकीय प्रक्षेत्र, आप लिंग निजी मत्स्य प्रक्षेत्र भी हमारे बहुत अच्छे हैं, कुशल प्रगतिशील हैं, उनसे भी आप ये बीज प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी सर, आपने मत्स्य पालन के बारे में विस्तृत हमें जानकारी दी सर। यदि कोई इच्छुक नागरिक और जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो वह कहाँ संपर्क करे।
0: बिल्कुल सही है, अगर कोई इच्छुक व्यक्ति है और उसको मछली पालन करना है, पूरे मध्य प्रदेश में जगह जगह लोग हैं, किसी के मन में कभी आता है कि मैं मछली पालन करूं, तो अगर उनकी इच्छा है और करना चाहते हैं मछली पालन, तो हमारे जिलों में सहायक संचालक मत्स्य उद्योग, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं, जिलाधिकारी होते हैं, सभी जिलों में हमारे कार्यालय स्थापित हैं और वहाँ जाके ऑफिस में वो अगर संपर्क करते हैं, मिलते हैं, तो उनको पूरी जानकारी मिलेगी कैसे करना है मत्स्य पालन, वो ही मिलेगा और कभी भी जा सकते हैं
1: और संपर्क करके
0: और अपनी जानकारी लेकर व्यवसाय कर सकते हैं।
1: जी सर, आपने हमारे श्रोताओं को मत्स्य पालन से संबंधित बहुत उपयोगी जानकारी दी, जिनसे निश्चित तौर पर हमारे श्रोता, हमारे किसान भाई लाभ प्राप्त करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: सभी को नमस्कार।
1: किसान भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश मत्स्य पालन की संभावनाएं एवं एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति 2026 के बारे में हमने बात करी श्री प्रियंक श्रीवास्तव जी से। आप सहायक संचालक मत्स्य उद्योग संचालनालय मत्स्य उद्योग कार्यालय मध्य प्रदेश में पदस्थ हैं। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, श्रोता किसान भाई बहन किस तरह से मध्य प्रदेश एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति को जाने समझे।
2: सभी को नमस्कार। यदि हम नीति की आवश्यकता की बात करें तो मध्य प्रदेश जल संसाधनों से समृद्ध राज्य है। प्रदेश के वृहद जलाशय, तालाब एवं नदियाँ मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं प्रदान करती हैं। इन संसाधनों का आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके से उपयोग कर प्रदेश के मछुआरे, युवाओं, महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों एवं उद्यमियों के लिए रोजगार एवं आय के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं
1: जी।
2: तथा मत्स्य पालन को अतिरिक्त आय के सशक्त स्रोत के रूप में विकसित किया जा सकता है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार 100 हेक्टेयर से अधिक जल क्षेत्र के जो जलाशय हैं, इनके प्रभावी जल क्षेत्र, जिसे हम इफेक्टिव वाटर स्प्रेड एरिया भी कहते हैं, इसके एक निश्चित भाग में केज कल्चर विकसित किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन द्वारा केज कल्चर को प्रोत्साहित करके मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ निजी निवेश, रोजगार सृजन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वृद्धि हेतु मध्य प्रदेश एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति 2026 लागू की गई है। यह नीति पारंपरिक मत्स्य पालन के साथ साथ केज कल्चर, एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग, इको टूरिज्म, ग्रीन एनर्जी जैसी आधुनिक एवं नवाचार आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है
1: जी।
2: साथ ही मछुआ समुदाय, स्वयं सहायता समूह या सहकारी समितियां या FFPO या निजी निवेशक, इनकी भागीदारी सुनिश्चित करती है। मत्स्य क्षेत्र में निवेश, रोजगार, मूल्य संवर्धन एवं निर्यात को बढ़ावा देने एवं तकनीकी मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता एवं निजी निवेश हेतु प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराती है। इस नीति के अंतर्गत प्रदेश के चिन्हित 100 हेक्टेयर से अधिक जल क्षेत्र के जलाशयों में केज कल्चर इकाइयों की स्थापना कर मत्स्य पालन हेतु उद्यमियों को जल क्षेत्र आवंटित किया जा रहा है, जिसमें निश्चित और बहुत ही न्यूनतम किराया देकर उद्यमी प्रदेश के स्वच्छ जल में केज स्थापना कर मत्स्य उत्पादन का व्यवसाय कर सकते हैं।
1: हम आपसे जानना चाहेंगे कि नीति अंतर्गत पात्र कौन है।
2: जी, मध्य प्रदेश एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति 2026 के अंतर्गत प्रदेश की सभी पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियां, पारंपरिक मछुआरे, महिला स्व सहायता समूह या स्व सहायता समूह, FFPO, अनुसूचित जाति जनजाति, मत्स्य उद्यमी, निजी निवेशक, फर्म, कंपनी, LLPA सभी पात्र हैं एवं सभी इसका लाभ ले सकते हैं।
1: सर आपने कहा कि नीति अनुसार जल क्षेत्र को आवंटित किया जाता है, इसकी प्रक्रिया के बारे में हमारे श्रोता आपसे जानना चाहेंगे।
2: देखिए, जल क्षेत्र का आवंटन पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया से होता है। देखिए, सबसे पहले केज स्थापना हेतु जल क्षेत्र को चिन्हित किया जाना है। इसमें 100 से 1000 हेक्टेयर के जलाशय जो है, इनमें हमारे जिला कार्यालय के द्वारा केज स्थापना हेतु जल क्षेत्र चयनित किया गया है, तथा 1000 हेक्टेयर से अधिक जल क्षेत्र के जो जलाशय हैं, इनमें हमारा जो मत्स्य महासंघ है उसके द्वारा चयन किया गया है। इन जल क्षेत्र को आवंटित करने संबंधी विज्ञप्ति भी विभाग एवं महासंघ द्वारा जारी कर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन आवेदनों का परीक्षण जिला स्तर पर कलेक्टर महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाना प्रावधानित है। वर्तमान तक नीति के उद्यमी मॉडल अंतर्गत 4.5 लाख से अधिक स्वयं के व्यय द्वारा केज स्थापित किए जाने हेतु आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।
1: इस योजना के मूल्यांकन के क्या कुछ मापदंड हैं?
2: जो आवेदन हमें प्राप्त हो रहे हैं, इनका मूल्यांकन, पात्र उद्यमियों का चयन, उनकी कार्य योजना, वित्तीय क्षमता, तकनीकी अनुभव, परियोजना संचालन क्षमता, व्यावसायिक अनुभव, निवेश क्षमता, प्रबंधन व्यवस्था, चयन के बाद ही अनुबंध किया जाएगा। समय सीमा में केज स्थापित किए जाने होंगे जिसका विभाग निरीक्षण भी करेगा। मत्स्य महासंघ के जलाशयों में मत्स्य महासंघ भी निरीक्षण करेगा। उद्यमी द्वारा उत्पादन प्रारंभ करना होगा और इस पूरे काम की नियमित मॉनिटरिंग होगी। उद्यमी को निर्धारित समय पर केज स्थापित करना होगा, गुणवत्ता युक्त मत्स्य बीज डालना होगा, उसे नियमित मत्स्य आहार देना होगा, इस सभी प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखना होगा। इसके साथ ही पर्यावरण के जो मानक हैं उनका पालन करना अनिवार्य होगा। विभाग जो है निरीक्षण में सहयोग करेगा, इस कार्यवाही में सहयोग करेगा। उद्यमी को इसके अलावा केज की सुरक्षा भी करनी है, चोरी को रोकना भी है, प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा भी करनी है एवं केज इत्यादि की नियमित मरम्मत, बीमा इत्यादि जो भी आवश्यक है वो सारी व्यवस्था करनी है। इन सबके साथ यह भी ध्यान रखना है कि हमारे प्रदेश के जो जलाशय हैं इनका जल जो है इनमें प्रदूषण नहीं होना चाहिए। इसके लिए उद्यमी जो है हमारे केज में जो मछलियां हैं उनमें अतिरिक्त फीड नहीं डालेगा, जो मृत मछलियां होंगी उनका वैज्ञानिक रूप से निस्तारण करेगा जिससे जलाशय की गुणवत्ता प्रभावित नहीं हो।
1: बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए। हम जानना चाहेंगे सर कि इस योजना में विभाग की क्या भूमिका है।
2: हाँ जी बिल्कुल, देखिए मत्स्य विभाग द्वारा जलाशय के जो जल क्षेत्र है उसका आवंटन किया जाएगा
1: जी।
2: आवश्यक अनुमति प्रदान की जाएगी, सबसे आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन किया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा, गुणवत्ता नियंत्रण, अनुबंध निष्पादन, निगरानी, ये सारे काम विभाग द्वारा या मत्स्य महासंघ द्वारा किया जाएंगे
1: जी।
2: परियोजना प्रारंभ करने से पूर्व विभिन्न विभागों से आवश्यकता अनुसार अनुमति प्राप्त करनी होगी। जैसे हमारा विभाग है, जल संसाधन विभाग है, जिला प्रशासन है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, जहाँ भी आवश्यक है ये अनुमतियाँ हमें प्राप्त करनी होगी। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस जो है ये आवश्यक मार्ग, इनके लिए आवश्यक मार्गदर्शन के साथ साथ भूमि आवंटन संबंधित विभागों से प्राप्त किया जाएगा। स्वीकृतियां प्रदान करने में विभाग उद्यमियों का पूर्ण सहयोग करेगा। चयनित लाभार्थी द्वारा परियोजना का विभागीय परीक्षण, जलाशय आवंटन, अनुमति, केज स्थापना एवं विभागीय निरीक्षण के बाद ही संचालित किया जा सकेगा। विभाग द्वारा निर्धारित तकनीकी मानकों, संचालन एवं रखरखाव संबंधी सभी नियमों का पालन करना उद्यमी के लिए अनिवार्य होगा।
1: बहुत अच्छी जानकारी सर। सर इस नीति में उल्लेखित फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेजेस क्या है?
2: हाँ जी देखिए, उद्यमियों को फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेजेस के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। बैकवर्ड लिंकेजेस जो है ये जो है जैसे कोल्ड स्टोरेज है, कोई केज स्थापित कर रहा है तो उसके लिए मछलियों की निकासी के बाद उन्हें संरक्षित करने के लिए कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता होती है, बर्फ की आवश्यकता होती है, उसके लिए आइस प्लांट है, और मछलियों के परिवहन के लिए इंसुलेटेड व्हीकल की या रेफ्रिजरेटेड व्हीकल की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीजें जो है उत्पादन के बाद की जो आवश्यकताएं हैं उन्हें बैकवर्ड लिंकेजेस कहते हैं। और फॉरवर्ड लिंकेजेस मतलब कि फिश फीड मिल है, जैसे जो मत्स्य उत्पादन के लिए हमें मत्स्य बीज की आवश्यकता होती है तो उसके उत्पादन के लिए हेचरी रहती है, डियरिंग यूनिट होती है जिसमें हम मत्स्य बीज को छोटे से बड़ा करते हैं। तो इन सारी चीजों को बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस में समाहित किया गया है जिनके लिए प्रोत्साहन विभाग द्वारा प्रदाय किया जाएगा। इसके साथ साथ मत्स्य उद्योग विभाग या मत्स्य महासंघ ये जो है मत्स्य पालन संबंधी मूलभूत जो अधोसंरचनाएं हैं, जैसे लैंडिंग सेंटर है, रोग निदान गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला है या मोबाइल लैब है, ये सारा विकसित करके उद्यमियों को इनकी जो है हम सुविधाएं प्रदान करेंगे। बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस एवं अन्य मूलभूत आवश्यकताओं के द्वारा हम जो है उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं।
1: श्रोताओं अभी हमने श्री प्रियंक श्रीवास्तव जी को सुना और जाना।
3: अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं उन हितग्राहियों के पास जिन्होंने मत्स्य पालन की योजनाओं का लाभ लिया, सरकार से अनुदान प्राप्त किया और मछली पालन की विभिन्न यूनिटों के माध्यम से खुद को तो स्थापित किया ही साथ ही दूसरों को भी रोजगार प्रदान किया। तो सबसे पहले जुड़ते हैं हम एक महिला हितग्राही से।
4: नमस्कार, मेरा नाम रोचिता डे है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। पिछले 3-4 वर्षों से मैं बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी के माध्यम से फिश फार्मिंग बिजनेस कर रही हूँ। जब मैं इस बिजनेस की शुरुआत करने का निर्णय लिया तब मेरे सामने कई चुनौतियां थी, लेकिन भारत सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने मुझे सही अपॉर्चुनिटी और आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस दिया। वर्ष 2022-23 में इस योजना के अंतर्गत मैंने ग्राम पिपलिया हटीला जिला भोपाल में 2 बायोफ्लॉक पॉन्ड स्थापित किया। इस दौरान भोपाल जिला मत्स्य विभाग ने मुझे समय समय पर ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस, सपोर्ट और सब्सिडी दिया। यही सहयोग मेरे सक्सेस की सबसे बड़ी वजह बनी। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि यदि किसी भी व्यक्ति को सही गाइडेंस, आधुनिक टेक्नोलॉजी और सरकार की योजनाओं का सहयोग मिले तो वह अपना बिजनेस सफलतापूर्वक स्थापित कर सकता है। वर्तमान में मैं अपने दोनों बायोफ्लॉक पॉन्ड से प्रतिवर्ष लगभग 20 टन फिश प्रोडक्शन कर रही हूँ। मुझे सबसे अधिक खुशी इस बात की है कि आज मैं 3-4

0: 7 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और 5-7 लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध करा पा रही हूँ। इससे न केवल मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है बल्कि अन्य लोगों को भी मैंने रोजगार का अवसर दिया है। मैं सभी युवाओं, महिलाओं और किसानों से कहना चाहूंगी कि वे सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी लें और उनका लाभ उठाएं और अपना बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने का प्रयास करें। सही मेहनत, सही दिशा और सरकारी सहयोग के साथ सफलता निश्चित रूप से मिलती है। धन्यवाद।
1: किसान भाइयों और बहनों, हम आगे बढ़ेंगे और अब सुनेंगे एक और हितग्राही की सफलता की कहानी।
2: सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं आपका भाई मत्स्य पालक कैलाश नारायण जाट, ग्राम रिछाड़िया कदीम, तहसील बैरूंदा का निवासी हूँ, जिला सीहोर। मैं पिछले 4 वर्षों से मत्स्य पालन का कार्य सफलतापूर्वक कर रहा हूँ। मुझे प्रधानमंत्री संपदा योजना अंतर्गत अनुदान भी प्रदान किया गया है। इस विषय में आप सभी किसान भाइयों से इस व्यवसाय के बारे में अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मुझे इन 4 वर्षों में ये अनुभव किया है कि किसान के लिए मत्स्य पालन एक अच्छा व्यवसाय है। मैंने जब शुरुआत की थी तब 0.5 एकड़ से की थी, वही आज मैं 10 एकड़ में मत्स्य पालन का कार्य कर रहा हूँ। इन 4 वर्षों में मैंने IMC, पंगेशियस, चीतल, कॉमन कार्प प्रजाति की मछलियों का पालन किया है। 10 तालाब हैं, 2 नर्सरी में मैं मत्स्य पालन का कार्य कुशलतापूर्वक कर रहा हूँ। मैं सभी किसान भाइयों से कहूँगा कि अच्छी आमदनी के लिए मत्स्य पालन का व्यवसाय करें, लेकिन आज के समय में महंगाई में जो है किसानों के लिए इससे अच्छा कोई व्यवसाय नहीं है। सहूलियत मिलती है, सारे लोग हमारी मदद करते हैं। अच्छी आमदनी के लिए हम लोगों को ये कार्य करने में बड़ा समय भी बचता है, 6 माह का ये कार्य है। आप लोग किसी भी अनुभवी मत्स्य पालक से जानकारी हासिल कर बड़ी सफलतापूर्वक मत्स्य पालन कर सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। सभी किसान भाइयों को राम राम।
1: किसान भाइयों, अभी हमने मत्स्य उद्योग से जुड़कर वहाँ की नीतियाँ समझी और इस कार्यक्रम को आप सभी श्रोताओं के लिए एक स्थल रिकॉर्डिंग के रूप में तैयार किया। अब आज्ञा दीजिए अपनी रेडियो सखी अंशु तिलेठे को। नमस्कार।
3: भैया बहनों, अब बातें बहुत हो गई तो चलो करत हैं मनोरंजन और सुनत हैं एक मधुर लोकगीत।

0: फसलें हैं उन पे ध्यान दें। बरसात होवे से फसलन में जड़ गलन की समस्या ना हो, ये बात को ध्यान रखें। और भुंसारू और संजा बिरिया आप मेड़ पे धुआं करें जिससे कि फसलें बची रहें। तो जाहती आज की मौसम की जानकारी। आपको आज को कार्यक्रम कैसो लगो और हमें का कछु नव अपने कार्यक्रम में करने चाहिए, आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पतो लिख लें, किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी श्यामला हिल्स भोपाल, पिन कोड है 462002। भैया बहनों अब ले रहे हैं आप लोगों से विदा, आप सबको ये चलती विरिया अमृता बहन की राम राम।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहा,
2: परम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के मध्य दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे पहले सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल सुनवाने के लिए चलिए अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: In terms of not only you know the statistics but also keeping in view the recent form, India routed their opponents in this tournament so far. They defeated Thailand by 94 runs. They went on to defeat Hong Kong, China by 137 runs, and then they beat Pakistan by 7 wickets. Remember, Pakistan were all out 55, and the Indian team as a bowling unit has been extremely impressive. Well, if there was any blemish, if there has been some vulnerability shown, well, then it was in the batting, as we have seen a couple of mini collapses, one against Thailand and one against Pakistan. Three wickets falling, and in against Thailand also, there were a few wickets in the middle order. So that has been the only vulnerability shown by the Indians. Otherwise, well, it has been a clinical performance so far by Harmanpreet Kaur and company.
2: बिल्कुल, और उसी अनबीटन रन को इस एडिशन के अंदर जारी रखना चाहेगी ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम। वहीं आप जब बांग्लादेश की टीम की बात करते हैं इस कॉन्टेस्ट के अंदर, तो उनकी कहानी किस प्रकार की रही है उसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला मुकाबला जो आपने खेला इंडोनेशिया के खिलाफ, उसके अंदर आपको जीत मिली 71 रनों से, लेकिन उसके बाद जब श्रीलंका को खेले तो 4 विकेट से हार मिली थी। और उसके बाद आखिरी मुकाबला जब आपने यूएई की वुमेन्स टीम के खिलाफ खेला, तो वहाँ पर बांग्लादेश को उस मैच में 34 रनों से जीत हासिल हुई थी। तो सेकेंड प्लेस टीम रहे थे ग्रुप बी के अंदर बांग्लादेश की टीम। श्रीलंका ने ग्रुप बी को टॉप किया था, इसलिए श्रीलंका का वो सेमीफाइनल मुकाबला होगा पाकिस्तान से, और वो मुकाबला है सेकंड सेमीफाइनल, क्योंकि वो सेकंड प्लेस टीम रही थी पाकिस्तान ग्रुप ए की। तो वन प्लेस टू, और इसी वजह से ग्रुप ए की टॉप रैंक टीम भारत, उनका सामना आज बांग्लादेश की टीम के साथ हो रहा है इस मुकाबले के अंदर। मरूफा अख्तर के हाथ में है गेंद, 50 मैचेस खेले उन्होंने अपने

0: टी20 अंतर्राष्ट्रीय करियर में 43 विकेट उनके नाम है। सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का जो प्रदर्शन रहा है उनका, वो 3 विकेट 21 रन देकर उनका बेस्ट बॉलिंग स्पेल रहा है किसी मैच में, वो गेंदबाजी की शुरुआत करेंगी। और ये शायद बांग्लादेश की टीम का मजबूत पक्ष है, जिस तरह से वो गेंदबाजी करने की क्षमता रखती हैं, अगर शुरुआती विकेट्स निकालने में कामयाब रहीं तो शायद मुश्किल में डाल सकती हैं भारतीय बैटर्स को। पहली गेंद इस मुकाबले की, स्विंग मिलता हुआ और राइट आर्म ओवर द विकेट, मध्यम तेज गति की स्विंग गेंदबाज हैं अरूफा, और गेंद स्विंग करती हुई आई स्मृति मंदना की ओर, पुश किया स्मृति मंदना ने, मिड ऑफ की दिशा में सिंगल ले लिया है, तो खाता स्मृति मंदना का भी खुलता हुआ और भारतीय टीम का भी खुलता हुआ। पहली गेंद पर एक बिना नुकसान।
1: Yes, Marufa has been the most successful bowler for Bangladesh. She has pace and she has variation. She has a swing, as you've just referred to. Marufa Akhtar has taken 7 wickets so far and she is at number 3 in the wicket takers list.
0: अगली गेंद मरूफा की, इस बार शिफाली वर्मा जो कि दूसरी ओपनिंग बैटर हैं भारतीय टीम के लिए, ड्राइव किया उन्होंने मिड ऑफ की दिशा में, रन नहीं आएगा, सीधा मिड ऑफ की फील्डर की ओर ये शॉट खेला, इसलिए रन लेने का वहां मौका था नहीं, सोच जरूर थी पर सिंगल मिला नहीं, पर अच्छा स्विंग प्राप्त करती हुई मरूफा नई गेंद के साथ।
1: Yes, absolutely. And she has undone most of the batters with that swing as well, Marufa Akhtar.
0: जल्दी से आपको एक बात और बता दें कि दोनों ही टीम्स इस मुकाबले में अनचेंज्ड 11 के साथ उतरती हुई। अगली गेंद इस बीच मरूफा की, और इस बार गेंद को थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश दाएं हाथ की बैटर के लिए, टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी नीचे भी रही, इतना ज़्यादा उछाल नहीं था और कीपर को मुश्किल हुई कलेक्ट करने में, सेकेंड बाउंस पे कीपर तक वो गेंद पहुंची है, पर हल्की सी सीम मूवमेंट, इस बार बाहर की तरफ गेंद को निकाला।
1: The ball to swing quite consistently, Marufa Akhtar. She took 2 wickets in the first match, 3 in the second, and 2 in the third against UAE.
0: Shefali strike par agli gend, ek in swinger andar ki taraf aati hui right hander batter ke liye, isko turn karne ki koshish mid wicket ki disha mein, fielder maujood aur ek aur dot delivery, to ab back to back 3 dot deliveries khel li hain Shefali Verma ne, aur thoda sa dabav kyunki power play chal raha hai, इस वजह से एक अटैकिंग आक्रामक खिलाड़ी हैं शिफाली वर्मा, बल्ला चला के खेलना पसंद करती हैं, थोड़ा सा दबाव इन पे बनेगा।
1: एंड इन द लास्ट मैच शी स्टार्टेड विद अ 6 अगेंस्ट पाकिस्तान।
0: रिलीज शॉट क्या आ रहा है, लग रहा है ऐसा बड़े शॉट की सोच होगी जरूर शिफाली की। अगली गेंद बाहरी किनारा, स्लिप में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, थर्ड पे फील्डर जरूर, डाइव लगा के अपनी बाई और उन्होंने बाउंड्री तो बचाई है, लेकिन इस बीच बैटर्स के पास इतना समय जरूर कि वो 2 रन पूरे कर सकें। शिफाली वर्मा का खाता खुल गया इन 2 रनों के साथ और भारतीय टीम का स्कोर अब 3 बिना नुकसान 5 गेंदों के बाद।
1: So lucky runs there for Shefali Verma. The ball was about to race towards the boundary, but ultimately just inside the boundary, the third man fielder did well to stop the ball.
0: जी अच्छा ड्राइविंग एफर्ट था वो बाउंड्री रोप पे, वाइडिश थर्ड पे बाउंड्री राइडर तैनात। याद रखिए कि पावर प्ले चल रहा है पहले 6 ओवर्स, यानी केवल 2 खिलाड़ी उस 25 गज के घेरे में, विमेंस क्रिकेट के अंदर मेंस क्रिकेट की तरह वो 30 गज का घेरा नहीं बल्कि 25 गज का घेरा होता है, तो 2 फील्डर्स बाउंड्री के ऊपर उस घेरे के बाहर। पैड लाइन पर अगली गेंद, शॉर्ट फाइन सर्कल के अंदर, बीट कर दिया उस फील्डर को, 4 रन मिलेंगे शफाली को, ये 4 रन भारत के खाते में जुड़ते हुए और इन 4 रनों के साथ पहले ओवर की हुई है समाप्ति, 7 बिना नुकसान पहले ओवर के बाद।
1: So that was not the best of deliveries from Marufa, straying down the leg side and asking for trouble, and Shefali Verma just pouncing on that and getting a boundary. So that's the first boundary for the Indian team. And that will release the pressure to some extent on the batters.
0: जहाँ 50वां T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेल रही हैं मरूफा अख्तर, तो दिलचस्प रहेगा कि विकेट्स की लय जल्दी पकड़ लें तो बेहतर रहेगा उनके लिए भी और बांग्लादेश की टीम के लिए भी, लेकिन भारत के लिए अच्छी बात यह कि 7 रन स्कोरबोर्ड पर पहले ओवर के बाद शिफाली और स्मृति मंदना के बल्ले से रन निकले, यही उम्मीद रहेगी सेमीफाइनल में जीत आए, पहले तो बड़ा स्कोर आए स्कोरबोर्ड पर, इसी की सोच रहने वाली है।
1: And now it's Sultana Khatun now, bowling to Smriti Mandhana, and this time it was on the Midland leg.

0: and Shruti Mandhana flicks it towards Kwelik and gets an easy single. So first run and the first ball of the second over.
1: जी हाँ, क्योंकि एक लेफ्ट हैंडेड बैटर नीलाद्री क्रीज पर है ना, इसी वजह से आपने ये सोच रखी कि एक ऑफ स्पिनर को लगा दें उस लेफ्ट हैंडेड बैटर के सामने, एक सोच रहेगी कि गेंद टर्न करके बाहर निकलेगा, पर स्मृति मानदना बहुत समझबूझ के साथ वो सिंगल ले लिया है। अब शेफाली वर्मा स्ट्राइक पर है, ये दिलचस्प मैचअप रहेगा।
0: एब्सोल्युटली, दिस टाइम जस्ट अ बिट शॉर्ट एंड शेफाली रॉकिंग टू द बैक फुट बट कांट पियर्स द इनफील्ड देयर। 1, 2, 3, 4, 5 fielders manning the offside, and it has been fielded by the point fielder over there, and no run for that. So Shefali will be eyeing for a big shot as Sultana comes in, and this time Shefali goes over the top, over the bowler's head. That's very high. Did she clear? No, she didn't. Oh my goodness, she has been dropped in the long on, just inside the boundary, and everything's happening here. So a first opportunity for Bangladesh goes a begging.
1: Sultana ne yahan pe lalchaya tha Shefali ko ek bada shot khelne ke liye, gend ki pitch tak nahi pahunchi, utha kar long on ke upar se khelne ki koshish, fielder maujood thi boundary pe aur Fahima के द्वारा ये कैच जो कि लिया जाना चाहिए था वो कैच छूटा है, और एक बाउंड्री चेक भी किया जाता हुआ इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि क्या गेंद कहीं उनके हाथों से जब छिटकी है तो कहीं बाउंड्री कुशन को तो नहीं छू गई। जिन्हें ऐसा हुआ नहीं, अंत में केवल सिंगल शेफाली के नाम आया, पर दिलचस्प मुकाबला। अगली गेंद डॉट बॉल स्मृति मानदना के खिलाफ, तो बहुत कुछ घटता हुआ पहली तीन चार गेंदों में इस ओवर की।
0: Absolutely. So it's a good contest. And the next delivery, just a bit short, and Shruti Mandhana plays it defensively towards mid-on, and the bowler will field in her follow-through. Sultana Khatun missed the first match against Indonesia, got one wicket against Sri Lanka and another one against UAE. The next delivery, and Smriti Mandhana this time goes for a big one, but mistimes it completely, and this time she's taken in the mid-on region. So Smriti Mandhana goes, the first wicket for India falls, and Smriti Mandhana goes scoring only two runs. So both the Bangladeshi bowlers have been very tight with their length, and the Indians trying to accelerate. Shefali Verma escaping, but this time Shruti Mandhana doesn't have the good luck. She has been caught. That was a well-judged catch in the mid-on area, and Shruti Mandhana's innings comes to an end.
1: Yeah, two runs banakar Shruti Mandhana catch out hui. Shorna ne liya wo catch mid-on pe, aur Sultana ke naam safalta unke over ki aakhri gend par. स्मृति मानदना को 66 रन और चाहिए थे लीडिंग रन गेटर बनने के लिए T20 आई क्रिकेट के अंदर। सूजी बेट्स के नाम वो रिकॉर्ड है, लेकिन आज मौका था स्मृति मानदना के पास उस रिकॉर्ड को अपने नाम करने का, लेकिन दो रन बनाकर हो गई हैं आउट। ये आंकड़े जो हैं, दिलचस्प स्टैट्स जो हैं आपकी तरफ आ रहे हैं कर्टसी मनोज कुमार जो हमारे स्टैटिस्टिशियन हैं आज के इस मुकाबले के लिए। पर फिलहाल तो वह किफ़ायती ओवर अंत में बनता हुआ, केवल दो रन दिए, एक सफलता भी अपने नाम रही वहाँ पर गेंदबाजी करते हुए सुल्ताना के नाम। हमारे इस मुकाबले के स्कोरर भगवत सिंह रावत ये सारे नंबर्स हम तक पहुँचाते हुए, दो ओवर के बाद 9 रन स्कोरबोर्ड पे, एक विकेट के नुकसान पे। नई बैटर प्रतिका, लेकिन फिलहाल जो ओवर की शुरुआत हुई है, स्ट्राइक पर शेफाली वर्मा मरूफा अपने दूसरे और पारी के तीसरे ओवर की शुरुआत करते हुए पुल कर दिया इस गेंद को मिड विकेट क्षेत्र में। 4 रन आएंगे शेफाली वर्मा के नाम, कोई वहां पे संदेह नहीं था उस शॉट को खेलते हुए। लेंथ को बहुत जल्दी पकड़ा, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और उस पे किया बड़ा प्रहार, मिड विकेट के क्षेत्र में 4 रन अपने नाम किए।
0: इमीडिएटली आफ्टर अ विकेट फॉल्स शेफाली वर्मा गोज फॉर अ पुल शॉट, दिस इज व्हाट कॉन्फिडेंस इज, एंड शी हैज मेड लवली कॉन्टैक्ट एंड गेट्स 4 रन्स देयर।
1: ये ग्राउंड की सतह ऐसी है जहां पर थ्रू द लाइन शॉट खेलना कई बार इतना आसान होता नहीं है, वही करने की कोशिश यहां पे शेफाली वर्मा के द्वारा, ड्राइव किया हवा में मिड ऑन पे,

0: एक और मौका हाथ से छिटकता हुआ, एक और चांस बन सकता था कैच का, मिड ऑन पे फील्डर मौजूद थी, उस इन स्विंगिंग गेंद पे बड़ा प्रहार करने की कोशिश शेफाली वर्मा की, बैट का हैंडल थोड़ा सा हाथ में मुड़ा जरूर और इसी वजह से कॉन्टैक्ट बल्ले के साथ गेंद का इतना अच्छा हुआ नहीं और मिड ऑन पे जो कैच लिया जाना चाहिए था वो कैच फिर चिटका।
1: So शेफाली वर्मा is having fortunes in her favor today.
0: 13 रन एक विकेट के नुकसान पे, अगली गेंद पे कदमों का इस्तेमाल, डाउन द ट्रैक आई है शेफाली वर्मा और पुश कर दिया इस गेंद को कवर्स की दिशा में, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेला हुआ ये शॉट आसानी से उन्हें एक रन देगा और अब स्ट्राइक पर ले आएगा प्रतिका रावल को, नई बैटर जो क्रीज पे आई है, केवल चौथा T20I मुकाबला खेलते हुए अपने करियर का, 36 रन इनके नाम, 109 का स्ट्राइक रेट। पर आप जब एक दिवसीय क्रिकेट की बात करते हैं और पिछले एक दिवसीय महिला विश्व कप की बात करते हैं तो प्रतिका रावल की जो बल्ले की जो कमाल आपने देखे थे ना उनको आप भुलाइएगा मत, जिस तरह से वो फॉर्म उस टूर्नामेंट में उन्होंने दिखाया था T20 में उसी फॉर्म को रेप्लिकेट करना चाहेंगी। अगली गेंद पिच्ड अप डिलीवरी, ड्राइव किया इसे मिड ऑफ की फील्डर को बीट करती हुई प्रतिका रावल, 4 रन करेंगे अपने नाम, खाता खोला है अपनी पहली गेंद का सामना करते हुए प्रतिका रावल ने इस चौके के साथ और भारतीय टीम का स्कोर इस चौके के साथ अब 18 एक विकेट के नुकसान पर।
1: यस सर, प्रतिका रावल डिडंट कंट्रीब्यूट मच इन दिस टूर्नामेंट सो फार, स्कोर्ड 22 अगेंस्ट थाईलैंड, 10 अगेंस्ट हांगकांग एंड 4 अगेंस्ट पाकिस्तान, बट शी इज टेक्निकली साउंड एज अ बैटर।
0: हाँ बिल्कुल, इस इनिंग्स के अंदर अब तक 3 चौके लग चुके हैं। अगली गेंद मारूफा की इन स्विंगिंग गेंद, पुश कर दिया इसे हाफ फ्रंट फुट पे आई थी यहाँ पे प्रतिका रावल, कवर्स की दिशा में गैप ढूंढने में कामयाब, पहला रन तेजी से पूरा किया और दूसरे रन के लिए वापसी करी, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स वहाँ दिखाती हुई प्रतिका रावल, 2 रन और भारतीय टीम के खाते में जुड़ते हुए स्कोर अब 20 एक विकेट के नुकसान पर 2.5 ओवर के बाद।
1: प्रतिका रावल is technically sound and so her success in ODIs have been much better. We'll talk about that after this ball.
0: आउट स्विंग इस बार मारूफा के द्वारा, आखिरी गेंद इस ओवर की बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद, लगभग 6-8 मीटर लेंथ पे टप्पा और फिर थोड़ी सी मूवमेंट अवे फ्रॉम द राइट हैंड कीपर ने उसे कलेक्ट किया, डॉट बॉल के साथ करी है ओवर की समाप्ति और स्कोर 20 एक विकेट के नुकसान पर 3 ओवर के बाद भारतीय टीम का। याद रखिए टॉस जीता था बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना ने और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है सेमीफाइनल में भारतीय टीम के खिलाफ और एक विकेट जो गिरा है अब तक वो विकेट स्मृति मांदना का विकेट जो गिरा, स्मृति मांदना 2 रन बनाकर कैच आउट हुई, शौर्णा ने कैच पकड़ा था सुल्ताना की गेंदबाजी पर उसके बाद अब एक साझेदारी पनपती हुई, 11 रनों की ये साझेदारी शेफाली और प्रतिका रावल के बीच।
1: यस एंड दैट वाज शौर्णास 26th कैच इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। नेक्स्ट डिलीवरी शेफाली फेसिंग सुल्ताना एंड दिस टाइम शी प्लेज इट टुवर्ड्स कवर and she will get no run for that. So Shefali remains on 12 of 11 deliveries and India is on 20 for 1. This is the fourth over in progress. Sultana Khatun, this time Shefali comes out of charge and she puts it towards mid wicket. There is cover and that's well fielded in the end, so that will be only a single for Shefali. In fact, she's taken a couple of runs. So that's well run at the end by Shefali. She moves on to 14 of 12 deliveries. And India move on to 22 for the loss of one wicket. That's the wicket of Smriti Mandhana. Next delivery on the off stump. And Shefali Verma trying to cut that ball but couldn't make contact. The ball goes towards the cover and no possibility of any run on that occasion.
0: किफ़ायती गेंदबाजी करी है सुल्ताना ने, अपना दूसरा ओवर डाल रही हैं, केवल 4 रन अब तक कंसीड किए हैं 9 गेंदों में।
1: नेक्स्ट डिलीवरी एंड शेफाली डांसेस डाउन द क्रीज, दिस टाइम शी मेक्स कांटेक्ट एंड दिस टाइम शी विल गेट द मैक्सिमम ओवर द बॉलर्स हेड, दैट्स द सिक्स,
0: पहला सिक्स। जी हाँ बिल्कुल, पहला सिक्स इस इनिंग्स का और वो शेफाली वर्मा के बल्ले से आया है
1: एंड शेफाली वर्मा दिस टाइम मेकिंग

0: mistake, having a very good contact with the ball and a bat and timing it well to perfection, and the ball sailing over mid-wicket, rather over the bowler's head for a six. And next delivery once again, she goes for a big one. Will she go over the fence? Yes, she does. That's another six. So back-to-back sixes here for Shefali Verma. She moves on to 26 of 15. And this is what is needed in the power play of a T20 match. And Shefali Verma is an attacking player. She knows how to do that. So the complexion of the match has changed to a certain extent with these back-to-back over boundaries. Next delivery. Oh, and this time she gets turned. There's an appeal, half-hearted appeal. And that's the end of the fourth over. India are 34 for the loss of one wicket.
1: 14 run us over se aate hue Sultana ke, jisme wo do bade sixes shamil the. और क्या करारी ये बल्लेबाजी करी है शफाली वर्मा ने उस ओवर के अंदर. देखिए जो दो बैटर्स इस समय क्रीज पर हैं, चार ओवर डल चुके हैं, 34 रन भारतीय इस टीम के नाम स्कोरबोर्ड पर एक विकेट के नुकसान पे. जो दो भारतीय बैटर्स इस समय क्रीज पे, प्रतिकर रावल और शफाली वर्मा, इन दोनों के बीच एक बड़ा दिलचस्प कनेक्शन है जिसके बारे में मैं बातचीत करूँगा. और वो 2025 के 50 ओवर वर्ल्ड कप की बात करूँगा जहाँ भारतीय टीम विजयी रही थी. और उस मुकाब उस टूर्नामेंट के अंदर प्रतिका रावल जबरदस्त फॉर्म में थी. उस टूर्नामेंट में 7 मैचेस में 308 रन बनाए थे, 122 हाईएस्ट था, 51.33 की उनकी एवरेज रही थी और फिर इंजर हो गई थी. और आपको याद हो जब वो इंजर हुई तो शिफाली ने उनकी जगह ली थी और फिर उनका प्रदर्शन उस फाइनल में आप बुला नहीं सकते. जिस तरह से उन्होंने बैटिंग करी थी, रन बनाए थे और करारी ये बल्लेबाजी करी थी शिफाली वर्मा ने, फाइनल के अंदर वो 87 रनों की पारी खेली थी केवल 78 गेंदों में. कितनी अहम रही थी वो इनिंग्स उस फाइनल के अंदर.
0: यस, एंड प्रतिका आल्सो गॉट 100 अगेंस्ट न्यूजीलैंड. दैट वाज हर सेकंड 100 इन ओडीआई. सो शी हैज प्रूव्ड हरसेल्फ इन 50 ओवर फॉर्मेट. नाउ इट्स टाइम टू प्रूव हरसेल्फ इन द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट एज अ न्यू बॉलर नाउ इज इंट्रोड्यूस्ड. इट्स नाहिदा.
1: जी हाँ, दो ओवर डाले थे मरूफर अख्तर ने इस छोर से. तेज गेंदबाज की जगह अब एक और स्पिनर का इस्तेमाल, लेफ्ट आर्म स्पिन, क्योंकि दो राइट हैंडेड बैटर्स क्रीज पर हैं, इसलिए अब नाहिदा से गेंदबाजी कराई जाती हुई. पहली गेंद बैकफुट पर जाके टर्न कर दिया इस गेंद को, वाइड ऑफ मिड ऑन. एक आसान सा सिंगल आएगा पहली गेंद पर. 35 रन स्कोरबोर्ड पे एक विकेट के नुकसान पे 4.1 ओवर के बाद. प्रतिका रावल, बिल्कुल सही काम किया आपने, सिंगल लिया, मौका दिया. यहाँ पे एक नई गेंदबाज आई है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, अगेंस्ट द टर्न लेग साइड पे खेलने जाएंगी तो मुश्किल रहेगा. फील्ड की सजावट ये डीप मिड विकेट बाउंड्री पे, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे आम. और अगली गेंद इसको ड्राइव करने की कोशिश रही है, मिड ऑन को बीट करने की सोच थी शफाली वर्मा की. अच्छी डाइविंग एफर्ट वहां पे फील्डर के द्वारा, गेंद को सर्कल के बाहर जाने से रोका, लेकिन सिंगल नहीं रोक पाएंगी. एक रन और आएगा भारतीय टीम के नाम, 36-1 के नुकसान पर भारतीय टीम. नाहिदा अपना पहला ओवर डाल रही है अपने स्पेल का, इस पारी का पांचवा ओवर, यानी इस ओवर के बाद एक ओवर और पावर प्ले का बाकी. पुश ड्राइव कवर्स की दिशा में, कोई रन नहीं प्रतिका रावल के नाम इस बार. एक डॉट डिलीवरी नाहिदा के द्वारा.
0: नाहिदा अख्तर has played 110 matches and has taken 138 wickets, it's very experienced.
1: Yeah, एक बार फिर वो आम नाहिदा अख्तर के द्वारा बैकफुट पर जाकर मिड ऑफ की तरफ खेलने की कोशिश, सीधा बैक टू द बॉलर खेला है इसको प्रतिका रावल ने. दो बैक टू बैक डॉट डिलीवरीज इस ओवर के अंदर आती हुई. पांचवी गेंद, लेफ्ट आर्म राउंड, इस बार हल्के हाथों से गेंद को मोड़ दिया है वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र में. और जब तक फील्डर आके गेंद को फील्ड करेंगी, आसानी से एक रन और प्रतिका रावल अपने नाम करेंगी. प्रतिका रावल अब 8 पे पहुंच गई है सिंगल के साथ और भारतीय टीम का स्कोर 37 एक विकेट के नुकसान पे. नाहिदा अख्तर, जब आप इनकी T20 आई आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो 128 विकेट हैं इनके नाम. इस बार अगली गेंद स्क्वायर ड्राइव करने की कोशिश, शफाली वर्मा की लीडिंग एज लगाए, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट की फील्डर के सर के ऊपर से गेंद निकली है, बाउंड्री रोप तक नहीं पहुंचेगी जब तक फील्डर गेंद को

0: रोक कर वापस थ्रो कर पाए। वहां पर
1: जोरिया फिर
0: दो रन और जुड़ते हुए और इसी के साथ हुई है पांचवें ओवर की समाप्ति। 39 एक विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम एक ओवर बचाए नीलाद्री पावर प्ले का, और कोशिश भारतीय टीम की यही दिखी है कि वो पावर प्ले में मैक्सिमम रन्स बटोर सके।
1: एब्सोल्युटली, एंड टू डू दैट शेफाली वर्मा इज ऑन द क्रीज, स्मृति मंधाना इज द ओनली प्लेयर आउट सो फार, सो इट हैज बीन अ गुड बैटल बिटवीन द बॉल एंड बैट, एंड द बांग्लादेशी बॉलर स्टार्टेड वेल, बट देन शेफाली वर्मा हिट अ कपल ऑफ सिक्सेस एंड just a bit changed the complexion of the power play to some extent and got it in favor of India. Now we have to see who will be bowling the last over of the power play. It will be Rabea Khatun, and Rabea Khatun, spinner comes in and she hits the pad. There is an appeal for leg before. The umpire is unmoved. The ball was streamed down the leg side, I reckon.
0: जी हाँ बिल्कुल, लेग स्टंप को मिस कर जाती गेंद। एक इनिशियल रिएक्शन अंपायर की तरफ से शायद सोच का था, पर फिर देखा कि बाकी मिडिल और ऑफ स्टंप साफ दिख रही थी जब कांटेक्ट पैड के साथ हुआ।
1: एंड दैट वाज जस्ट अ बिट शॉर्ट एंड प्रतीका रॉक्ड बैक टू द बैक फुट बट कुडंट मेक अ गुड कांटेक्ट ऑफ बॉल, कुडंट प्लेस द बॉल टू परफेक्शन। द बॉल इज फील्डेड बाय द कवर फील्डर एंड देयर इज नो रन। प्रतीका नाउ next delivery straying down to the leg side, and once again Pratika unable to flick the ball, so this can be just a bit costly because one would reckon Shafali would have been a better bet to be on the striking end in this last over of the power play. Next delivery, and this time Pratika comes out and she hits it over mid wicket and that will go the distance. That's a six.
0: थोड़ा सा विपी आर्म एक्शन है रबिया का। प्रतीका रावल पहली दो तीन गेंदें लगी उसको थोड़ा सा उसकी यूज्ड टू होने के लिए, लेकिन उसके बाद अगली गेंद पे कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक पहुंची और उसके बाद वो बॉटम हैंड का प्रयोग एलिवेशन ऊंचाई प्राप्त करने के लिए उस शॉट में, और दूरी भी मिली पूरी यानी तीछे की मंजूरी, बहुत करारा प्रहार सिक्स के लिए।
1: एंड नेक्स्ट डिलीवरी जस्ट अ बिट शॉर्ट एंड दिस टाइम प्रतीका रावल गेट्स द थिक आउटसाइड एज, wanted to play towards mid wicket, the ball goes towards mid off and the bowler feels in her follow through, no run for that, so it's a good over except for that over boundary. Next delivery once again short and she wanted to cut the ball, once again finds the fielder inside the circle, so that's the end of the over and five dot balls coming in that over, so that will make the Bangladesh captain happy. And Pratika Rawal only hitting 1-6.
0: तो चलिए पावर प्ले समाप्त हो चुका है, 6 ओवर समाप्त और भारतीय टीम का स्कोर 45 एक विकेट के नुकसान पर। वो ओवर रबिया खान का 6 रन आए उस ओवर से, वो एक बड़ी हिट, वो एक सिक्स जो आपको देखने को मिला था। एक विपी आर्म एक्शन के साथ गेंदबाजी करती हैं, लेग ब्रेक गेंदबाज हैं रबिया खान, पर उनके एक्शन को पिक कर पाना इतना आसान है नहीं कि कब वो लेग ब्रेक डाल रही हैं कब गुगली का इस्तेमाल कर रही हैं, इसलिए शायद वो पहला ओवर थोड़ा सा भापने में निकल गया प्रतीका रावल के लिए। पर अब देखना यह है कि जब फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस खुलती हैं, अब आप चार फील्डर उस 25 यार्ड के घेरे के बाहर ले सकते हैं। वुमेन्स क्रिकेट में ये एक और बदलाव है मेंस क्रिकेट की तुलना में, जहां पे पावर प्ले के बाद मेंस क्रिकेट में आप 5 फील्डर्स ले सकते हैं उस 30 गज के दायरे के बाद जो मेंस क्रिकेट में होता है। वुमेन्स क्रिकेट में वो 25 गज का घेरा इनर सर्कल, और उसके बाहर आप पहले 6 ओवर्स के बाद 4 फील्डर्स ले सकते हैं, तो 5 फील्डर्स को सर्कल के अंदर रखना अनिवार्य। और अब यहाँ पे गैप्स खुल जाते हैं उन सिंगल्स और टूज के लिए, तो स्ट्राइक रोटेशन किस तरह से कर पाती है ये भारतीय टीम वो दिलचस्प रहेगा देखना। करंट रन रेट 7.50 की। शेफाली वर्मा स्ट्राइक पर, नाहिदा नए ओवर की शुरुआत करती हुई, इस बार बैक फुट पे गई और गेंद को खींच दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। एक आसान सा सिंगल आएगा शेफाली वर्मा के और भारत के नाम 46 स्कोरबोर्ड पे, तो एक नपीतुली शुरुआत रही है। रन रेट अच्छी है, सिर्फ एक विकेट नीलाद्री जो गिरा है वो स्मृति मंधाना का विकेट जो केवल 2 रन बनाकर आउट हुई।
1: Yes, of course, and the next delivery Just a bit short, and it has been played towards cover. There is protection there. Well, it has quite a mixed beginning of this to this patch, as Bangladesh has started well, but then Shefali Verma is not on song, but at least in good form, as the next delivery has been played towards sweeper cover. There is protection now in the deep, and she'll get a single for that.
0: जी आसान से सिंगल वहां पर रन बॉल. अब यही मैं बात कह रहा था, जैसे ही वो पावर प्ले समाप्त हुआ, अब आपको गैप्स खुलते हुए देखेंगे फील्ड के अंदर और मौका बनेगा स्ट्राइक रोटेशन का, सिंगल्स को निकालने का. वो बाउंड्रीज लगाने का आपके पास अवसर पावर प्ले में था, अब मैक्सिमाइज कीजिए स्ट्राइक रोटेशन पे सिंगल्स को. लेकिन अगली गेंद नाहिदा की, इस बार ऑफ स्टंप लाइन पर, बैक फुट पे गई प्रतिका, डॉट बॉल, आसानी से इसको डिफेंसिवली वापस खेला गेंदबाज की तरफ. और ये थोड़ी सी मुश्किल का सबब बन सकता है जब आप डॉट बॉल्स इस फेज ऑफ द गेम में, मध्य के ओवर्स में आप खेलना शुरू करें. यहाँ पे आपके पास स्ट्राइक रोटेट करके सिंगल्स लेने का चांस है. अगली गेंद बैक फुट पे गई, अगेंस्ट द टर्न गेंद को मोड़ा है वाइड इश डीप मिड विकेट की तरफ. इस गेंद को खेला जब तक फील्डर, बाउंड्री रोप से आकर फील्ड करेंगी. आसानी से एक रन और प्रतिका रावल के नाम. प्रतिका रावल पहुंच गई हैं 16 पर, रन अ बॉल पारी खेलती हुई प्रतिका रावल. वहीं शेफाली वर्मा अब स्ट्राइक पर 31 पे बैटिंग कर रही हैं, 20 गेंदों में केवल बनाए हुए ये 31 रन. अगली गेंद को पुश किया है कवर पॉइंट की दिशा में, सीधा फील्डर के हाथों में, कोई रन नहीं आएगा और डॉट बॉल के साथ होगी 7वें ओवर की समाप्ति. भारतीय टीम का स्कोर 49 एक विकेट के नुकसान पर.
1: Yes, and Shefali Verma is the key batter at the moment for India, and she can single-handedly change the entire complexion of a match. She's at number 2 in this tournament in terms of scoring runs. Before this match, she had scored 104, just behind Shruti Mandhana, who scored 152 before this match. Another two runs, 154 in all so far for Shruti Mandhana. Shefali has been quite successful, scoring 64 of 36 in the first match. As Rabia will continue, she's given 6 runs in the first over. This time she strays down the leg side and Pratika flicks. There is a bit of a misfielding there in the square leg area, and she will nonetheless get only a single for that. Jiraiya Firdos was there, just misfielding, but you do not take an extra run and misfield is what the original order of the coaches say. They've only taken a single for that. A bit of a different type of a
0: bowling
1: action, isn't it?
0: Yeah, inka jo action hai na, थोड़ा सा मिस्ट्री एक्शन है, विपी आम एक्शन है. रबिया का अगली गेंद स्टंप लाइन पर पुश किया है कवर्स की दिशा में, इस बार कोई रन नहीं आएगा. शेफाली वर्मा डॉट बॉल खेलती हुई. इनके एक्शन अनलाइक जैसे लेग स्पिनर्स का एक्शन होता है, थोड़ा सा राउंड आर्म एक्शन, इनका इतना राउंड आर्म एक्शन नहीं है, हाई आर्म एक्शन रखती हैं और इसलिए ज़्यादातर गूगली का इस्तेमाल करती हैं ये.
1: एब्सोल्युटली, एंड दिस टाइम शेफाली कम्स आउट ऑफ चार्ज एंड सीइंग दैट द बॉलर जस्ट पिचिंग दैट शॉट, एंड शेफाली plays it towards a cover, and she will get an easy single for that. So we have to wait and see how Shefali paces her innings. She scored 32 of 23 already. Next delivery, Pratikani is now on strike way down the leg side, and that will be called a wide, I reckon. And that's a wide, the first wide of the match. Yes, the first wide of the match. Our scorer Bhagwat Singh Rawat confirms that it's a first wide of the match, coming on the 8th over for Bangladesh. Short delivery, next one on the leg stump, and it has been played towards mid-wicket, and Pratika will get a single. So she moves on to 18 now, 18 of 18 deliveries. She did hit a 6, but she played plenty of dot balls.
0: जी हाँ, 9 डॉट डिलीवरीज खेल चुके हैं प्रतिका शेफाली, 10 डॉट डिलीवरीज खेल के बैटिंग करती हूँ फिलहाल. ये बैक फुट पंच, लेकिन सीधा एक्स्ट्रा कवर की फील्डर की ओर, इस बार कोई रन और नहीं आएगा. तो एक और डॉट डिलीवरी, 32 पर बल्लेबाजी कर रही हैं शेफाली वर्मा केवल 24 गेंदों में, तो स्ट्राइक रेट तो इनका जबरदस्त है ही, इसमें कोई डाउट नहीं.
1: एब्सोल्युटली, एंड नाउ द लास्ट बॉल, और दैट वाज अ गुगली, एंड शेफाली just adjusting her shot and plays it towards third man, and that will end the over. So 53 for 1 is the score of India after 8 overs.
0: अच्छी शुरुआत रही है शेफाली वर्मा के बल्ले से, दो मैक्सिमम्स इस इनिंग में देखने को ऑलरेडी मिल चुके हैं अब, और कुल 90 सिक्सेस टी ट्वेंटी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में शेफाली वर्मा के नाम है। स्मृति मानधना ने 95 सिक्सेस लगाए, यानी उस सूची के ऊपर बिल्कुल टॉप ऑफ द पाइल, टॉप ऑफ द टेबल स्मृति मानधना 95 सिक्सेस के साथ, शेफाली वर्मा के नाम 90। मौका है अगर आज क्रीज पे बनी रही, क्या पता उस आंकड़े को पार कर देंगे। ये स्टैट्स आपकी तरफ आते हुए हमारे स्टैटिस्टिशियन मनोज कुमार की सौजन्य से यही कहूँगा, पर चलिए फिलहाल तो करंट रन रेट जो है 6.63 की, और अगर इसी करंट रन रेट के साथ बल्लेबाजी करती रही भारतीय टीम तो उम्मीद ये रहेगी कि आप 133 के आसपास स्कोरबोर्ड पर डाल सकें, जो इस सतह पर दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एक अच्छा स्कोर रहेगा। फाहिमा अब नई गेंदबाज आई है गेंदबाजी करने के लिए, नाहिदा अख्तर की जगह पहली गेंद, डॉट बॉल गेंद, थोड़ा सा रुक कर आया इस सतह से, लेग स्पिनर है ये भी, गेंद काफ़ी घुमाव मिलता हुआ उस गेंद को, लेकिन हल्का सा सतह से रुक कर गेंद आई, इसलिए शॉट को चेक करना पड़ा प्रतिकर रावल को, कोई रन नहीं मिला उस पहली गेंद पर। अगली गेंद एक बार फिर थोड़ी सी फ्लाइट दी है, डिप भी मिलता हुआ उस गेंद पर, प्रतिकर ने कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को ड्राइव किया है वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र में, एक रन और आएगा उनके नाम, वो पहुंच गई है 19 पर, और ये साझेदारी अब प्रतिकर रावल और शेफाली वर्मा के बीच 45 रनों की हो गई है।
1: Yes, and the spinners are getting significant turn. Once again, this ball straightening, and it has been played down the ground towards long on, and Shefali will get a single for that. 33 is Shefali's score at the moment. She has scored it playing 26 deliveries. India are on 55 for 1. This is the ninth over in progress.
0: अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल किया, डाउन द ट्रैक आने की कोशिश प्रतिकर रावल की, वो इनसाइड एज, गेंद गई है शॉर्ट फाइन की तरफ, एक सिंगल आएगा वहां पर प्रतिकर रावल के नाम, और सिंगल के साथ नॉन स्ट्राइकर्स एंड की ओर जाती हुई यहां पे प्रतिका 20 पे पहुंच गई हैं प्रतिकर रावल, शेफाली 33 पर फिलहाल स्ट्राइक पे। अगली गेंद डाउन लेग, मुश्किल कीपर के लिए, और यहां पे रन आएंगे क्योंकि कीपर बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाई है, शॉर्ट फाइन की फील्ड जब तक दौड़कर उस गेंद को रोकने में कामयाब रहेंगी। बैटर्स ने एक रन दौड़ लिया है और एक रन और वाइड का भी मिलेगा, यानी कुल दो रन जुड़ जाएंगे खाते में भारतीय टीम के, और इसका मतलब अब भारतीय टीम का स्कोर 58 एक विकेट के नुकसान पर, और ये साझेदारी अब 49 रनों की हो गई है, यानी 50 से केवल एक दूर इस पार्टनरशिप में। बैकफुट पर जाके कट करने की कोशिश अगली गेंद पे प्रतिकर रावल की, लेकिन सीधा पॉइंट की फील्डर की ओर, कोई रन वहां आएगा नहीं उस गेंद पर। फाहिमा फिर तैयार अगली गेंद जान डालने के लिए। इस मुकाबले में काफी कुछ निर्भर रहेगा इनके ऊपर, जिस तरह का अनुभव इनके पास है, कट करने की कोशिश, ओ मिस हुई गेंद कीपर के ग्लव्स से, क्या बाहरी किनारा था, विकेट कीपर और गेंदबाज के रिएक्शन से तो शायद ऐसा लगा कि एक किनारा लगा था बल्ले का, पर ग्लव में गेंद फंसी नहीं और डॉट बॉल के साथ हुई है ओवर की समाप्ति 58 पर एक, उस 9वें ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर।
1: सो बांग्लादेश बॉलर्स आर एट टाइम्स ट्रबलिंग द इंडियन बैटर्स, बट एट द मोमेंट इंडिया वेल प्लेस्ड as they have lost only one wicket, that of Smriti Mandhana, who went early scoring a couple of runs only in this innings. Shefali Verma is the key player. And Rabia to continue. The first ball just a bit short, and Shefali plays it towards extra cover, and it has been fielded just inside the boundary. And she will get one run for that. The 50 run partnership comes up with that single, 50 of 45 deliveries, so that's a good looking partnership. And this time Pratika comes out, dances down the crease, goes for a big one but can't clear the fielder, and she will be caught as well, so another wicket goes. She wanted to come out of the crease and play it over the bowler's head but couldn't time it at all. And the Bangladeshi fans are happy as they get the second wicket.
0: या कदमों का इस्तेमाल किया था लेकिन गेंद की पिच तक नहीं पहुंची थी वहां पर प्रतिका रावल। 23 गेंदें निकल गई हैं, बाउंड्री नहीं आई थी, इसी वजह से दबाव बन रहा था।

0: बैटर्स के ऊपर वो बाउंड्री हिट की तलाश में कदमों का इस्तेमाल किया, डाउन द ट्रैक आए, गेंद की पिच तक पहुंची नहीं, प्रतिकर रावल हवा में खेला उस शॉट को, दिलारा ने अच्छा कैच पकड़ा सेकंड अटेम्प्ट पे, फर्स्ट अटेम्प्ट को जगल किया था दिलारा ने, लेकिन उसके बाद रिकवर किया, सेकंड अटेम्प्ट पे कैच को अंजाम दिया और रबिया खान के नाम आई है वो सफलता। प्रतिकर रावल वापस डग आउट लौटती हुई 20 रन बनाकर।
1: A wicket and success for her team, and a catcher, as Brahmad was saying, was not cleanly taken. Well, remember, there are as many as three catches dropped today already, and Shefali Verma has been in the lucky end of it. A couple of catches of Shefali Verma has been dropped today. Shefali is still in the crease, and she will try to make the most of those lucky moments that she got in her innings. But Pratika Rawal is out, and well, now the captain will be coming in, I believe, Harmanpreet Kaur.
0: Yeah, dono teamein unchanged 11 ke saath utri hain is mukable ke andar, to lineups mein koi change nahi hai. Bhartiya बल्लेबाजी के क्रम में वो गहराई है, हरमनप्रीत कौर, भारती फुलमाली, ऋचा घोष जैसी बैटर इस लाइनअप के अंदर शामिल, दीप्ति शर्मा हैं, तो बल्लेबाजी में तो वो गहराई है, आपको मध्य क्रम के अंदर वो रन्स आसानी से मिल सकते हैं।
1: यस सर, बट द मिडल ऑर्डर ऑफ इंडिया इज येट टू बी टेस्टेड दैट वे, वी हैव सीन क्विक विकेट्स फॉलिंग, बट हरमनप्रीत कौर did play a pretty good innings against Pakistan when a couple of wickets fell very quickly. She steadied the ship and she made 18 of 18 deliveries and steered her team home. So far, India have won all the matches quite comprehensively, and this is the semi-final, remember. And India have always played the finals of Asia Cup right from 2004. In 2004 there were only two teams, mind you, India and Sri Lanka, but since then, when multiple teams started competing in Asia Cup, India have always been in the finals, and out of 9 times India won 7, and they were beaten only twice. Last time they were beaten by Sri Lanka, and in 2018 by the team they are playing against today, that is Bangladesh. So the captain is in the crease now, Harmanpreet Kaur, and she has to shoulder some responsibility now and steer her team to a good score. India at the moment are on 59 for 2, and the first delivery has been swept, and there is an appeal for leg before, though the umpire is unmoved. So that was quite a risky shot to play to start with.
0: जी हाँ, बहुत ज़रूरत थी नहीं शॉट की, और शायद रिव्यू मांग लिया है बांग्लादेश की गेंदबाज ने उस लेग बिफोर की अपील, जिसको नॉट आउट दिया गया है, उसको चैलेंज किया है, DRS का रिव्यू मांग लिया है वहाँ पे, और ये दिलचस्प रहेगा देखना, क्योंकि मुश्किल परिस्थिति थी। आप स्टंप की लाइन में जो गेंद का टप्पा पड़ा उसको आपने स्वीप करने की कोशिश की और मामला थोड़ा सा पेचीदा हो जाता। उसके बाद शेफाली वर्मा भी सिंगल के लिए निकल पड़ी थी, लेकिन हरमनप्रीत कौर देख नहीं रही थी कि वो सिंगल है या नहीं, वो पीछे गेंद की तरफ देख रही थी, थ्रो आके लगा नॉन स्ट्राइकर्स एंड के ऊपर स्टंप्स पे, और शेफाली वर्मा क्या वापस पहुंच गई हैं क्रीज में, ये चेक करने की कोशिश हो रही है, और वो पहुंच गई हैं, तो वहाँ पे तो कोई यहाँ पे संदेह नहीं बचा है कि रनआउट के लिए कोई वहाँ पे अब रिस्क नहीं है आपका।
1: Yes, and in all fairness, it was quite a risky shot to play to start with for the Indian captain. Harmanpreet Kaur is the only woman cricketer who has played over 200 T20 internationals, 206 to be precise. And that is Manoj Kumar, our statistician, coming in with this bit of information. And meanwhile, that run out attempt is being checked by the third umpire again and again. The question is whether the bat was on the ground.
0: और देखिए अब तो रूल्स भी बदल गए ना, एक बार अगर आपने क्रीज के पीछे यानी क्रीज के अंदर आके एक बार बल्ले को जमीन पे लगा दिया है, उसके बाद भले बल्ला दोबारा उठ भी जाए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका बैट एक बार क्रीज के पीछे ग्राउंड हो गया है स्टंप्स के बिखेरे जाने से पहले, तो आप नॉट आउट हैं। और शायद इसी बात की पुष्टि होनी बाकी है कि वो बैट ग्राउंड कर दिया था, अगर बैट ग्राउंड हो गया उसके बाद भले वो बैट उठ भी गया हो जब स्टंप्स पे गेंद लगी हो, वो निर्णय नॉट आउट का रहेगा।
1: Well, and the third umpire is still taking decision and finally she says not out. So not out is the non-striker Shefali Varma, and Hanmanpreet Kaur is yet to score. She's faced one delivery and played quite an extravagant sweep shot. Rabea now with the next delivery over the wicket, and that turned viciously. Rabea, the leg spinner, and the leg spinners are bowling against the right-handed batters. Well, as she's a leg spinner, Harmanpreet Kaur selected that sweep shot. The next delivery on the leg stump this time, and Harmanpreet playing a defensive shot. It's not very easy to play big shots.
0: 25 गेंदे हो गई हैं, कोई बाउंड्री हिट नहीं आई है, और ये दबाव अब भारतीय बैटर्स पे बनेगा। उसी दबाव के चलते प्रतिका रावल का भी विकेट गिरा, वो बड़े शॉट खेलने की कोशिश में थी।
1: And the next delivery once again, it has been played defensively by Harmanpreet. And no run, the bowler fails in a follow through after 10 overs. India are 50. It's a good battle between ball and bat at the moment. The Bangladeshi bowlers are keeping the Indian batters tight, and they're not allowing them to go after the bowling, as Harmanpreet Kaur is the only cricketer who led her team in 151 matches. So that's another record of sorts.
0: Chali, ek record aur. Rabia Khan, 11 innings mein Bharatiya women's team ke khilaf women's T20 antarashtriya mukable mein 14 wicket inke naam hai, 6 se kam ki economy rakhi hai. To agar aap बांग्लादेश की गेंदबाजों की बात करें तो सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला के मुकाबलों में रबिया खान का है भारत के खिलाफ। 14 विकेट्स आज जो उन्होंने विकेट अपने नाम किए उसको मिलाकर। मरूफा को वापस लाया गया है गेंदबाजी के क्रम में, नए ओवर की शुरुआत। ये पारी का 11वां ओवर है, पहली गेंद इसको शेफाली वर्मा ने ड्राइव कर दिया कवर्स की दिशा में, स्वीपर कवर पर फील्ड मौजूद, सिंगल आएगा शेफाली के नाम। काफ़ी देर से स्ट्राइक शेफाली को मिली नहीं थी, लेकिन यहाँ पर केवल सिंगल लिया, स्ट्राइक वापस अपने कप्तान हरमनप्रीत कौर को दिया। 35 पर बल्लेबाजी करती हुई शेफाली वर्मा।
2: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृहमंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत और रूस ने यात्री विमानों के संयुक्त उत्पादन और भारतीय ऑपरेटरों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की डिलीवरी की दिशा में कदम बढ़ाया। केंद्र सरकार ने मूल्य पारदर्शिता, प्रायोजित लिस्टिंग और खोज परिणामों में हेरफेर पर नियमों को सख्त करने के लिए ई कॉमर्स नियमों में संशोधन किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते, और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं।

0: और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुम्बकम यानी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की भावना पर आधारित है और अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की आवश्यकता है।
1: India's approach is rooted in Vasudhaiv Kutumbakam, that is one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
0: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। उन्होंने कहा कि भारत का स्पष्ट सिद्धांत है कि अंतरिक्ष से मिलने वाले लाभ संपूर्ण मानवता तक पहुंचने चाहिए।
1: चंद्रयान 3 मेड इंडिया द फर्स्ट नेशन टू लैंड नियर द लूनर साउथ पोल। आदित्य L1 इज अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ द सन। लास्ट ईयर एन इंडियन विजिटेड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। लुकिंग अहेड वी एम टू एस्टैब्लिश एन इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2035 एंड सेंड एन इंडियन टू द मून बाय 2040। इन ऑल दिस एफर्ट्स आवर गाइडिंग प्रिंसिपल हैज बीन क्लियर दैट बेनिफिट्स मस्ट रीच ऑल ह्यूमैनिटी।
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसमें फ्रांस की सफ्रॉन स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध भी शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण सेवा कंपनी राइड भारत की कंपनी टेकमी टू स्पेस के 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। भारत इस शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के नेताओं का स्वागत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के महत्व और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता का संदेश देंगे। उनका कहना है कि इन संस्थाओं में आज की वैश्विक परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर नई दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं।
2: राष्ट्रीय राजधानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों से आने वाले शीर्ष नेताओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है।

0: शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर समन्वय के साथ काम कर रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने विदेशी मेहमानों के अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आम जनता को कम से कम असुविधा हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली में करीब 15,000 पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस में प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन के विशेष आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि विदेशी गणमान्य अतिथियों के गुजरने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी कैमरे भी लगाए गए हैं।
1: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेके ट्रैफिक से लेके लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
0: भारत की अध्यक्षता 4 प्रमुख स्तंभों लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर आधारित है। ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के बाद से अब तक 350 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया।
2: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान जनता के लिए बंद रहेंगे। भारत और रूस ने आज यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण और भारतीय विमानन कंपनियों के लिए 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति पर चर्चा की। नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अलिखानोव के साथ बैठक में देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए नागरिक यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण पर विचार विमर्श किया। प्रस्तावित समझौतों में पिनकल एयर, एयर केरल और स्लीक एविएशन सहित भारतीय विमानन कंपनियों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति और इससे जुड़ी व्यवस्थाएं शामिल हैं। दो दिन का इनोप्रोम इंडिया कार्यक्रम कल नई दिल्ली में शुरू हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक रूस और भारत की कंपनियाँ हिस्सा ले रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश की आपदा प्रबंधन व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया है और अब किसी के हताहत ना होने का लक्ष्य रखा गया है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के शासी निकाय की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सरकार 3 प्रमुख स्तंभों पर ध्यान दे रही है, जोखिम में कमी, पूर्व चेतावनी प्रणाली और किसी के हताहत ना होने देना। श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आपदा रोधी गांव और शहर तैयार करना है। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य कीमतों में पारदर्शिता, प्रायोजित उत्पादों की सूची, खोज परिणामों में हेरफेर और डार्क पैटर्न से जुड़े नियमों को सख्त करना है। संशोधित नियमों के अंतर्गत किसी उत्पाद की कीमत कम करने पर ई कॉमर्स कंपनियों को घटी हुई कीमत के साथ उसकी पिछली कीमत भी बतानी होगी। नए नियमों से ई कॉमर्स क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता केंद्रित व्यवस्था सुनिश्चित होगी। ये नियम अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.

0: टाइन और हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं

0: निवेश की संभावना है। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोना अग्रवाल, अवनी लेखरा, मिली शाह की टीम ने महिलाओं की R2 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग महिला SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने R1 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को 19-0 से हराया। उधर दुबई में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 2 विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृहमंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। 0 हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India supports a safe and sustainable space domain. Virtually addresses first international space summit in Paris. New Delhi gears up to host world leaders at 18th BRICS summit this weekend. Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping expected to arrive tomorrow. Home Minister Amit Shah reviews disaster preparedness, calls for climate resilient villages and cities under zero casualty vision. India and Russia step forward on joint production of civil passenger planes and deliveries of 105 regional turboprop aircraft to Indian operators. Centre amends e-commerce rules to tighten norms on price transparency, sponsored listings and search result manipulation. India Open campaign at World Para Shooting Championship in South Korea with 4 medal haul including a gold. And in Women's Junior Asia Cup Hockey, India storm into semi-final with record 19-0 win over Pakistan in China. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the first edition of International Space Summit at Paris in France today.
2: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
1: Mr. Modi highlighted the remarkable growth of country's space journey.
2: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar South Pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear that benefits must reach all humanity. Alongside ISRO, India's private space sector is also surging in a big way.
1: Lauding the role of ISRO in space journey, Prime Minister Modi said, ISRO has earned global admiration for

0: भारत की सदारत का महवर मौजू के चार सतून मजबूत इख्तराताउन और पायदार तरक्की का क्याम है। सदारत संभालने के बाद से अब तक 350 से ज्यादा मीटिंगें मुनाकिद हो चुकी हैं, जिसमें ब्रिक्स वज़राए खारजा का इजलास, ब्रिक्स कौमी सलामती के मशीरों का इजलास, वजारती इजलास, शेरपा और इदारे के सरबराह सतह का इजलास, वर्किंग ग्रुप सतह का इजलास और आवाम से आवाम और कारोबार से कारोबार के रवाबित शामिल हैं। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हबीबुर रहमान।
1: इस दौरान दो रोजा ब्रिक्स सरबराह मीटिंग से कबल दिल्ली पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर आइंदा पीर तक कौमी राजधानी में ड्रोन्स और दीगर छोटे फजाई प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। ब्रिक्स सरबराह मीटिंग 2026 के पेश नजर राष्ट्रपति भवन म्यूजियम और अमृत उद्यान कल से 13 सितंबर तक आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। सदर जमहूरिया के सेक्रेटरिएट ने कहा है कि इस हफ्ते राष्ट्रपति भवन के सब्जादार में चेंज ऑफ गार्ड तकरीब भी मुनाकिद नहीं की जाएगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रिंस रहीम आगा खान पंजुम से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में एक मीटिंग के दौरान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आगा खान तरक्याती नेटवर्क की खिदमात को सराहा। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और प्रिंस आगा खान के दरमियान हुई बातचीत में पानी, सफाई, सुथराई, खवातीन की क़यादत में अपनी मदद आप ग्रुपों, तालीम, माशरती तरक्की के तई आगा खान तरक्याती नेटवर्क की खिदमात के बारे में तबादले ख्याल किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मीटिंग के दौरान उन्होंने हिफ्जान सेहत, ज़राअत, देही तरक्की, नौजवान और खवातीन को बाइख्तियार बनाने में आगा खान तरक्याती नेटवर्क के साथ भारत के इश्तराक को मजीद मुस्तहकम बनाने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि नरेंद्र मोदी की क्यादत वाली हुकूमत ने मुल्क के कुदरती आफात से निमटने के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है और इसका हदफ जानी इतलाफ को सिफर तक लाना है। जनाब शाह नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट NIDM की गवर्निंग बॉडी के तीसरे इजलास की सदारत करते हुए खिताब कर रहे थे। जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत तीन बुनियादी सतूनों पर तवज्जो मरकूज कर रही है, जिनमें खतरात में कमी, कबलज़ वक्त इंतबाही निज़ाम और सिफर जानी नुकसान शामिल हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सिफर जानी नुकसान का नुक्ते नज़र सिर्फ कुदरती आफत के मकाम तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि आफात की रोकथाम पर भी तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए। भारत और रूस ने आज सिविलियन मुसाफिर तैयारों की मुश्तरक तैयारी और भारतीय ऑपरेटर्स को इलाकाई परवाजों के लिए 105 टर्बोप्रॉप तैयारों की मुमकिन फराहमी और इससे मुतालिक इंतजामात पर बातचीत की। शहरी हवाबाजी के वजीर राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में सनअत और तिजारत के रूस के वजीर एंटन अलीखानोव के साथ मुल्क में इलाकाई फजाई राबते की बढ़ती हुई जरूरत को पूरा करने के लिए सिविलियन मुसाफिर तैयारों की मुश्तरक तैयारी के सिलसिले में तबादले ख्याल किया। बातचीत में मुजवजा मुआहदों में भारतीय ऑपरेटर्स जिनमें पिनाकल एयर, एयर केरला और स्लीक एविएशन शामिल हैं, जिनके लिए 105 इलाकाई टर्बोप्रॉप तैयारों की मुमकिना फराहमी और उसके इंतजाम भी शामिल हैं। हुकूमत ने सारिफीन के तहफ़ ई कॉमर्स जवाबित 2020 में तरमीम की है ताकि कीमतों में शफाफियत, स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग, सर्च रिजल्ट में हेर फेर और गलत तौर तरीकों से मुतालिक जाब्तों को मजीद सख्त किया जा सके। तरमीम शुदा जवाबित के तहत ई कॉमर्स कंपनियों को कीमत में कटौती के ऐलान के वक्त कम की गई कीमत और उससे पहले की कीमत के बारे में जानकारी देना पड़ेगी। इन जवाबित के तहत ई कॉमर्स कंपनियों की सर्च रिजल्ट में हेर फेर पर पाबंदी लगाई गई है, जो सार्फिन को गलत मालूमात फराहम करती हैं या सर्च क्वेरी के नतायज को मुतासिर करती हैं। तरमीम शुदा जवाबित से ज़्यादा शफाफ, जिम्मेदाराना और सार्फिन पर मरकूज ई कॉमर्स इको निज़ाम कायम होगा। ये तरमीम शुदा जवाबित आइंदा बरस 1 जनवरी से नाफिजुल अमल होंगे। आलमी पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने जनूबी कोरिया के चंगबोन में पहले दिन 1 सोने का, 2 चांदी के और 1 कांसे का तमगा जीता है। मोना अग्रवाल, अवनी लखरा और मिली शाह पर मुश्तमिल भारतीय खवातीन टीम ने सोने का तमगा जीता। मोना अग्रवाल ने चांदी का तमगा जीता जबकि अवनी ने कांसे का तमगा हासिल किया। खवातीन के जूनियर हॉकी एशिया कप में भारत आज चीन के मौके में पाकिस्तान को 19-0 से जबरदस्त शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। भारत ने शुरुआत से ही अपना दबदबा बरकरार रखा और इस टूर्नामेंट में बड़ी जीत दर्ज की। भारत ने 19 गोल किए, उसे 18 पेनाल्टी कॉर्नर और 1 पेनाल्टी स्ट्रोक मिला, جبکہ پاکستان ایک بھی گول نہیں کر سکا. بھارت کی طرف سے پوجا ملک نے 3 گول کر کے ہیٹرک لگائی. بھارتی جونیئر خواتین ٹیم ہفتے کے روز سیمی فائنل میں جنوبی کوریا اور ملیشیا کے درمیان میچ جیتنے والی ٹیم کا سامنا کرے گی. بھارتی مردوں کی جونیئر ہاکی ٹیم پہلے ہی سیمی فائنل میں پہنچ چکی ہے. آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت ایک محفوظ اور پائیدار خلائی شعبے کی حمایت کرتا ہے. انہوں نے ورچوئل طور پر پیرس میں منعقدہ پہلے بین الاقوامی خلائی سمٹ سے خطاب کیا. نئی دلی اس ہفتے کے آخر میں ہونے والی 18ویں برکس سربراہ میٹنگ میں عالمی رہنماؤں کی میزبانی کے لیے پوری طرح تیار ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور چین کے صدر شی جن پنگ کے کل بھارت پہنچنے کی توقع ہے. وزیر داخلہ امیت شاہ نے قدرتی آفات سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لیا. انہوں نے کوئی بھی ہلاکت نہ ہو کے نظریے کے تحت آب و ہوا کی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے والے مضبوط گاؤں اور شہر بنانے پر زور دیا. بھارت اور روس نے سیویلین مسافر طیاروں کی مشترکہ تیاری اور بھارتی آپریٹرز کو 105 علاقائی ٹربو پراپ طیاروں کی ممکنہ فراہمی کے سلسلے میں پیش رفت کی ہے. مرکز نے ای کامرس ضابطوں میں ترمیم کرتے ہوئے قیمتوں میں شفافیت، اسپانسر شدہ فہرستوں اور تلاش کے نتائج میں ہیر پھیر سے متعلق ضوابط مزید سخت کر دیے ہیں. جنوبی کوریا میں جاری عالمی پیرا شوٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے شاندار آغاز کرتے ہوئے 4 تمغے حاصل کیے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: بن چکا ہے. Absolutely, and this time Deepti goes inside out. Can she clear the mid off? No, she can't. She has been caught there in the mid off region, and Deepti Sharma's cameo comes to an end. She scored 13 runs off 5 deliveries, and finally Marufa strikes, gets the first wicket in the match.
3: Ye chatur gendbazi hai, کیونکہ آپ نے مڈ آف اوپر رکھا، زیادہ گتی دی نہیں لیفٹ ہینڈڈ بیٹر کو بڑا شاٹ لگانے کے لیے. وہ ان سائڈ آؤٹ اوور دا ٹاپ کھیلنے کی کوشش دیپتی شرما کے دوارا، ربیا نے اچھا کیچ پکڑا اور آخر کار معروفہ کے نام آئی ہے سفلتا پر. اپنا کام کر کے جاتی ہوئی واپس دیپتی شرما، 13 رنوں کی ایک تیز ترار پاری کھیلی انہوں نے، کیول 7 گیندوں میں بنائے تھے وہ 13 رن، اور 6 گیندوں میں معاف کیجیے گا، اس سے 13 رن بنائے. تیز ترار بیٹنگ کر کے اب واپس ڈگ آؤٹ لوٹ چکی ہے. 1 گیند بچی ہے اور سٹرائک پہ بھارتی فل ملی بھارت کے لیے.
2: سو بھارتی فل ملی ول بی فیسنگ دا لاسٹ بال آف دا اننگز، اینڈ دیئر از نو چوائس فار ہر بٹ ٹو گو فار اے بگ شاٹ، اینڈ شی گوز فار اے بگ شاٹ، شی مسز اٹ کمپلیٹلی، اینڈ شی گوز فار اے کوئک رن، اینڈ شی ول بی رن آؤٹ ایز ویل آن دا نان سٹرائکنگ اینڈ. سو دیٹس دا اینڈ آف the Indian innings. A wicket in the last two balls, and in the last ball Bharti has been run out. So the Indian innings comes to an end on 149. So India after 20 are 149 for the loss of 6 wickets.
3: سمجھ نہیں آیا کہ رک کے انتظار کس بات کا کر رہی تھی بھارتی فل ملی. گیند کو مس کیا، بڑا شاٹ کھیلنے جب گئی، کیپٹن دوڑ رہی تھی اسٹرائکرز اینڈ کی اور، ایک سنگل بٹوری ہے، بائی کا رن بھی رن ہوگا، 150 رن آئیں گے سکور بورڈ پہ اگر وہ سنگل ہوتا پورا. پرنت میں کیول 149 پر وہ 20 اوور سماپت ہوئے، یعنی لکش جیت کا 150 رنوں کا رہے گا بنگلہ دیش کی ٹیم کے سامنے اس پہلے سیمی فائنل میں اس ویمنز ایشیا کپ T20 2026 کے کانٹیسٹ میں.

0: फ्री हिट 20 में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। 150 का लक्ष्य दिया है टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को, और हम बात करेंगे कि कैसी रही भारतीय बैटिंग, शेफाली वर्मा का वो शानदार अर्धशतक, बांग्लादेश से कहां हुई चूक, मारूफा अख्तर का नहीं था आज दिन, इन सब पर चर्चा होगी। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव, मेरे साथ मेरी को एंकर साक्षी मांडवाल, साथ ही हैं बीसीसीआई कोच रविंद्र सिंह और वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थ सारथी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।
1: शुक्रिया। ओके मोना, आपके साथ शुरुआत करते हैं वेरी क्विकली। किस तरीके से आकेंगे इस पूरी भारतीय पारी को? 149 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स 20 ओवर में, गुड टोटल टू डिफेंड और वी वर 10 रन शॉर्ट पॉसिबली।
2: बिल्कुल 10-15 रन पीछे रह गए मुझे लगता है, क्योंकि 160 के आसपास का स्कोर होना चाहिए था। इतने मौके मिले, इतने जीवनदान मिले, खराब स्लॉपी फील्डिंग यहाँ बांग्लादेश के लिए, उसका भी फायदा नहीं उठा सके। और जो बार बार बात आती है स्ट्राइक रेट की, तो आज हरमनप्रीत कौर ने फिर निराश किया। मिडिल ऑर्डर की हम बार बार बात कर रहे थे, कैमियो एक दीप्ति शर्मा, वो एक अच्छा रहा कि आखिरी ओवर में स्ट्राइक उनके पास रही ज़्यादा, जिसमें अच्छे रन बने और हम 149 के आसपास पहुँच पाए।
0: दूसरा अर्धशतक इस टूर्नामेंट में लगाया है शेफाली ने, 64 रन की पारी, 40 गेंद पर 7 चौके 3 छक्के, लेकिन वो जो कैच छूटा था जब वो 10 रन के अंदर थी बाउंड्री लाइन पे, वो कैच छूटा, अगर वो कैच हो जाता तो शायद ये स्थिति नहीं होती।
3: देखिए इफ्स एंड बट्स तो क्रिकेट में होते नहीं, कैच होता नहीं होता, लेकिन बेटर ये है कि दो कैचे छूटे, एक कैच दो ओवर बाद में छूटा, लेकिन वो रन बता 150 रन बनाए हैं। 150 रन फाइटिंग टोटल कह सकते हो, क्योंकि पहले भी मुझे याद आ रहा है कि 2018 में शायद 142 रन करके इंडिया को हराया था बांग्लादेश ने उस समय भी, और एकमात्र जीत जो उनकी अभी तक रहती है। अच्छा फाइटिंग टोटल है मुझे उनकी बैटिंग में, जो खासकर हरमनप्रीत के साथ जो बोल रहे कि उनकी थोड़ा सा पहले शुरू में स्लो खेली लेकिन बाद में उन्होंने कवर किया, और दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष ने थोड़ा करा के 150 बन गया। हमें एक टाइम पे 130-135 तक भी मुश्किल स्कोर लग रहा था
1: जी। और अगर हम बात करें कि आज तक बांग्लादेश का हाईएस्ट चेस क्या रहा है T20 क्रिकेट के अंदर, तो वो है 146 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। ये इन्होंने बताया था अगेंस्ट श्रीलंकन विमेन ऑफकोर्स 9 मई 2023 को एट द SSC ग्राउंड इन कोलंबो। और अब वापस आते हैं मैच के अंदर भी, तो मोना बहुत जगह आज बांग्लादेश के खिलाड़ियों के पास ये मौके थे कि वो भारत को इससे भी कम टोटल के नीचे रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे, बट बहुत ही निराशाजनक उनकी आज फील्डिंग रही है, आप क्या कहना चाहेंगे?
2: बिल्कुल, पावर प्ले के अंदर ही हमने देखा कि कैच छूटे, रन आउट का मौका छूटा, और फील्ड में भी शुरुआत में कहीं ना कहीं गैप्स नज़र आए, तो वो एक निराशा रही। लेकिन यहाँ पर जो बार बार हम बात कर रहे थे मारूफा अख्तर की और उनके गेंदबाजों की, तो उनको आज बेनूर साबित किया भारत ने। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगी कि रही, लेकिन उसके बावजूद बात यही आती है कि हम जो हैं वो 10 रन और पीछे रह गए। थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन हो सकता था कि जीवन दान तो हमें मिले, फील्डिंग भी स्लॉपी रही, लेकिन क्या हम उसका फ़ायदा उठा सके? तो नहीं। एक शेफाली वर्मा की इनिंग को अगर आप इसमें से निकाल दें और जो कैमियो था उसको आप निकाल दें, तो आप स्ट्राइक रेट देखिए, प्रतिका रावल 24 गेंद में 20 रन, ये T20 का स्ट्राइक रेट है। हरमनप्रीत 28 गेंद में 24 रन, क्या ये T20 का स्ट्राइक रेट है? और ऋचा घोष, जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो ताबड़तोड़ आकर फिनिशर के रूप में एक अच्छा स्कोर देकर जाएंगी, वो भी आज खुलकर खेल नहीं पाई, वो लगातार नहीं खेल पाई हैं इस टूर्नामेंट में खुलकर। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर टीम फाइनल में पहुंचती है तो ये जो वीकर लिंक्स हैं इन पर अमोल मजूमदार को काम करना पड़ेगा।
0: जी हाँ, जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं और मंच होता है एशिया कप का, तो इतिहास के पन्ने ज़रूर पलटे जाते हैं। वो 2018 का फाइनल, भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए वहाँ 112 रन बनाए थे 9 विकेट पर, और आखिरी गेंद तक चले उस संघर्ष में बांग्लादेश ने 3 विकेट से न सिर्फ मैच जीता था, टूर्नामेंट जीता था और एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी दिया था। प्रतिका का जिक्र कर रही थी, स्टार्ट मिल रहा है इस टूर्नामेंट में उनको, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पा रही हैं।
3: बिल्कुल नहीं, टच में लग रही थी आज, जिस तरह से बैटिंग कर रही थी आज टच में लग रही थी, लग रहा था कि आज इस फॉर्म कैरी करेंगे। लेकिन देखिए T20 में ऐसे ही होता है कि आप कभी भी एक अच्छे शेफाली के कैच ही छूट गए, उसको कैच यूटिलाइज करती चली गई, प्रतिका बीच में आउट हो गई, ये एक दिन की बात होती है। लेकिन जिस हिसाब से आज वो बैटिंग कर रही थी, बहुत इंप्रेस किया उन्होंने, और मुझे लग रहा है कि जल्द ही अगले मैचों में एक अच्छी इनिंग देखने को मिलेगी आपको।
1: ओके मोना, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि चलिए भारतीय टीम किसी तरीके से 149 के स्कोर पे पहुंच गई, 150 है इस समय उनके पास बांग्लादेश को जीतने के लिए बनाने, हरमनप्रीत की जो इनिंग्स रही है 18 गेंदों में 6 रन और उसके बाद अगली 10 में आपने 18 बनाए. पहले उनका स्ट्राइक रेट था 33.33, उसके बाद उनका स्ट्राइक रेट 180 का हो गया. आप इस तरह की इनिंग्स को, पेसिंग को कैसे आंकती हैं?
2: देखिए, ओवरऑल उनका स्ट्राइक रेट 85 के आसपास है, जो मुझे नहीं लगता कि आप कप्तान भी हैं, सीनियर मोस्ट प्लेयर भी हैं, और आपकी जो सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज है वो सस्ते में आउट हो गई, जल्दी आउट हो गई पावर प्ले के अंदर ही. तो आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि आप एक्सेलरेट भी करें.

0: एंकर की भूमिका भी निभाए और रन भी बनाए, लेकिन मुझे लगता है कि इस मोर्चे पर हरमनप्रीत आज नाकाम रही हैं। उनमें वो इंटेंट जो होता है वो नज़र नहीं आ रहा था उनकी पारी में। वो रिस्क लेकर शॉट्स खेलने के लिए भी तैयार नहीं थी। जिस तरीके का जज्बा चाहिए था, जिस तरीके से उनको लास्ट के ओवरों में खेलना चाहिए था, वो कहीं उनकी पारी में नज़र नहीं आया।
1: बहुत चर्चा मारूफा अख्तर की हमने की प्री मैच शो में, और बहुत बढ़िया ये टूर्नामेंट जा रहा था, लेकिन आज क्या लगा रविंद्र आपको? स्विंग तो उन्हें मिल रहा था, गेंद अंदर भी आ रही थी, आउट स्विंग भी मिला, बल्ले का बाहरी किनारा भी लगा, विकेट कीपर से भी एक मिस चांस हुआ, लेकिन क्या दबाव उन पर था?
2: नहीं, दबाव तो खैर इंडिया के अगेंस्ट खेलेंगे तो होगा ही, प्लस लेकिन उनकी बॉल पर कैच भी छूटा, शेफाली ने जो मारने की कोशिश की, अच्छा स्विंग, बहुत अच्छा स्विंग हो रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि इंडियंस थोड़े से उस होमवर्क भी करके आए हुए थे, उनको पता दिख रहा था कि ये इन स्विंग भी हो रहा है थोड़ा सा उसको, तो उसके लिए तैयार थे, और एक आध कैच भी छूट गया, लेकिन जो असली काम जो वो तैयारी करके आए हुए थे कि मारूफा की, लेकिन असली काम करके रबिया नाहिदा और फहीमान ने, जिन्होंने चार चार ओवर में अपने बहुत अच्छे निकाले, एक अगर उनको छोड़ के मारूफा को छोड़ दिया जाए और सुल्ताना जो मीडियम पेसर्स थे, सुल्ताना तो के स्पिनर हैं, बाकियों ने अच्छा बॉल किया, और मारूफा के लगे मुझे लग रहा था कि इंडियंस पहले ही उसके लिए तैयारी होकर के आए थे कि इसको पावर प्ले में अटैक करना है।
3: जी, क्योंकि हम यहाँ पर सीम और स्पिन की बात कर रहे हैं, तो अपने श्रोताओं को बता दें कि बांग्लादेश की बॉलिंग किस प्रकार से आज गई है। सीम के खिलाफ जो भारतीय खिलाड़ियों ने जो प्रदर्शन किया है उसमें सीमर्स ने चार ओवर में 40 रन देके सिर्फ एक विकेट निकाला है, यानी 10 रन की इकॉनमी रेट रही है। वही स्पिनर्स को 16 ओवर्स में 108 रन देके उन्होंने चार विकेट निकाले एट एन इकॉनमी ऑफ 6.75। तो अब मोना आपके पास आती होगी कि अब भारतीय टीम उतरेगी गेंदबाजी करने, क्लियरली ये आंकड़े बताते हैं कि स्पिन फ्रेंडली विकेट है जी। यहाँ पर स्पिन भारतीय खिलाड़ियों के लिए कितनी मददगार साबित होने वाली, और पावर प्ले में खास तौर से किस तरह से भारतीय टीम का अप्रोच होना चाहिए, थोड़ा सा बताएं उसके ऊपर।
0: देखिए, मुझे लगता है कि क्रांति से यहाँ ज़रूर उम्मीद होगी कि वो इनिशियल ब्रेक थ्रू नई गेंद से दिलाएं, और अगर वो करने में कामयाब होती तो बीच के ओवरों के लिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास दीप्ति है, श्रीचरणी है, श्रीचरणी की हम बार बार बात भी कर रहे थे, और स्कोर बोर्ड पे हालांकि रन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे स्पिनरों पे आज बहुत कुछ दारोमदार होगा कि वो किस तरीके से बांग्लादेश की, जैसे हमने पहले बात की कि जो ताकत है वो उसकी गेंदबाजी थी, बल्लेबाजी बांग्लादेश की ताकत नहीं है, तो वो उस का फ़ायदा उठाकर भारतीय गेंदबाज जो है वो शुरुआत से ही अगर दबाव बनाए, पावर प्ले में ही एक दो विकेट निकल आए, तो फिर मुझे लगता है कि कोलैप्स होने में देर नहीं लगेगी।
1: बैटिंग की बात की तो बांग्लादेश के लिए शोभना मोस्तारी ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं इस टूर्नामेंट में, 3 मैच में 86.52 की स्ट्राइक रेट से 77 रन उनके नाम हैं। उनकी कप्तान निगर सुल्ताना भी बढ़िया फॉर्म में हैं, साथ ही साथ लोअर ऑर्डर की बात करें तो शोरना अख्तर भी कुछ बड़े हिट्स लगा सकती हैं। हमने बात की इंडियन बॉलिंग की क्या स्ट्रैटेजी होगी रविंदर, बांग्लादेश इस टारगेट को चेज करने के लिए आएगा तो फेजेस में किस तरीके से प्लान आउट करके आएगा?
2: देखिए, ओपनिंग बैटर शर्मिन अख्तर ने बीच में अच्छी बैटिंग करी, मोसुहाना ने, शोभना ने काफी बीच में दो मैचेस में बैटिंग करी, लेकिन पहले 6 ओवर बड़े क्रूशियल रहते हैं। जब भी आप T20 ओवर मैच में चेज करते हैं, वो 6 ओवर आपके मैच को ऑलमोस्ट डिसाइड कर देते हैं कि मैच किस तरह करवट बदलने वाला है। 20 ओवर में 150 रन है, अगर ये 6 ओवर का अच्छा स्टार्ट मिल जाए, 40-45 रन का स्टार्ट मिल जाए, आप एक आध विकेट लूज भी कर सकते हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया मैच, रोमांचक मैच आप देखने को मिल सकता है।
3: राइट, बट अगर बात करें यहाँ पर मोना फ्रॉम दी एंगल की बांग्लादेश इसको चेस करना चाहता है, तो उनके लिए भी ये एक रिकॉर्ड चेस होने वाला है, बिकॉज आज तक बांग्लादेश ने T20 आईज के अंदर कभी भी इतना बड़ा टारगेट चेस नहीं किया है। फॉरगेट एशिया कप इन इटसेल्फ, आपको लगता है दिस टाइम इज पॉसिबिलिटी वर देयर?
0: देखिए, T20 में आप किसी भी पॉसिबिलिटी को नकार तो नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ वही है जैसे सर ने कहा कि इसके लिए उन्हें शुरुआत बहुत अच्छी चाहिए होगी, और वो जो टोन सेट होती है वो पावर प्ले में होती है, तो पावर प्ले काफ़ी क्रूशियल रहने वाला है दोनों टीमों के लिए, बांग्लादेश के लिए बल्लेबाजी के परिप्रेक्ष्य में, और इंडिया को उसमें 2 विकेट कम से कम निकालने होंगे ताकि जो है दबाव बनाया जा सके।
1: एक बार फिर भारत के लिए दीप्ति शर्मा और श्रीचरणी ट्रंप कार्ड होने वाले हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल होने वाले हैं, क्योंकि ये स्पिनर आप देखिए, उनकी बांग्लादेश ने 5 स्पिनर्स खिलाए हैं अपने, एक मीडियम पेसर के साथ चले हैं, यहाँ पे 3 स्पिनर्स हमारे पास हैं, और ये इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बांग्लादेश को पहले 6 ओवर में आपको अब 6 ओवर में अच्छी रन लेने पड़ेंगे आपको, अगर आप 6 ओवर में रन नहीं ले पाए तो स्पिनर्स के ऊपर रन निकालने आपको बहुत मुश्किल पड़ जाएंगे।
3: राइट, बट यहाँ पर एक सवाल ज़रूर मेरे पास ये है कि चलिए बांग्लादेश के ओपनर से एक बार को हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि वो बांग्लादेश को एक गुड स्टार्ट दे दे, वो अपने आप में बहुत भारी चीज़ है, इट्स अ स्टेटमेंट दैट

0: कैरीज अ लॉट ऑफ वेट बिकॉज चेजिंग 149 आपको गुड स्टार्ट चाहिए. बट क्या बांग्लादेश के मिडल ऑर्डर के अंदर आप वो डेडिकेशन और ख़ास तौर से आप वो इस समय करेज एंड गेम स्किल देखती हैं कि दे कैन कन्वर्ट दिस इनटू अ विक्ट्री द मिडल ऑर्डर? हाउ डू यू असेस देम?
1: देखिए अभी तक हार्ड टेस्ट कुछ हुआ नहीं है. जितने पहले मैच हुए हैं, एक श्रीलंका के खिलाफ मैच था जो बहुत जिसमें 100 रन से ज़्यादा बने और बांग्लादेश करीब से हार गया उसको. लेकिन उसके अलावा जो मैच हुए हैं 70 के भी कम रन, तो ये जो टेस्ट होता है हार्ड टेस्ट वो आज होने वाला है इनका, कि वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं प्रेशर सिचुएशन में. और यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि टॉस जीतकर चेज करना इन्होंने चुना है, तो वो दिमाग में रखते हुए, क्योंकि अब उनके पास एक सेट टारगेट है कि हमें इतने रन बनाने हैं और उसकी उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए. यहाँ पर अगेन उनके लिए अच्छी स्टार्ट बहुत ज़रूरी है. बीच के ओवरों में उन्हें भी पता है कि भारतीय स्पिनरों के सामने रन बनाना मुश्किल होगा, खासतौर पर श्रीचरणी जो पिछले मैच के परफॉर्मेंस के बाद आत्मविश्वास से भरी होंगी, जो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने गेंदबाजी की है. तो यहाँ बांग्लादेश को शुरू से ही अच्छे रन बनाने की रणनीति, बाद के लिए कुछ छोड़ नहीं सकते.
2: अब पॉसिबल अगर हम देखें रविंद्र, तो भारत यहाँ पर काफ़ी एडवांटेज में नज़र आ रहा है. लेकिन जैसा कि मोना ने कहा कि T20 में कुछ भी हो सकता है, गेंदबाजी में किस तरीके के रोटेशंस आप उम्मीद कर रहे हैं?
3: देखिए मेरे हिसाब से जो बांग्लादेश ने सोच रखा था, ऑलमोस्ट उन्होंने सोचा होगा कि इंडियंस 140-150 रन बनाएंगे अगर हम उसके अंदर उनके ऊपर ये प्लान होगा उनका. और ये मेरे हिसाब से उनके प्लान के हिसाब से हुआ होगा कि 140-150 रन में रोक भी लिया इन्होंने. थोड़ा सा और अच्छी फील्डिंग करते, कैचेस पकड़ लेते तो 10-15 रन और भी और रोक सकते थे. इस समय तो यही है, तीन स्पिनर्स आपके पास हैं, आपको उनको पहले छोर में जितना रोक सकेंगे उतना बेटर है, क्योंकि स्पिनर्स आने के बाद मुझे लगता है कि मैच आपके होल्ड में आ सकता है. लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप बांग्लादेश के लिए बेटर रहेगा कि 6 ओवर में जितने रन बना सकें, और भारतीयों के लिए रहेगा कि जितने कम से कम लेके उनकी 2-3 विकेट निकाल सकें तो मैच उनके पक्ष में जा सकता है.
2: जी हाँ, मैच उनके पक्ष में जा सकता है. और उम्मीद यही होगी कि जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ेगा, भारतीय बोलर्स इस मुकाबले में अपनी काबिलियत और प्रतिभा के दम पर बांग्लादेश के बैटर्स को परेशान करते रहेंगे. फ्री हिट 20 में इतना ही. मोना और रविंद्र, आप दोनों का बहुत आभार अपने एक्सपर्ट एनालिसिस के लिए. आप बने रहिए आकाशवाणी के साथ, चूंकि ब्रेक के बाद कॉमेंट्री आ रही है आपके लिए.

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: स्वागत आपका एक बार फिर। सेमीफाइनल मुकाबला भारत और बांग्लादेश की महिला क्रिकेट टीम्स के बीच इस T20 वुमेन्स एशिया कप 2026 का। पहली गेंद रन चेस के अंदर क्रांति गौर ने गेंदबाजी की कमान संभाली है और पहली गेंद पर वो पुश ड्राइव दिलारा के द्वारा सीधा मिड ऑफ की तरफ, कोई रन नहीं मिलेगा। 150 का लक्ष्य रखा है बांग्लादेश की टीम के सामने। भारतीय टीम ने 149 रन बनाए थे अपने 20 ओवर्स में और 150 का लक्ष्य इन परिस्थितियों में, इन कंडीशंस में इतना आसान रहने वाला है नहीं। क्रांति गौर अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर इस बार सीम पे टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई, दिलारा वो अंदरूनी किनारा बल्ले का लगा और उसके बाद गेंद उनके शरीर पे टकराई है, थोड़ी सी मुश्किल में दिखती हुई वहाँ पे, क्योंकि कई बार जो तेज गेंदबाज की गेंद एज पे लग के अंदर निकलती है वो कई बार और ज़्यादा मुश्किलें पैदा करती है बैटर के लिए। तो कुछ थोड़ी सी असमंजस की स्थिति में दिखती हुई वहाँ पे दिलारा, जिन्होंने पारी की शुरुआत की है। दिलारा अख्तर और जुरैया फिरदौस दो ओपनिंग बैटर्स। अगली गेंद क्रांति गौर की, इस बार स्क्वायर ड्राइव करने की कोशिश दिलारा अख्तर की, सीधा एक टप्पे के बाद कब पॉइंट की फील्डर की ओर जाती हुई, कोई रन वहाँ पे नहीं आएगा दिलारा के नाम। हेड टू हेड वुमेन्स T20 आईज के अंदर एशिया कप में 5 बार ये दोनों टीमें आमने सामने रही हैं। जब आप हेड टू हेड मुकाबले वुमेन्स T20 आईज एशिया कप की बात करते हैं, उसमें से 3 मुकाबलों में जीत भारतीय टीम के नाम आई है, 2 बांग्लादेश के नाम, जिसमें से एक जीत वो याद रहेगी 2018 के फाइनल में। इस बार अगली गेंद और स्क्वायर ड्राइव करने की कोशिश दिलारा की, कैच का मौका खबर पॉइंट पे बुना नहीं पाई है भारतीय टीम। प्रतीक रावल के हाथ पे गेंद लगी और छिटक गई, तो एक कैच का जो मौका बन रहा था और एक विकेट का जो मौका बन रहा था भारतीय टीम के लिए वो हाथ से फिसलता हुआ। आसान कैच नहीं था बिल्कुल, वो 25 गज के घेरे के एज पे खड़ी थी प्रतीका रावल, ऊंची उछाल छलांग लगाई जरूर लेकिन हाथों में गेंद फंसी नहीं और सिंगल मिल गया दिलारा को, उसी के साथ खाता खुला दिलारा अख्तर का और बांग्लादेश का भी। अगली गेंद जुराया के लिए बीट हुई है ऑफ स्टंप के बाहर। क्रांति गौर अच्छी लेंथ हिट करती हुई अपने पहले ही ओवर के अंदर बीट किया ओपनिंग बैटर को जुरैया फिरदौस को, पहली गेंद का उन्होंने सामना किया था, कोई रन उनके नाम नहीं। वहीं एक रन 4 गेंदों में दिलारा अख्तर के नाम। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूँ रमन भनोट, मेरे साथ निराद्री सेन मौजूद अंग्रेजी में कमेंट्री के लिए, भगवत सिंह रावत हमारे स्कोरर और स्टैटिस्टिशियन मनोज कुमार मौजूद हमारे साथ। अगली गेंद क्रांति गौर की, इस बार जुराया ने इसको उठा के खेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में, एक टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री रोप के पार 4 रनों के लिए। आखिरी गेंद थी उस पहले ओवर की और उस पे एक करारा प्रहार जुराया फिरदौस के द्वारा, उनका पहला चौका, इस पारी का पहला चौका आता हुआ बांग्लादेश के लिए और पहले ओवर की समाप्ति पर बांग्लादेश का स्कोर अब 5 बिना किसी विकेट के नुकसान के।
2: Well, Raman, so an eventful first over. One catch dropped and one boundary to end it. As Jawaria Fardos hitting that boundary. And we were talking about 50s. Well, this happens to be her 46th boundary in T20 international cricket. So she is 4 shy of her 50th boundary. Let's see whether she can hit it today itself.
1: एक दिलचस्प आंकड़ा सबके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा जो मनोज कुमार हमारे स्टैटिस्टिशियन हैं उन्होंने प्रोवाइड किया है कि इस टूर्नामेंट के अंदर सबसे ज़्यादा सिक्सेस किस टीम ने लगाए हैं, 25 भारत के नाम और वहीं केवल 2 सिक्सेस बांग्लादेश की बैटिंग यूनिट के नाम। तो ये मुश्किल रहेगी अगर बड़ा स्कोर चेज कर रहे
2: हैं तो। She will get only a single for that. So one run in the first delivery of the second over. And before that, in the last ball of the first over, Jiraya hit a brilliant 4, one bounce into the fence. So that was how the first over ended. That was Kranti Gaur. And now it's Nandini Sharma. Once again, overpitch delivery, and it has been driven straight to mid-on though. No runs this time. Straight to the fielder. And the target for Bangladesh is 150 runs. Jiraiya at the moment is on 4 of 3 deliveries. Dilara on a non-striking end has scored 2 runs of 5 deliveries. Bangladesh need to have a good start if they want to get to that target of 150. It's not an easy target in this particular wicket, and runs are difficult to come. And this time she goes for a big one. She's beaten completely, and there was a bit of movement there off the seam, and Richa Ghosh collects it. And that was an attempted slog, and completely beaten over there was the batter, Jiraiya. Nandini Sharma has taken 3 wickets in the first match against Hong Kong, against Thailand, I beg your pardon. 3 for 18 in 4 overs, then got a couple of wickets against Hong Kong, 2 for 6. The next delivery has been played, pushed in fact, towards mid-off by Jiraiya, and that will go straight to the fielder. No possibility of any run. Jiraiya remains on 4 of 5 deliveries, and the score of Bangladesh in the second over is 6 without loss. Now, how will they pace the innings in the first 6 overs? That's very important. Now, Jiraiya. Nandini comes. That was a slower delivery, and Jiraiya reading it quite well, hitting it over mid-on. That will reach the fence. That's another 4. So the second 4 of the innings. This time, Jiraiya hitting her second 4 as well. That was a slower delivery, and the batter got

0: that slower delivery very early, read that very early and hit it to perfection, got the placement right and found the boundary. Nandini Sharma is playing her 10th match and she has 12 wickets to boast of. Jewaria now facing Nandini. She's bowling over the wicket, right arm. This time the ball is outside the off stump and it moves farther away and the Jewaria is beaten. She goes for a big shot. And Bangladesh are on 10 for no loss.
1: जिस तरह की आपको आक्रामक शुरुआत चाहिए वो आक्रामक शुरुआत की कोशिश तो हुई है. 10 रन स्कोरबोर्ड पे पहले दो ओवर्स में बाउंड्री हिट्स की थोड़ी सी और तलाश रहेगी क्योंकि एक आंकड़ा जो कुछ देर पहले मनोज कुमार ने हमें प्रोवाइड किया था कि बांग्लादेश के बैटर्स ने केवल 2 सिक्सेस लगाए हैं इस टूर्नामेंट में. अब आप 150 के टोटल का पीछा कर रहे हैं 20 ओवर में, यानी आपके पास जो रिक्वायर्ड रन रेट है पहली गेंद से वो 7.5 रन प्रति ओवर की है. यानी आपको हर ओवर में, हर 6 गेंदों में 7.5 रन आपको चाहिए. यानी एक बाउंड्री हिट तो चाहिए ही चाहिए, शायद 2. पावरप्ले को मैक्सिमाइज अगर आप कर पाएँ तो शायद वो अच्छा एक आंकड़ा रहेगा इस बांग्लादेश की चेज के अंदर. दिलारा होंगी स्ट्राइक पे, क्रांति गौर के हाथ में गेंद और तीसरे ओवर की शुरुआत. शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, इसको पुल कर दिया है, दिशा दिखाई है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, 4 रन आएंगे. उस गति का इस्तेमाल करती हुई यहाँ पे दिलारा अख्तर, समझ बूझ की बल्लेबाजी. ये एक बहुत ही संभली हुई शुरुआत है, बहुत बड़ा शॉट लगाने की कोशिश नहीं करी, जानती थी कि गेंद में गति है और स्क्वेलक की जो बाउंड्री राइडर थी वो काफ़ी स्ट्रेट थी, इसलिए फाइन खेला और 4 रन अपने नाम किए. ये अच्छी शुरुआत दिलारा दिलाती हुई बांग्लादेश को इस रन चेस के अंदर.
0: And by this time, India lost one wicket, that of Smriti Mandhana. So that way, Bangladesh are just a bit ahead in comparison. 14 without loss. This is the third over in progress.
1: Yeah, agli gain, Kranti Gaur. This bar off stump and off or middle ko target karna chahengi. Yeah, wahi soch, agli gain, good length area pe tappa. Thoral ki si seam movement andar ki taraf aayi. Dilara ke balle ka andruni kinara lekar gain unke pad se chhitki hai. बहुत भाग्यशाली है यहाँ पे दिलारा की, वो गेंद स्टंप्स पर नहीं गई, एक डॉट डिलीवरी. भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने दोनों छोर से तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है शुरुआती ओवर्स में. अगली गेंद इस बार स्टीयर करने की कोशिश दिलारा की, लेकिन कोई संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में था नहीं, कदमों का कोई इस्तेमाल नहीं. दिलारा ऐसा लगा कि जैसे अपनी क्रीज पे खड़ी सी रह गई, गेंद ने हल्की सी दिशा बदली, हल्का कोण बदलती हुई गेंद बाहर की तरफ निकली और इसको स्टीयर करने की कोशिश में बीट हुई है दिलारा. पर वापस जाता हूँ जिस बात को छेड़ा है कि ये 2 तेज गेंदबाजों के साथ शुरुआत भारतीय कप्तान के द्वारा एक ऐसी सतह पे जहाँ पे स्पिनर्स के लिए काफ़ी फायदेमंद ये सतह साबित हुई. अगली गेंद कवर ड्राइव सीधा फील्डर की ओर, प्रतिका रावल मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा दिलारा को, तो सोचने पर मजबूर ये करेगा क्योंकि क्या आप ये पावर प्ले के अंदर ही तेज गेंदबाजों से तेज गेंदबाजी कराना चाह रही हैं और उसके बाद जो बैक एंड ऑफ द इनिंग्स है या मध्य ओवर्स और बैक एंड, वहाँ पे अपने स्पिनर्स का ज़्यादा इस्तेमाल देखेंगे. 3 फ्रंटलाइन स्पिनर्स हैं आपके पास और उसके बाद चाहे तो शिफाली वर्मा भी स्पिन गेंदबाजी कर सकती हैं, तो आपके पास पार्ट टाइम स्पिन बॉलिंग के विकल्प हैं इस लाइनअप के अंदर. अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, पुल कर दिया इसे 4 रन के लिए. स्क्वेलेक की फील्डर थोड़ी सी और ज्यादा फाइन गई थी उस पिछले चौके के बाद और उसका फायदा दिलारा ने इस बार उठाया. इन फ्रंट ऑफ स्क्वेयर खेला हुआ ये पुल शॉट उन्हें 4 रन और देता हुआ.
0: Yes, and in the last match, when spin was introduced, India got the first success. That was against Pakistan. And maybe in the next over itself, we'll see a spinner in action. So this is interesting to see both the fast bowlers starting proceedings for India. And in fact, Bangladesh are going quite comfortably at the moment.
1: Agli gain, this over ki aakhri gain, leading edge, cover point ki fielder ki aur pehle tappe pe gain pahunchi hai. Jab tak Pratika Rawal us gain ko field karengi. Ek soch thi single ki, lekin ant mein

0: हुमायरा फरा जो कि टीवी अंपायर हैं इस मुकाबले की, और शायद रिप्ले को थोड़ा सा और धीमे करके करीब से देखना पड़ेगा कि पांव या जूते का कुछ हिस्सा क्या उस लाइन के पीछे ज़रूर आया जब तक वो बेल्स डिसलॉज करी गई, बेल्स ग्रूव से निकाली गई। और जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे जूते का कुछ हिस्सा, पांव का कुछ हिस्सा क्रीज के पीछे था, तो नॉट आउट का संकेत आता हुआ टीवी अंपायर का। पर बाल बाल बची हैं यहाँ पे दिलारा अख्तर जो सलामी बैटर है, और देखिए किसके खिलाफ, उस पार्ट टाइम स्पिनर के खिलाफ।
1: एब्सोल्युटली, एंड शी इज वेरी इफेक्टिव शेफाली वर्मा, एन ऑल राउंड प्लेयर फॉर द इंडियन टीम।
0: चलिए अब सोच क्या रहेगी, दिलारा 10 रन 12 गेंदों में, वहीं जॉयरिया 12 रन 13 गेंदों में, उनके नाम भी है लेकिन वो नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे। अगली गेंद शेफाली वर्मा की, इस बार थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, कट करने की कोशिश लेकिन गैप ढूंढने में कामयाबी नहीं आ दिलारा अख्तर को, सीधा पॉइंट की फील्डर की तरफ इस गेंद को खेला, डॉट बॉल, और एक स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी मिस करी है आपने। शायद यही इनके जहन में भी चल रहा होगा क्योंकि हाफ ट्रैकर गेंद थी, मौका था कट शॉट खेल के 4 रन बटोरने का, आपने वो मौका गवाया है। अब फील्ड में भी बदलाव, शॉर्ट थर्ड सर्कल के अंदर, बैकवर्ड पॉइंट सर्कल के अंदर, कवर पॉइंट उस 25 गज के सर्कल के अंदर, लेकिन अगली गेंद पे खेली है स्लॉग स्वीप लेग साइड की दिशा में, फील्डर मौजूद श्रीचरणी है बाउंड्री रोप पर स्क्वेयर लेग पे, केवल सिंगल आएगा दिलारा के नाम उस स्लॉग स्वीप के चलते। तो पहले रन इस ओवर में, और वो आए केवल तीसरी गेंद पर जाकर, और अब स्ट्राइक पर हैं जॉयरिया फिरदौस, ये ज़्यादा आक्रामक रुख अपनाने वाली बैटर हैं, इनकी सोच रहती है वो आक्रामक शॉट खेलने की, और ये मैचअप दिलचस्प है क्योंकि आपके पास केवल दो ही बाउंड्री राइडर हैं बाहर उस 25 गज के घेरे के। पुल शॉट की कोशिश, मिस फील्ड मिड विकेट पे, लेकिन वाइडिश लॉन्ग ऑन की फील्ड उस एंगल को कवर करते हुए, केवल सिंगल जॉयरिया फिरदौस के नाम, और स्कोर बांग्लादेश की टीम का अब 24 बिना नुकसान।
1: Dilara is an important batter. She has scored 53 runs so far in the 3 matches that Bangladesh played in the group stage.
0: Agli gain Shefali ki cut karne ki koshish, Wandruni kinara, Richa Ghosh ki gloves ke kafi kareeb se gain nikal kar gayi hai short third tak. Single aayega Dilara ke naam, jis tarah se wo shot khelne ki inhone koshish ki thi, thodi asmanjas ki sthiti mein lagi thi. Pehle socha down the track aake bada shot khelein, फिर चेक किया अपने शॉट को, लेट कट खेलने की कोशिश की, पर अंत में एक सिंगल अपने नाम किया है। तो 12 पर अब दिलारा, लेकिन नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर जॉयरिया फिरदौस हैं स्ट्राइक पर। अगली गेंद को पुल कर दिया उन्होंने डीप मिड विकेट की तरफ, खेला हुआ वो शॉट सिंगल ही आएगा, यानी केवल 4 रन इस ओवर से। शेफाली वर्मा का एक किफायती ओवर समाप्त होता हुआ पावर प्ले के दौरान, और 5 ओवर के बाद बांग्लादेश की टीम का स्कोर 26 बिना किसी विकेट के नुकसान के।
1: Well, as far as Asia Cup is concerned, India have qualified in every final, and this is the semi-final that they are up against Bangladesh, and India have a terrific record against Bangladesh in T20 internationals, played 24 matches so far. And India have won 21 of them. Bangladesh have won only 3. One of them, of course, was in the 2018 Asia Cup final. Srichharani continues. The next delivery on the pads. Just hurried it through. Then there was a half-hearted appeal, though. But the ball was going down the leg side for sure. Jaria is now on strike. Srichharani has conceded 4 runs in the first over. Jaria is on 14 of 16 deliveries, and Srichharani now comes in, and this time it's an edge. Oh dear, the ball falling just short of the short third man fielder. That was Nandini who came running for that catch, but just falling well short of her.
0: जी हाँ, गेंद टर्न करी थी इस बार, और वो लीडिंग एज फील्डर के करीब गिरता हुआ।
1: And once again goes for a sweep shot, this slog sweep this time, the ball balloons over and Richard Ghosh runs and takes a comfortable catch. So that's the first wicket for Bangladesh, and Bangladesh lose their first wicket, and Sri Charuni gets her first wicket of the match.
0: जी, ये उनकी 50वीं विकेट महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर, तो ये यादगार लम्हा रहेगा श्री चरणी के लिए. अच्छा कैच ऋचा घोष ने पकड़ा. कई बार ये जब टॉप एजेस लगते हैं, गेंद काफ़ी देर तक लहराती है हवा में, और कोई गलती नहीं करी ऋचा घोष ने. जोहरिया फिरदौस 14 रन बनाकर हुई हैं आउट, और बांग्लादेश की टीम का स्कोर अब 26 एक विकेट के नुकसान पर. और यही मुश्किल रहती है. अब थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ वो स्वीप शॉट खेलना, जब तक आप गेंद की पिच तक ना पहुंचे, वो अगेंस्ट द टर्न स्वीप शॉट खेलना बहुत जोखिम भरा एक लम्हा रहता है. और वही हुआ, आप गेंद की पिच तक नहीं पहुंची, वो गेंद के जो टर्न और बाउंस था उसको कवर नहीं कर पाए उस स्वीप को खेलने की कोशिश में, इसीलिए वो लीडिंग एज, वो टॉप एज, और अच्छा कैच ऋचा घोष के द्वारा.
1: सो श्री चरुनी गेट्स हर 50th विकेट इन T20 इंटरनेशनल्स, एट द सेम टाइम शी गेट्स हर 8th विकेट इन एशिया कप एज वेल. सो श्री चरुनी got 2 wickets against Thailand, 2 wickets against Hong Kong, and 3 wickets against Pakistan. And she, in fact, routed the Pakistani middle order with that spell. Can she repeat herself today? Sri Charuni, once again, a slip is in place. The new batter is Shobhana. The ball turns, and this time Shobhana plays it towards third man, and the ball goes towards a backward point fielder, and no run for that. So Shobhana Mustari is the new batter, and this time another turn, vicious turn, the ball pitches on the leg stump, and the batter is beaten outside the off stump. So a very good turn, and she's also generating some bounce at the same time. So very good ball, almost unplayable for Shobhana, who is the highest scorer of Bangladesh in this tournament so far. Once again she's beaten outside the off stump. What a lovely over this has been. A wicket maiden. And after 6 overs, Bangladesh are on 26 for the loss of 1 wicket.
0: वो विकेट मेडन ओवर जो डाला है श्री चरणी ने, वो पावर प्ले के अंदर डाला है, वो उस ओवर को और भी ज्यादा खास बनाता हुआ. पावर प्ले समाप्त हो गया है 6 ओवर के बाद, 26 रन एक विकेट के नुकसान पर बांग्लादेश की टीम का स्कोर. पर क्या शानदार गेंदबाजी करती हुई श्री चरणी, 2 ओवर्स डाले हैं, केवल 4 रन दिए उन 2 ओवर्स में, एक सफलता भी उनके नाम. पिछला ओवर वो विकेट मेडन उनके द्वारा, 50 विकेट T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट के अंदर, केवल अपना 29वां मुकाबला खेलती हुई. तो आप उनकी विकेट टेकिंग एवरेज पर भी जब नजर डालेंगे तो यही कहानी है कि लगभग 2 विकेट पर मैच निकाल के आपको दे रहे हैं. प्रेमा रावत अब गेंदबाजी में बदलाव, शिफाली वर्मा की जगह अब प्रेमा रावत को लाया जा रहा है गेंदबाजी के लिए. एक लेग स्पिनर है, और उनको कप्तान गेंदबाजी के लिए तब लाई हैं जब वो 4 बाउंड्री राइडर 25 गज के घेरे के बाहर ले सकते हैं, क्योंकि पावर प्ले समाप्त हो गया है. तो लेग स्पिनर का सही समय पे इस्तेमाल. अब पहली गेंद, इस बार वो लेग ब्रेक जो टर्न करती हुई दाएं हाथ की बैटर के लिए, दिलारा उसको अंतिम समय पे कट करने की कोशिश जरूर करी, लेकिन सीधा पॉइंट की फील्डर की तरफ खेला, कोई रन उनके नाम आएगा नहीं. इस सतह पे देखा है कि स्पिनर्स के लिए काफ़ी मदद है, घुमाव मिल रहा है, ख़ासतौर पे रिस्ट स्पिनर्स को काफ़ी ज़्यादा टर्न और बाउंस भी मिला है. इस बीच अगली गेंद फिर कट करने की कोशिश, और सीधा फील्डर की ओर, फिर कोई रन नहीं. ये 32वीं बार है कि देखिए 29 मुकाबले में 50 विकेट है, और ये केवल तीसरी बार है कि श्री चरणी ने एक मेडन ओवर डाला है, अपने विकेट मेडन डाला है अपने करियर के अंदर. 29 मैच में तीसरी बार कि एक विकेट मेडन ओवर श्री चरणी ने डाला हो T20 क्रिकेट में अपने करियर में. इस बीच अगली गेंद टर्न करती हुई दिलारा को बीट किया. याद रखिए ये आंकड़े आपकी ओर आ रहे हैं मनोज कुमार की तरफ से, जो हमारे स्टैटिस्टिशियन है इस मुकाबले के लिए. पर बात कर रहे थे जो टर्न और बाउंस मिल रहा है खासतौर पे रिस्ट स्पिनर्स को इस सतह से, वो अब यहाँ पे दिखता हुआ

0: प्रेमा रावत की अगेन पैड लाइन पर खराब लाइन और से पैडल स्वीप कर दिया है दिलारा ने चार रनों के लिए, चार रन दिलारा अख्तर के नाम आते हुए। और ये चौका 23 गेंदों के बाद आया है, बहुत अरसे के बाद आखिरकार एक बाउंड्री हिट, वो दबाव जो पिछले चार ओवर से लगभग बन रहा था वो दबाव आखिरकार हटा इस चौके के साथ।
1: Well, although India lost an early wicket, Raman after the power play, we'll come to that after this delivery. Well, once again, a turn and Dilara is beaten outside the off stump. Well, in the power play, India scored 45 for 1 and Bangladesh 26 for 1.
0: जी हाँ बिल्कुल, वो नंबर्स हमारे स्कोरर भगवत सिंह रावत प्रोवाइड करते हुए तुलनात्मक स्कोर्स मिल गए पावर प्ले के। पैडल स्वीप सिंगल आएगा और डायरेक्ट हिट और शायद ओवरथ्रोज के रूप में रन लेने की सोच थी वहाँ पे दिलारा की, लेकिन शोभाना ने कहा जी नहीं बिल्कुल नहीं, कोई वजह नहीं है उस ओवरथ्रो के लिए जाने की, सिंगल से संतोष कीजिए। 7 ओवर समाप्त, 31 एक विकेट के नुकसान पर बांग्लादेश का स्कोर। जी हाँ, वो पापले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी थी भारतीय टीम ने, 45 रन स्कोरबोर्ड पर आए थे क्योंकि एक छोर से शिफाली वर्मा वो बाउंड्री हिट्स लगाने में कामयाब हो रही थी। यहाँ पे बांग्लादेश के लिए हमने जैसे बात करी कि लगभग 23 गेंदों तक एक बाउंड्री नहीं आई, पापले के दौरान आपके पहले 6 ओवर्स में अगर लगभग 4.25 ओवर तक एक बाउंड्री हिट ना आए तो मतलब आपने पापले का वो भरपूर इस्तेमाल नहीं किया।
1: एब्सोल्युटली, एंड वी हैव टू गिव क्रेडिट टू द इंडियन स्पिनर्स एज वेल, they are bowling exceptionally well, so most wickets for India in women's T20. This for Street Charuni, and this time Dipti Sharma will be starting proceedings. A fresh over the wicket, and Dilara comes out of charge and she hits it inside out, the ball beats the sweeper cover, into the fence she goes for 4. So welcome boundary for Bangladesh. Dilara gets that boundary. She dances down the crease and gets a good contact, finds the gap and places it to perfection. Finds a boundary, a welcome boundary as well for Bangladesh. Dilara moves on to 21 of 22. Bangladesh are on 35 for 1. They need more of these boundaries. Next delivery on the pads, and there's an appeal for leg before. So no. she wanted to go across the line.
0: Yeah, across the line khelne ki koshish thi, par game bhi kyunki andar ki taraf ghoom rahi thi, isliye mauka tha ki aap with the turn khel dete, isliye wo contact banani isliye nahi nirash thi kyunki off spin dal rahi hai na yahan pe गेंदबाज दीप्ति। अगली गेंद एक बार फिर अंदर की तरफ घूमती हुई, इस बार फिर पैडल स्वीप की कोशिश, दिलारा की कामयाबी उन्हें मिली नहीं है। हम इस ओवर के बाद चर्चा करेंगे जो एक चांस बांग्लादेश के पास था पापले को और मैक्सिमाइज करने का, इस ओवर के बाद करेंगे बातचीत।
1: दीप्ति ऑन द ऑफ स्टंप दिस टाइम, एंड दिलारा रॉक्स बैक टू द बैक फुट, गोस फॉर अ कट शॉट बट फाइंड्स अ पॉइंट फील्डर इनसाइड द सर्कल, सो नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन। Dilara Akhtar scored 27 in the first match, 27 of 21, 26 of 26 in the second match. The next delivery, she goes over mid-wicket and she will find the fielder. And Dilara goes, another wicket goes for Bangladesh. So just when Dilara wanted to accelerate, she found the fielder in the deep. And that was Kranti Gaur taking a very good catch, running a few meters in front, and that will be another success for India. So Dilara Akhtar goes 21 of 26 deliveries, and India are back in the match and are very much back in the match. They were already in the match right from the word go, and at the moment they are well on the driver's seat.
0: 35 पर 2 बांग्लादेश की टीम का स्कोर, और ये अनुभव है दीप्ति शर्मा का जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी करी, और एक बड़ा फर्क आपको दोनों टीम्स के बीच में साफ पता चलेगा और वो है फील्डिंग और कैचिंग का स्तर, जिस स्तर से कैचेस

0: पकड़े जा रहे हैं भारतीय टीम के द्वारा, वो बहुत बेहतर दिख रहा है बांग्लादेश की टीम की तुलना में। और वो यहाँ पे एक बार फिर दिखा, क्रांति गौर का लाजवाब कैच था, लगभग 10 से 12 यार्ड अपने आगे की तरफ दौड़ना पड़ा बाउंड्री रोप से 25 गज के घेरे की ओर, गेंद डिप कर रही थी फिर भी डाइव लगाई, उस कैच को अंजाम दिया और ये फर्क दिखा है दोनों टीम्स के बीच। अब निगार सुल्ताना, नई बल्लेबाज जो आई हैं मैदान पे, काफ़ी अनुभवी बैटर, 2690 रन उनके नाम, 13 अर्धशतक और एक शतक लगा चुकी हैं T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, तो एक अहम बैटर हैं इस लाइनअप में बांग्लादेश के लिए।
1: And the first delivery for Nigar Sultana, she plays it defensively towards mid-wicket and it is no run, so that's the end of the 8th over. Bangladesh are 35 for 2.
0: हम बात कर रहे थे पावर प्ले के तुलनात्मक स्कोर्स की, 45 बनाए थे भारत ने पावर प्ले के अंदर पहले 6 ओवर्स में, वहीं 26 रन आए थे केवल आप जब बांग्लादेश के स्कोर पे नज़र डालते हैं। 3 चौके और 3 सिक्सेस लगे थे भारतीय पावर प्ले के दौरान जब भारतीय बैटर्स क्रीज पे थे, और उसका फ़र्क क्या होता है, 3 सिक्सेस का मतलब 18 रन। बांग्लादेश की इनिंग्स में अब तक आप देखें तो पावर प्ले में कोई सिक्स नहीं था, तो वो 18 रन का फर्क तो सिर्फ आपको सीधा 3 गेंदों में मिल गया ना। जब आप पावर प्ले पे नजर डालते हैं 45 भारत के 26, यानी फर्क आपको वहां पे 19 रनों का दिख रहा है, उसमें से 18 रन का फर्क तो वो 3 ओवर बाउंड्री सिक्सेस का है ना, और ये फर्क दिखेगा आपको, वो पावर हिटिंग भारतीय बैटर्स की अलग लय की है, अलग लेवल की है बांग्लादेश की बैटर्स की तुलना।
1: एब्सोल्युटली, एंड दैट्स अ गुड मैथमेटिकल कैलकुलेशन फ्रॉम रमंत।
0: देखिए आजकल T20 में बड़ा सिंपल है, अगली गेंद पे बड़ा प्रहार करने की कोशिश थी, कोई रन आएगा नहीं। मिराद्री, T20 क्रिकेट बाउंड्री हिट्स मैक्सिमाइज करने की गेम है, अगली गेंद पे स्वीप करने की कोशिश, अपील लेग बिफोर की विकेट कीपर के द्वारा, लेकिन गेंदबाज ने कुछ ज़्यादा उसमें दिलचस्पी दिखाई नहीं उस अपील के अंदर, अंत में बैटर्स निकल पड़ी हैं सिंगल के लिए और एक रन और जोड़ता हुआ बांग्लादेश के खाते में उस गेंद के बाद। 8.2 ओवर्स डल चुके हैं, 36 रन 2 विकेट के नुकसान पे। T20 क्रिकेट में कोचिंग स्टाफ इसी बारे में चर्चा करता है कि आप बाउंड्री हिट्स क्या मैक्सिमाइज कर सकते हैं, वो ओवर बाउंड्री हिट्स, और आपके स्कोर की तुलना और कैलकुलेशन उसी प्रकार से की जाती है। अगली गेंद, इसको पैडल कर दिया है लेग साइड पे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, एक और सिंगल आएगा। शिफाली वर्मा डाल रही हैं अपना दूसरा ओवर और पारी का 9वां ओवर है ये, तो कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपनी गेंदबाजों का अच्छा इस्तेमाल किया है, रोटेशन बॉलिंग में दिखती हुई। शिफाली वर्मा अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, कट करने की कोशिश, अच्छा स्टॉप बैकवर्ड पॉइंट पे, गेंद थोड़ी देर तक हवा में जरूर थी, और दिलचस्प होगा इस रिप्ले को देखना कि क्या ये कैच का मौका बन सकता था प्रतीक रावल के लिए, क्योंकि कट जब किया था गेंद हवा में थी, और जी हाँ, एक कैच का मौका था जो भुनाया नहीं गया है भारतीय टीम के द्वारा, एक मौका जरूर था विकेट का। पर अगली गेंद, इस बार फिर हल्के हाथों से गेंद को पुश कर दिया है कवर्स की दिशा में, कवर पॉइंट की दिशा में खेला हुआ ये शॉट, सिंगल देकर जाएगा शोभना को और स्कोर पहुंच जाएगा 38 पर 2 विकेट के नुकसान पर। ये 3 विकेट हो सकती थी अगर 2 गेंदें पहले प्रतीक रावल वो कैच पकड़ लेती शिफाली की गेंदबाजी पे।
1: And this is the second time that she's dropped a catch.
0: जहाँ पहले तेज गेंदबाजी जब हो रही थी तो क्रांति गौर के ओवर में एक कट शॉट खेला गया था उनकी तरफ, जहाँ पे कैच नहीं पकड़ पाई थी। पर चलिए, आखिरी गेंद 9वें ओवर की, रिक्वायर्ड रन रेट जो है 10 के ऊपर पहुंच गई है पहली बार इस मैच में, तो यानी अगले 11 ओवर तक 10 रन प्रति ओवर की औसत से बांग्लादेश को रन बनाने पड़ेंगे, जिस तरह से वो रन रेट बढ़ रही है। अगली गेंद पे फिर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, डीप मिड विकेट पे मौजूद है फील्डर श्रीचरणी, एक रन लेकर दूसरे रन के लिए वापसी करती हुई दोनों ही बैटर्स, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। 9 ओवर समाप्त, 2 रन आते हुए उस 9वें ओवर की आखिरी गेंद पे और स्कोर बांग्लादेश का 40 2 विकेट के नुकसान पर।
1: Well, as far as the power play is concerned, well, India made the most of it courtesy Shefali Verma's innings. She was very attacking from the very word go. Well, she was dropped at least 3 times. That's a different story, but she has taken full advantage of whatever came her way, and even the luck that favoured her. She made 64 of 40 deliveries, hitting 7 fours and 3 sixes. And that really made the difference, as the next delivery of Deepti on the leg stump, and Shobana paddle sweeps it, but the ball goes to Nandini.

0: who is manning the backward square leg area inside the circle. No run. Deepthi with a second delivery. Shabana goes for a big shot, and she will find a deep mid wicket fielder, and she will get a single for that. She went for a big shot over there, but couldn't get to the boundary. She will be satisfied, or will have to be satisfied, with a single, and she moves on to 3 of 9 deliveries. So once again, she is stuck a bit, as Nigar now gets back on strike. Nigar has scored 37 runs so far in this tournament, plus this 3, that is 40 so far. A very important batter in this Bangladesh lineup. The next delivery, but Deepthi is on the middle enough, and it has been played towards mid-wicket, and the bronze striker was going for a quick single, and the Indian fielders are appealing for a run out. That was Shobhana, and the third umpire, I believe, will have to check. Or was she in? Shobhana did dive, and I believe she was in comfortably.
1: बेहतर थ्रो की जरूरत थी, ऐसा लगा कि वो मिड विकेट से जो थ्रो आया वो स्टंप्स की दिशा में नहीं था, डायरेक्ट हिट होती तो शायद मामला अलग होता.
0: नेक्स्ट डिलीवरी, and it has been pulled from the off stump. That's a good slog sweep, very effective. Nigar gets a boundary, a welcome boundary for Bangladesh. Nigar Sultana hits a boundary, and that is something which Bangladesh need at the moment. She pulled the dragged the ball from outside the off stump, and she eyed the gap behind the square leg fielder, so that was very effectively done. And Deepthi Sharma concedes a 4, and more such boundaries and over boundaries are needed for Bangladesh to get anywhere near the target. Next delivery on the full, and she's played back to the bowler, and Deepthi throws it back and try to run the batter out, and Nigar is not happy with that because she gets a hit with the ball, I believe. Nigar came out, got the ball in full, and then came out a few steps, and Deepthi went for the shot, and Nigar in fact had the pad in between. Next delivery goes for a slog sweep. Nigar Sultana, she'll get a single for that. Well, if she was outside, well, that's the end of the 10th over. 46 for 2 is the score of Bangladesh. Well, if Nigar was out of the, you know, from the crease, and then she did that, I believe the fielders could have appealed for obstructing the field.
1: Yes, they could have, but aisa tha nahi. Kyunki wo crease mein pahunch gayi thi, isliye वो ज़्यादा कुछ देखने को मिला नहीं अपील के जरिए. पर जो दिलचस्प बात थी उस शॉट के अंदर जो निगार सुल्ताना ने खेला था, वो ये कि उल्टा बल्ला पकड़ा हुआ था. जो ड्राइव खेली, बल्ले का जो सीधा मुंह होता है वो फ्लैट फेस ऑफ द बैट से नहीं, वो बल्ले के उल्टी तरफ से वो ड्राइव खेली गई थी. और ये आप कई बार देखते नहीं है क्रिकेट के अंदर, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में. तो वो बड़ी दिलचस्प एक बात दिखी, और शायद इसी वजह से वो दीप्ति शर्मा का जो रिस्पॉन्स था ना, वो बॉल को उठा के वापस थ्रो करने का, वो इसी वजह से आया था. पर चलिए, 10 ओवर समाप्त हो चुके हैं, यानी हाफ वे स्टेज जो इनिंग्स का है वो ये कि आपके 46 रन है केवल स्कोरबोर्ड पे बांग्लादेश के 2 विकेट के नुकसान पे. वो रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 10.40 तक पहुंच गई है, यानी आखिर के आपको 10 ओवर्स में अब 104 रन जो बनाने हैं, ये मामला आपके लिए और पेचीदा होता चला जा रहा है. पहले 10 ओवर्स में जब भारतीय टीम बैटिंग कर रही थी तो उन्होंने 32 डॉट डिलीवरी खेली थी, वहीं बांग्लादेश की टीम ने 38 डॉट डिलीवरीज खेली हैं, यानी 6.2 ओवर 10 ओवर्स में से पहले 10 ओवर्स में आपने डॉट डिलीवरीज खेली हैं. बहुत ये दिलचस्प आंकड़ा है जो भगवत सिंह रावत हमारे जो स्कोरर हैं उन्होंने हमको प्रोवाइड किया, क्योंकि जब ये डॉट डिलीवरीज आप पहली हाफ ऑफ द इनिंग्स में इतनी ज़्यादा खेल लेंगे ना, तो दबाव आपके पास वो बैक एंड ऑफ द इनिंग्स में आखिरी 10 में आएगा ही, क्योंकि चेज में अभी रिक्वायर्ड रन रेट 10 के ऊपर आपको दिख रही है, लगभग 10.5 के आसपास. एक दिलचस्प आंकड़ा और, और वो दिलचस्प

0: दिलचस्प आंकड़ा यह है कि भारतीय इनिंग्स में 9 चौके दिखे थे, केवल 9 चौके थे भारतीय इनिंग्स में, लेकिन 9 सिक्सेस भी थे। और वो 9 सिक्सेस की जब आप तुलना करते हैं तो 9 गेंदों में आपने 54 रन बटोर लिए थे।
1: एब्सोल्युटली।
0: और अभी तक बांग्लादेश की इनिंग्स में एक भी सिक्स देखने को नहीं मिला है। आप फोर्स की बात कर ले तो इस इनिंग में अब तक बांग्लादेश बैटर्स की तरफ से 7 चौके आ चुके हैं पर एक भी सिक्स नहीं है, इसलिए वो आप पिछड़ रहे हैं उस रिक्वायर्ड रन रेट से क्योंकि आपको ओवर बाउंड्री हिट्स नहीं मिल रही।
1: एब्सोल्युटली। एंड द करंट रन रेट इज ओनली 4.60, दैट इज डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बांग्लादेश बिकॉज़ दिस इज टी20 क्रिकेट एंड दे आर चेजिंग 150 रन्स, दे हैव ओनली स्कोर्ड 46 in the first 10 overs. So they have 10 overs left and they have to score at a required rate of 10.4. To win, they need 104 runs more. 10 overs, so 60 balls. 104 needed.
0: जी हाँ, और अब ड्रिंक्स ब्रेक जिस जो अंतराल था वो समाप्त हो गया है। 11वें ओवर की शुरुआत अब प्रेमा रावत गेंदबाजी के लिए वापस लाई गई हैं। लेग स्पिनर, पहली गेंद पुल कर दिया उसको डीप मिड विकेट की क्षेत्र में, सिंगल आया है, हल्का सा मिसफील्ड लेकिन उस मिसफील्ड का ज़्यादा फायदा बैटर्स ने उठाया नहीं, वो एक रन से ही संतोष किया निगार सुल्ताना ने। शोभना वापस अब स्ट्राइक पर और इनको स्ट्राइक रेट पे काम करना पड़ेगा क्योंकि शोभना 9 गेंदों का सामना कर चुकी हैं, केवल 3 रन बनाए हैं। अब यहाँ से बाउंड्री इनके बल्ले से चाहिए। अच्छी लेग ब्रेक गेंदबाजी, प्रेमा रावत बीट करती हुई राइट हैंडेड बैटर को, ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद घूमी, स्टंप की लाइन में टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली और बीट किया पूरी तरह से शोभना मस्तरी को। एक बार फिर अगली गेंद, इस बार बैक फुट पे जाके कट करने की कोशिश शोभना की, स्वीपर कवर पे फील्डर मौजूद भारती फुलमली, वहाँ पे बाउंड्री रोप पे मशक्कत करती हुई केवल एक रन पे रोका बैटर्स को। 48 स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे 10.3 ओवर के बाद पिछली 30 गेंदों में केवल 22 रन आए हैं, एक विकेट भी गिरा है बांग्लादेश की टीम का। तो वो मोमेंटम, वो तेजी स्कोरिंग में बिल्कुल लाने में सक्षम नहीं हो पा रही है बांग्लादेश की बैटर्स। अगली गेंद हल्के हाथों से पुश किया है इसे सिंगल के लिए कवर्स की दिशा में और वो सिंगल पूरा करेंगी निगार सुल्ताना। कीपर बैट उन पे बहुत कुछ निर्भर है। देखिए, आपने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का निर्णय कर लिया, दूसरी टीम को 150 रन के करीब स्कोरबोर्ड पर डालते हुए देखा है, अब दबाव है आप पे। अगली गेंद प्रेमा रावत की, फिर लेग ब्रेक, टर्न करती हुई बीट किया बैटर को, बेल्स बिखेर दिए हैं वहां पे, ऋचा घोष ने अपील स्टंपिंग की है। और क्या शोभना का वो दायां पांव ग्राउंडेड था क्रीज के पीछे, इसकी पुष्टि स्क्वेयर लेग अंपायर करती हुई। जी हाँ, नॉट आउट का निर्णय, तो डॉट डिलीवरी और केवल 3 रन 5 गेंदों में इस ओवर की अब तक का प्रेमा रावत के द्वारा। अच्छी नपीतुली गेंदबाजी इस बार, अगली गेंद पे ड्राइव करने की कोशिश, लीडिंग एज बैकवर्ड पॉइंट के सर के ऊपर से निकली है गेंद लेकिन बाउंड्री रोप तक नहीं पहुंचेगी। अच्छी फील्डिंग, एक रीले थ्रो आता हुआ बाउंड्री रोप से और बैटर्स को रोका 2 रनों पे। अच्छा एफर्ट वहां पे नंदिनी के द्वारा और इसी के साथ ओवर की समाप्ति और 50 का आंकड़ा पार बांग्लादेश की टीम के द्वारा। 11 ओवर के बाद 2 रन जोड़ के स्कोर अब 51 2 विकेट के नुकसान पर। पहले 50 रन बांग्लादेश के 66 गेंदों में आए हैं, भारतीय 50 जो था वो 43 गेंदों में आया था, तो वो पिछड़ रही है स्कोरिंग रेट में बांग्लादेश की टीम इस समय।
1: यस ऑफ कोर्स, एंड बांग्लादेश नीड समथिंग ड्रामेटिक एंड a very good innings from one of these batters. Shobhana Mustari is stuck in the crease at the moment. She, remember, is the most successful batter in this tournament for Bangladesh. She scored 77 runs. And fresh over. Shefali is starting the fresh over. The first ball has been played towards cover and there is no run for that. So Shefali is bowling some important overs in between. She is a part-time bowler but very effective as well. Shobhana is on strike. She tried to steer it and this time she will find the gap and the ball is going towards

0: A sad man, but it will not reach the fence. It has been fielded by Sri Charani inside the boundary, and before she throws the ball back to the wicketkeeper, the batter gets a couple of runs. So that will just a bit ease the pressure on Shobhana. If not to boundaries, she at least needs to score of every ball. She's on 8 at the moment of 14 deliveries. 40 dot balls have been seen in this innings. 40 dot balls is a big amount, isn't it, Raman?
1: 68 गेंदों में 40 डॉट बॉल यानी आपने केवल 28 गेंदों पर रन बनाए हैं अब तक इस पूरी इनिंग के अंदर एक टी20 गेम में.
0: Yes, and another dot ball has been added as Shobhana plays it towards point, and the ball goes straight to the point fielder inside the bound, inside a circle, so no possibility of any run. This time Shobhana dances down the crease, goes inside out. Will the ball reach the fence? No, it has been fielded in the boundary, in the cover boundary, and Shobhana once again will get a couple of runs. So the Bangladesh total moves to 56 for the loss of 2 wickets. Wickets are in hand, but time is running away. Overs are running away. Shobhana is running for runs, but she needs to have some big shots. Next delivery outside the off stump. She goes for a cut shot, but she is beaten outside the off stump, and Richa Ghosh collects it cleanly. So another dot ball there. That was quite away from the off stump. Next delivery has been pulled, and once again the fielder in the deep will field, and that is Kranti Gaur, who fields it in the mid wicket, just inside the mid wicket boundary, and that's the end of another over. So Bangladesh at the moment are on 57 for the loss of 2 wickets. The required run rate now is going further up. It's 11.63. The current run rate is 4.75, and the partnership is 22. But the batters need to accelerate. And after 12 overs, India were 75 for 2 and Bangladesh 57 for 2.
1: Yani ab 18 run piche hain is stage pe. Aur dusri baat ye ki aapke liye wo bade hitters kaun honge jo wo bade boundary hits ya over boundary sixes laga ke aapko ye required run rate ko meet kara de. दिलचस्प बात, 12 ओवर यानी 72 गेंदे, 72 गेंदों में से आपने 42 गेंदे यानी 7 ओवर डॉट बॉल खेले हैं. मतलब 7 ओवर में कोई रन नहीं बनाया आपने. अपने लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं. नए ओवर की हुई है शुरुआत. प्रेमा रावत पहली गेंद. शोभाना इस बार कदमों का इस्तेमाल. डाउन द ग्राउंड खेला इसे वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में 4 रनों के लिए. आखिरकार एक बाउंड्री हिट आती हुई काफी अरसे के बाद, और इस बाउंड्री हिट की तलाश थी. आठवीं बाउंड्री है ये, आठवां चौका है ये इस बांग्लादेश की इनिंग्स के अंदर, और ये चौका स्कोर को ले जाएगा 61 पर बांग्लादेश के बार. यहाँ पे 12.1 ओवर के बाद 61 रन स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान पे. शोभाना पहुंची 15 पर पिछली 12 गेंदों में 14 रन. देखिए आपको अब तेजी चाहिए और ये बाउंड्री आपको मदद करेगी. शोभाना 15-19 गेंदों में, इनको भी स्ट्राइक रेट सुधारने की जरूरत. इस बार वो लेग ब्रेक गेंद प्रेमा रावत की अगेंस्ट द टर्न, गेंद को मोड़ दिया है मिड विकेट की तरफ. सिंगल आएगा और सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा आपको. 62 हो गया स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे. 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल भारतीय कप्तान के द्वारा. अब तक हरमनप्रीत कौर ने 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है. क्रांति गौर के 2 ओवर, नंदिनी शर्मा ने 1 ओवर डाला है. जो 2 पेसर्स हैं उनके अब तक आपने कुल मिलाकर 3 ओवर देखे हैं. अगली गेंद बैक फुट पे गई, टर्न कर दिया सिंगल के लिए, और सिंगल पूरा करेंगे काफ़ी आसानी से इस बार निगर, और स्कोर पहुंच जाएगा 63 पर.
0: Well, and statistician Manoj Kumar comes up with another interesting stats. Sri Charani becomes the youngest bowler to get 50 wickets in T20 internationals.
1: इस बीच अगली गेंद टर्न करने की कोशिश थी लेग साइड पर, पैड से लग की गेंद छिटकी है, लेकिन कीपर कलेक्ट करती हुई गेंद को सेकंड बाउंस पे. कोई रन नहीं, एक और डॉट डिलीवरी. 6 रन इस ओवर से आ चुके हैं. 4 गेंदों में 2 गेंदों का आना बाकी. ये वो ओवर है जो बांग्लादेश टारगेट कर सकती है, एक बड़ा ओवर बनाने की कोशिश रहनी चाहिए इस ओवर में, लेट

0: की कोशिश, अगली गेंद पे बीट किया शॉर्ट थर्ड की फील्डर को, जब तक वो रिकवरी और थ्रो आएगा दो रन और लेने का मौका, पिकअप और थ्रो फील्डर के द्वारा जब तक आया दो रन और, शोभना मस्तरी ने अपने नाम जोड़े, अच्छी रनिंग द बिटवीन द विकेट्स, यहाँ पे वो तीव्रता दिखाई उस एक रन को दो में बदलने के लिए, और यही चाहिए आपको, ये इंटेंट चाहिए। आखिरी गेंद 13वें ओवर की आनी बाकी, 85 चाहिए 43 गेंदों में, एक बार फिर कट करने की कोशिश, सीधा पॉइंट की फील्डर की तरफ, इस बार कोई रन नहीं शोभना के नाम, और 13 ओवर की हो गई है समाप्ति। बांग्लादेश की टीम का स्कोर 65 दो विकेट के नुकसान के बाद।
1: Well, just a bit of a correction. Sri Charuni becomes the fourth youngest player to get 50 wickets in T20 internationals, and second youngest Indian after Radha Jadhav. And Sri Charuni is 22 years, 37 days old. So, a lot of records being made, a lot of records being broken as well.
0: आपने राधा यादव की बात करी, चलिए एक लेफ्ट आर्म स्पिनर का रिकॉर्ड एक और लेफ्ट आर्मर ने तोड़ा है। राधा यादव बहुत शानदार क्रिकेटर रही हैं, गन फील्डर हैं, स्क्वाड का भी हिस्सा है, पर चलिए उनका रिकॉर्ड अब श्री चरणी के नाम, या उन्हीं के साथ साथ उन्हीं के नक्शे कदम पर चल गई हैं, जिस तरह से एक लेफ्ट आर्म स्पिनर वो यंगेस्ट टू 50, वहीं एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर उस खाते में अपना नाम, उस सूची में अपना नाम जोड़ती हुई। चलिए 14वें ओवर की शुरुआत,
1: So Dipti will continue. She has conceded 10 runs and she's got one wicket so far in the couple of overs that she bowled. And the first delivery has been swept by Nigar Sultana. And there was a chance of a run out. There was a quick throw back to the wicket keeper. And Nigar Sultana wanted a run but was sent back. And that could easily have been a run-out opportunity. But that was not to be, so misunderstanding between the two batters. There wasn't a run, really. So 85 now needed of 41 deliveries as Dipti comes in. String down the leg side this time, and Nigar plays it towards the fine leg, and it has been fielded. And she will get a single for that. Nigar Sultana is on 13 of 13 deliveries. Shubhana, now on strike, is on 18 of 23. And Bangladesh are on 66 for the loss of two wickets. This is the 14th over in progress. The asking rate is going up every ball. Dipti comes in and she has bowled him. She has bowled her. Shubhana is bowled. Clean bowled by Dipti. She wanted to play across the line, and that was another wicket. So another wicket goes, 66 for 3 now, Bangladesh.
0: यहाँ पे back foot पे चली गई उस गेंद को खेलने के लिए, और थोड़ी सी तेज गति से गेंद डाली थी दीप्ति शर्मा ने, back foot पे जाके इस गेंद को against the line, जो अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में शोभना मोस्तरी अपनी विकेट गंवाती हुई 18 रन बनाकर हुई है बोल्ड। 24 गेंदों में बनाए थे वो 18 रन, तीसरी विकेट का पतन हो गया है बांग्लादेश की टीम की, 66 रन स्कोरबोर्ड पे। और ये साझेदारी जो टूटी है, ये टूटी इस वजह से क्योंकि दबाव बन रहा था उस रिक्वायर्ड रन रेट का, जो अब 12.92 तक पहुंच गई है वो रिक्वायर्ड रन रेट, और हर डॉट डिलीवरी जो निकलेगी और अतिरिक्त दबाव जो बैटर्स क्रीज पर हैं उन पर डालती रहेगी।
1: एब्सोल्युटली, एंड नाउ बांग्लादेश डेफिनेटली अंडर प्रेशर, 66 फॉर 3, दिस इज द 14th ओवर इन प्रोग्रेस, थ्री मोर डिलीवरीज लेफ्ट इन दिस ओवर, एंड शोना अख्तर नाउ कम्स इन, शोना अख्तर हु हैज प्लेड 57 T20 matches so far, is now facing Dipti. She plays it towards mid-wicket and takes a quick run. They have to hurry, but finally they complete it safely. So another run added to the Bangladesh totals. 67 for 3 now, Bangladesh. Shona Akhtar has scored 31.

0: of 18 in the match against Indonesia. Then went on to make 9 of 14 against Sri Lanka and was out in the very first delivery against UAE. Dipti now comes in over the wicket, and that's a big one from Nigar. Will she clear the fielder in the mid-wicket boundary? Yes, she does. So that's the six, the first six of the innings. That was something which Raman was talking about. Bangladesh are not hitting sixes, and here one comes.
1: और इस तरह के और शॉट्स की जरूरत भी है. बहुत करारा प्रहार निगार सुल्तान ज्योति इस बार कदमों का इस्तेमाल किया. इस सतह के ऊपर आपको वो फुटवर्क चाहिए इस तरह के शॉट्स खेलने के लिए. डाउन द पिच आई और फिर ये शॉट खेला.
0: एंड नेक्स्ट डिलीवरी वंस अगेन शी केम आउट ऑफ चार्ज बट चेंज हर माइंड एंड प्लेड अ डिफेंसिव शॉट एंड द बॉल गोज स्ट्रेट टू द बॉलर. सो दिस हैपेंस टू बी द 26th six ऑफ निगार इन T20 International. So that's the end of the over, and Bangladesh are on 73 runs for the loss of 3 wickets, and the asking rate at the moment is 12.83. it's climbing every moment.
1: अच्छे गेंदबाज का चयन किया था आपने वो शॉट खेलने के लिए. दीप्ति शर्मा ऑफ स्पिनर राइट हैंडेड बैटर के खिलाफ आपने विद द टर्न वो शॉट खेला. रिस्क फ्री शॉट था जब आपको वो सिक्स आपने लगाया, क्योंकि अगर यही शॉट आप खेलने जाती है एक लेग स्पिनर या फिर आप एक ऑफ ब्रेक या फिर आप एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर के खिलाफ तो गेंद बाहर की तरफ टर्न कर रही होती. इसलिए शॉट अच्छा था. गेंदबाज का सही चयन, सही गेंद का चयन. नए ओवर की शुरुआत प्रेमा रावत लेग स्पिनर अपने चौथे ओवर की शुरुआत करते हुए और पहली गेंद ड्राइव कर दिया इसको और दूसरे रन के लिए वापसी करने का मौका रहेगा शौर्ना अख्तर के लिए. जी हाँ, दो रन और अपने नाम करती हुई शौर्ना अख्तर और बांग्लादेश का स्कोर अब 75 3 विकेट के नुकसान पर. वापस स्ट्राइक पर है शौर्ना. फ्लाइटेड गेंद प्रेमा रावत की इस बार पुश ड्राइव कवर्स की दिशा में. कोई रन नहीं मिलेगा, सीधा फील्डर की ओर खेला है. शौर्ना अख्तर का जो स्ट्राइक रेट है वो 104 के आसपास, 107 के आसपास का स्ट्राइक रेट है उनका करियर स्ट्राइक रेट जब उस पर नजर डालते हैं. और फिलहाल परिस्थिति इस तरह की बनी हुई है कि आपको 150 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करनी है. अगली गेंद ड्राइव किया सीधा बैक टू द बॉलर और कोई रन नहीं मिलेगा. एक और डॉट डिलीवरी. ये दबाव है इन परिस्थितियों का. गैप्स ढूंढिए. जी हाँ, अगली गेंद इस बार कलाइयों का इस्तेमाल किया, टर्न कर दिया गेंद को. अगेंस्ट द टर्न ही सही, अगेंस्ट द स्पिन खेला हुआ शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में सिंगल देकर जाएगा शौर्ना अख्तर को. और स्कोर अब 76 3 विकेट के नुकसान पे 14.4 ओवर के बाद.
0: सो आफ्टर 14 ओवर्स इंडिया वर 92 फॉर 3 एंड बांग्लादेश 73 फॉर 3.
1: अगली गेंद प्रेमा रावत की इस बार वो स्लाइड टप्पा खाने के बाद स्लाइड स्किड करती हुई बैटर की तरफ निकली. उसको निगार सुल्ताना ने रक्षात्मक रन से ढंग से खेला है. वापस गेंदबाज की ओर कोई रन नहीं आएगा. अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे प्रेमा रावत के द्वारा. अच्छा मिश्रण इस बार वो लेग ब्रेक लीडिंग एज और विकेट आएगी. शॉर्ट थर्ड पे कैच को अंजाम दिया गया है और निगार सुल्तान कप्तान बांग्लादेश की इस महिला टीम की, उनको जाना पड़ेगा वापस. एक अच्छी आक्रामक पारी पनप रही थी और उसको यहाँ पर आगे बढ़ने से रोका है प्रेमा रावत ने. वो लेग स्पिनर लेग ब्रेक गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर निकली. डाउन द ट्रैक खेलने आई थी इस गेंद को निगार सुल्ताना. वो आउटसाइड एज और कैच में कोई गलती नहीं नंदिनी के द्वारा. 19 रन बनाए सुल्ताना ने 17 गेंदों में. चौथी विकेट का हो गया है पतन. 76 for 4 बांग्लादेश.
0: सो द राइटिंग इज ऑलमोस्ट ऑन द वॉल as India now slowly but surely cruising towards victory. Another wicket goes for Bangladesh, and Bangladesh are in real trouble at the moment, not only because they're losing wickets but also because the asking run rate is climbing every moment, and Indian spinners particularly are bowling extremely well. And they have been impressive throughout the tournament as Dipti Sharma with a fresh over. And the ball has been hit. And that was an opportunity there in the mid-wicket boundary, and that has been dropped. In fact, Shruti Mandhana was there, and she was just inside, a few yards inside the boundary, and had she been on the boundary, then she could easily have caught it, and she just was unable to judge that, and that was a wasted opportunity. Not only that, will that be a six? In fact, it went for a four, one bounce into the fence. So that was an opportunity going a begging for India, and Bangladesh won't mind that because they need to have some luck going their way.
1: यहाँ पर गलती स्मृति मंदना से ये कि लगभग पांच या छह यार्ड बाउंड्री रोप के अंदर खड़ी थी, इसीलिए आप देखिए कि हाथ पे गेंद लगी उसके बावजूद सिक्स के लिए नहीं गई है, टप्पा खा के बाउंड्री कुशन को लगी है, तो चार मिलता हुआ वहां पे, चार रन शौना अख्तर के नाम.
0: Absolutely, Shauna now facing Dipti. She has changed the angle going round the wicket this time, and Shauna plays it towards long on, and it has been fielded by Smriti Mandhana, and before she throws it back to the bowler, the batters have changed ends, so that will be another run added to Shauna's score, another run added to Bangladesh's total, and that and Bangladesh move on to 81 for the loss of four wickets. This is the 16th over in progress, and the target is 150, so 69 runs more needed of 28 deliveries. It's getting tougher and tougher. Next delivery just a bit short, and Sharmin plays it towards the third man, and she'll get a single. Just playing it with a spin this time, Sharmin. Sharmin Akhtar has played 39 T20 internationals. This is Shauna now on strike, and that was a Yorker length delivery, and it has been dug out and played towards mid wicket, and she will get a single for that. And before Kranti Gaur fields and throws it back to the bowler. Couple of deliveries left in this over, 16th over in progress. 67 now needed of 26 deliveries. Is getting from tough to almost impossible for Bangladesh. And this time she is clean bowled. So Sharmin just not able to judge the length of the ball. Went for a long sweep. In fact, a cross batted shot. And it was right on target. The off stump is dislodged by Dipti Sharma this time. So another wicket goes, and the end is very much near for Bangladesh. So Dipti gets another wicket, and Bangladesh at the moment are on 83 for the loss of five wickets. Sharmin Akhtar departs, scoring only one run of two deliveries.
1: वो आस्किंग रेट का प्रेशर, वो दबाव साफ पता चलता हुआ. रिक्वायर्ड रन रेट 16.08 की, यानी आपको हर ओवर में वो 16 रन चाहिए, तब जाके आप चेज के अंदर बने रहते हैं. यहाँ पे जो बैटर्स बैटिंग करने के लिए आ रही हैं, उनका स्ट्राइक रेट, आप शर्मीन की बात करें जो अभी आउट होके वापस लौटी हैं, शर्मीन अख्तर, उनका करियर का स्ट्राइक रेट 85 का है, यानी लगभग पांच रन छह गेंदों में बनाती हैं वो. चलिए आखिरी गेंद इस 16वें ओवर की, ड्राइव किया है फाहिमा ने लॉन्ग ऑन की दिशा में, सिंगल आएगा उनके नाम, ओवर की होगी समाप्ति, उनका खाता खुल गया सिंगल के साथ. बांग्लादेश का स्कोर 84 पांच विकेट के नुकसान पे, और दीप्ति शर्मा का स्पेल समाप्त. चार ओवर डाले, तीन विकेट लिए और 26 रन दिए. थोड़े से रनों में वो किफ़ायत आज नहीं दिखी दीप्ति शर्मा की गेंदबाजी में, क्योंकि थोड़ी सी महंगी साबित हुई हैं. इनका इकोनॉमी रेट 6.5 रन प्रति ओवर का रहा, लेकिन तीन विकेट जिन्होंने निकाले हैं वो बहुमूल्य रहे हैं इस बांग्लादेश रन चेस को रोकने में. और वापस जाता हूँ निलाद्री, जो बात पहले कह रहा था कि जब आप ऐसे फेज में आ जाते हैं ना गेम के, जब आपको 16 या 16.5 रन प्रति ओवर चाहिए, यहाँ पे 33 रन पिछली 30 गेंदों में आए और तीन विकेट भी गिर गए, क्योंकि आपको बनाने थे 60 रन 30 गेंदों में, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट 12 की थी, यानी 200 का स्ट्राइक रेट चाहिए था आपको. बैटर्स जो बैटिंग कर रहे आ रही हैं वो 85 90 100 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने वाली बैटर्स हैं, तो रन्स बनाना आसान बिल्कुल भी नहीं होगा. अगली गेंद नए ओवर की, श्री चरणी ने करी है वापसी, इस बार रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश और बैटर पूरी तरह से बीट हुई, कोई रन नहीं मिलता हुआ, एक डॉट डिलीवरी यहाँ

0: सत्रहवें ओवर की शुरुआत हुई है, 84 रन स्कोरबोर्ड पे अगली गेंद श्री चरणी की। फहीमा स्ट्राइक पे एक बार फिर अगेंस्ट द टर्न खेली हुई वो स्लग स्वीप, डीप स्क्वेयर लेग पर बाउंड्री राइडर मौजूद, केवल सिंगल आएगा फहीमा के नाम। वो पहुंच गई हैं 2 पर 85, 5 विकेट के नुकसान पर इस समय बांग्लादेश।
1: So 65 more needed of 22 deliveries, 5 wickets in hand for Bangladesh. So it's, shall we say, impossible?
0: देखिए, वुमेन्स क्रिकेट में बहुत मुश्किल है, आपको वो बिग हिटर्स चाहिए यहाँ से उतने रन्स बनाने के लिए। और टर्न इस बार, अगली गेंद जो कि घुमाव से बीट किया अपने बैटर को पूरी तरह से, आउटसाइड एज शॉर्ट थर्ड की दिशा में जाता हुआ सिंगल शॉर्ना के नाम आया है। 86, 5 विकेट के नुकसान पे पूरी तरह से छका दिया आपने बैटर को वहाँ पे, बैटर तो छुड़ी वहाँ पे, कीपर को भी मुश्किल है गेंद को रोकने में। चलिए अगली गेंद, इस बार फहीमा स्ट्राइक पे फिर वो स्लॉग स्वीप की कोशिश, लेकिन लाइन श्री चरणी ने जो रखी है वो ऑफ स्टंप के बहुत बाहर, इसलिए अगेंस्ट द टर्न खिलाने की कोशिश लगातार कराती हुई बैटर्स को, जिसमें कामयाबी बल्लेबाज को जो बैटर को मिल नहीं रही है बिल्कुल भी। तो ये चतुर गेंदबाजी है श्री चरणी के द्वारा, विकेट सिर्फ लेने के लिए नहीं, यहाँ पे बैटर को रोकने की भी सोच है। एक और गेंद फिर टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई, और फहीमा खातून एक फॉरवर्ड डिफेंसिव पुश खेलने की कोशिश जिसमें हुई है वो बीट। श्री चरणी की गेंदबाजी की खास बात ये भी है कि कई बार उनका जो पॉइंट ऑफ रिलीज है गेंद का, कुछ गेंदें हाई आर्म एक्शन के साथ रिलीज करती हैं, जैसे ये अगली गेंद डाली एक हाई आर्म पॉइंट ऑफ रिलीज रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, एक अपील लेग बिफोर की, अंपायर ने उसे नॉट आउट करार दिया है। सिंगल के लिए दोनों बैटर्स निकलती हुई और थ्रो जो था इतना अच्छा नहीं, जिसकी वजह से ओवर थ्रोज के रूप में एक रन और मिल जाएगा। तो 2 रन उस ओवर की आखिरी गेंद से बांग्लादेश के की बैटर के नाम, और 17 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 88, 5 विकेट के नुकसान पे बांग्लादेश की टीम का। यानी यहाँ से अब आपको जो रिक्वायर्ड रन्स हैं वो 20.67 रन प्रति ओवर की औसत से वो रन बनाने पड़ेंगे अगर आपको 150 के लक्ष्य तक पहुँचना है तो।
1: So India at the moment are well into the road to yet another final of Asia Cup Women's T20. Well, India have featured in all the final matches. As the next delivery from Shefali, and Shorna this time goes over the bowler's head, and she will beat the long on fielder, in fact, and that will be a 6. The 40th 6 of the tournament. And in the innings, it's a second six that is coming up. And that is what we were discussing. Sixes have dried up in the Bangladesh innings. And sixes really make a difference. So 56 now needed of 17 deliveries. Shorna Akhtar is on strike. She goes for another one. But this time she's mistimed it completely. And 2 fielders have come for the catch. One of them is the wicketkeeper, and both of them have collided, and the ball has been grounded. So both the players, it seems Suprema Raut is the other one. Both the fielders going for the catch. In fact, it's Nandini. So Nandini and Richa, both of them going for the catch. And it's really strange. None of them shouting out, it's mine. Or maybe both of them thought they will be catching. Both of them shouted and none heard the other shout. Both of them went for the catch and they have collided and dropped the catch as well. So an opportunity goes a-begging. Bangladesh don't mind that. The batters will get a couple of runs, I believe. Yes, a couple of runs, taking advantage of that collision. The batter came for the second run. So it's all happening. And Bangladesh reached 96, and in the process, both the fielders have got hurt as well. Now, Richa and Nandini both are being treated on the field.
0: हल्का सा कंकशन चेक

0: के लिए दौड़ रही थी, तो चांस तो बिल्कुल बन रहा था जिसको लिया जाना चाहिए था। अगली गेंद इस बार पुश किया है कवर्स की दिशा में, कोई रन नहीं आएगा, डॉट डिलीवरी खेली जाती हुई।
1: So Shefali with her last over, and this time it was flighted, and Shona went for a big one, and she missed that opportunity. She knows that it was coming in. She's an off spinner, Shefali, and Shona is a right-handed batter, could have dispatched it. This time she comes out, but Shefali pitches it short, and Shona has to check his her shot. And she plays it towards the mid-wicket, and she will get only one for that. And now Fahima is on strike. Fahima is on 4 of 6 deliveries. And this time it's short, and Fahima goes for a pull shot, and she will find the mid-wicket fielder on the boundary, and she will get only a single, and that's the end of the over. So after 18 overs, Bangladesh are 98 for the loss of 5 wickets.
0: यहां से दो ओवर में
2: अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
3: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
2: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इनमें फ्रांस की सफरान स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण कंपनी राइड भारत की कंपनी टेक मी टू स्पेस के 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। भारत शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2 दिन के सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और भारत सहित 11 सदस्य देश शामिल होंगे। ब्रिक्स के साझेदार देशों के रूप में बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम भी सम्मेलन में भाग लेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस और ब्राजील के राष्ट्रपति आज रात नई दिल्ली पहुंचेंगे, जबकि कई अन्य नेता कल राजधानी पहुंचेंगे। शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने विषय पर चर्चा के साथ होगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में कल दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। यात्रियों को ताजा जानकारी के लिए DMRC की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप देखने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट जून 2026 की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाज शास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उम्मीदवार 13 सितंबर तक UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इन 3 विषयों की दोबारा परीक्षा प्रश्न पत्रों में कई गलतियों की शिकायतों के बाद आयोजित की गई थी। अंग्रेजी और कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर को, जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा आज हुई। क्रिकेट में दुबई में खेले जा रहे महिला एशिया कप के पहले सेमीफाइनल

0: And we have it there, a comprehensive, confident, a very convincing victory out there by the Indian women today. 149 for 6 that the Indian women made in 20 overs. Bangladesh was able to put up only 109 for the loss of 7 wickets in their allotted 20 overs. And thereby, the Indian women finally storming into the finals of the ongoing Asia Cup 2026. I'm Sakshi Mandwal, joined over here by my dear friend and co-host for the evening, Anand Srivastav. Good evening, Anand.
1: Good evening. और इस कार्यक्रम में हमारे साथ दो विशेष मेहमान हैं, बीसीसीआई कोच रविंद्र सिंह और वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थ सारथी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत।
2: शुक्रिया।
0: ओके, वेरी क्विक क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम अपने श्रोताओं को भी बधाई दे दें कि भारतीय महिलाएं अब की बार एक बार फिर से एशिया कप 2026 के फाइनल्स में एंटर कर चुकी है। द 10th कंसेक्यूटिव एंट्री बाय इंडिया, इंडियन वुमेन शुड आई से, इन क्रिकेट इन एशिया कप फाइनल्स। मोना, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस?
2: बिल्कुल, 10वां टूर्नामेंट है, 10 बार इंडिया फाइनल में पहुंचा है, तो डोमिनेंस की अगर कोई परिभाषा होती है तो वो यही है। और जिस तरीके से आज खेल दिखाया है भारतीय टीम ने, हम पहले बात कर रहे थे कि रन में शायद हम पीछे रह गए, लेकिन गेंदबाजों ने वो कमी पूरी कर दी। और स्पिनर्स, खास तौर पे यहाँ बात करेंगे दीप्ति शर्मा की, क्या मैच विनर प्लेयर है, फॉर्मेट कोई हो, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थी वर्ल्ड कप में। और अब भी आप देखिए कि सबसे ज़्यादा 11 विकेट उनके नाम हो गए हैं एशिया कप में भी, तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन।
1: जी हाँ, बहुत ही बेहतर प्रदर्शन दीप्ति शर्मा का, 26 रन देकर उन्होंने 3 विकेट लिए हैं। साथ ही साथ नंदिनी शर्मा को 2 विकेट मिले, दोनों विकेट उनको आखिरी 2 गेंदों पर मिले हैं। साथ ही साथ श्री चरणी, जो इस टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, इस साल भारत की लीडिंग T20I विकेट टेकर हैं, उनके नाम 1 विकेट। और प्रेमा रावत ने भी 21 रन देकर 1 खिलाड़ी को आउट किया। रविंद्र, देखने में ओवरऑल बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय टीम का रहा। एक समय लग रहा था कि हम 10-15 रन पीछे हैं, लेकिन बांग्लादेश कहीं से भी इस रन चेज में टक्कर देता नजर नहीं आया।
3: देखिए, शुरुआत में तो जैसे 2 ओवर निकले थे, 3 ओवर निकले, तो ऐसा लग रहा था कि टक्कर शेषा शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अल्टीमेटली आपके पास एक ट्रम्प कार्ड है, तुरुप का इत्ता है, श्री चरनी। ये बॉलिंग एनालिसिस, शायद उसके ज़्यादा विकेट्स नहीं मिले हैं, लेकिन जो 4 ओवर में 14 रन और 1 मेडन है, 1 मेडन T20 में होना बहुत बड़ी बात है। और ये जो बॉलिंग दिखा रहा है, ये पूरे मैच को पलट देती है। श्री चरनी इस समय एक स्पिनर सारे अच्छे हैं, लेकिन जो श्री चरनी बॉल कर रही है, वो वाकई उसको लेवल बहुत ऊपर है। इसकी वजह से आपको अच्छी अच्छी टीमें इस समय धराशायी होती दिख रही है।
0: जी, और इसी बात को थोड़ा आगे लेके भी जाए तो बांग्लादेश की जो क्रिकेट में, मतलब बांग्लादेश के क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने शुरुआती फेज में, हम देखेंगे पहले 6 ओवर्स के अंदर, कोशिश जरूर करनी चाहिए थी कि एक फास्ट अटैक के थ्रू अग्रेसिव क्रिकेट से इनको लीड दिलवा सके, बट दे वर नॉट एबल टू स्टिक टू दैट मोमेंटम एंड पेसिंग। कंटिन्यूअस विकेट लॉस affected the Bangladeshi women very strongly today, Mona.
2: बिल्कुल, आप देखिए कि 4 विकेट निकल चुके थे, 70-75 रन का स्कोर था जब टीम का, और शुरुआत में लगा था कि 1-2 अच्छे स्ट्रोक्स लगाए थे, खासतौर पे जो दूसरे तीसरे ओवर में एक चौका आया था ज़बरदस्त, और भारतीय खिलाड़ियों से भी कुछ कैच छूटे। पहले प्रतिका ने कैच छोड़े, उसके बाद एक कैच बाद में भी छूटा, तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये फील्डिंग लैप्सेस भारी पड़ जाएं या बांग्लादेश के बैटर्स आज अच्छा खेल जाएंगे, लेकिन वो जो नियमित अंतराल पे उनके विकेट गिरते रहे और वो मोमेंटम बन ही नहीं सका, जिसको कहते हैं कि 150 रन भी अगर आपको बनाने हैं तो आपको एक एंकर चाहिए जो पारी को संभाल के खेल सके और दूसरे छोर पे बल्लेबाज को खुलकर खेलने की आज़ादी दे। वो कहीं नज़र नहीं आया, गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेल के बांग्लादेशी बल्लेबाज आउट होते चले गए।
1: इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आप कहाँ से बोल रहे हैं और क्या जानना चाहते हैं? जी बताएं। ये कह रहे हैं शेफाली वर्मा ने जिस तरीके की बैटिंग की, इनको वीरेंद्र सहवाग की बल्लेबाजी की याद आ गई।
3: बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आपको याद आई, वीरेंद्र अच्छी बैटिंग करी उन्होंने, चाहे 2-3 चांसेस मिले, लेकिन वाकई अच्छी बैटिंग करके उन्होंने टीम को स्कोर को 150 तक पहुंचाया, नहीं तो टीम का स्कोर लग रहा था कि 125-30 पर ही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर लेकिन ऐसी बैटिंग हमसे कंसिस्टेंटली चाहिए, क्योंकि 6 ओवर जो पहले पावर प्ले के 6 ओवर होते हैं वो बहुत क्रुशियल होते हैं। हमने पहले बताया था कि बांग्लादेश को भी पहले 6 ओवर में 40 रन तो चाहिए अगर एक अच्छा स्टार्ट मिलता है, क्योंकि स्पिनर्स के बाद गेम को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। इसलिए वो मीडियम पेसर्स को अटैक भी कर रहे थे शुरू में कि इनको जितने ज़्यादा रन बटोरे जा सके बट, लेकिन वो श्री चन्नी ने वो तीसरे ओवर में आके वो गेम को पाछा पलट दिया।
0: सवाल मेरा आपसे मोना ये होगा कि हम बात करते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट में काफ़ी बेहतरी हुई है ओवर द ईयर्स, इजाफा जिसको हम कहते हैं उनके खेल के प्रदर्शन में भी, लेकिन क्या आपको सही मायने में दिखता है दैट द बांग्लादेशी वुमेन्स क्रिकेट हैज़ इवॉल्व फॉर द बेटर और देर इज स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क लेफ्ट इन बांग्लादेशी वुमेन क्रिकेट?
2: देखिए, इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे टूर्नामेंट नहीं जीते जा सकते। बेहतरी हुई है, उनके पास कई अच्छी खिलाड़ी आए हैं जिनमें से एक उनकी स्विंग बॉलर है मारूफा अख्तर, लेकिन एज अ टीम एज अ यूनिट आपको हर डिपार्टमेंट में अच्छा खेल दिखाना होगा। अगर एक डिपार्टमेंट कम रह गया है तो दूसरे को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, जैसा चैंपियन टीमें करती है। लेकिन मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं कमी है अभी जो नज़र नहीं है, जो नज़र आती है कि आप जब तक आईसीसी टूर्नामेंट बड़े टूर्नामेंट नहीं जीतोगे, एक पैरामीटर होता है आपके जो आपने प्रगति की है, जो विकास किया है, जो आपके प्रदर्शन में सुधार आया, उसके लिए आपके कैबिनेट में ट्रॉफीज़ भी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि उस मामले में अभी बांग्लादेश जब तक कोई बड़ी आईसीसी खिताब नहीं जीतता तब तक हम ये कह सकते हैं कि अभी भी वो विकास की राह पर है।
1: जब हम जीतते हैं तो बहुत सारी कमियां छिप जाती हैं रविंद्र जी। आज 40 रन की इस जीत में एक जो कमजोर पहलू था वो भारतीय फील्डिंग थी। 3 कैचेस छूटे, कुछ मिस चांसेस हमने रन आउट में भी देखे, और प्रतिका रावल इस टूर्नामेंट में अब तक 4 ड्रॉप कैचेस उनके नाम है।
3: देखिए, बिल्कुल सही कहा क्वेश्चन आपका कि ये जीत में बहुत कुछ छुप रहा है, लेकिन ये आज बांग्लादेश की इमेच्योर बैटिंग थी। कहीं पे कोई बैटिंग लग नहीं रही थी कि कोई क्लास कोई जिस हिसाब से लेवल है वहाँ खेलना चाहिए। प्लेयर्स एक ही शॉट खेले जा रहे हैं, स्वीप करे जा रहे हैं। उनको किसी ने ये नहीं बताया कि ऑफ साइड में कवर्स पर सामने खेलना चाहिए, वी में खेलना चाहिए। इसके लिए अभी इनको बहुत काम करना पड़ेगा। जिस हिसाब से बांग्लादेश की जो बॉलिंग अच्छी है, बॉलिंग में नो डाउट वैसे मैडम ने बताया, अच्छे इन स्विंगर बॉलर मिल गए आपको, एक दो बॉलर अच्छे हैं, लेकिन आपको बैटिंग में बहुत काम करना पड़ेगा। नहीं तो ये एक जो आज जिस हिसाब से इंडिया ने फील्डिंग करी है और जिस हिसाब से इंडिया में सिर्फ चन्नी को छोड़ के बाकी बॉलर इतने ऐसे नहीं थे कि उनको रन नहीं बनाए जा सकते थे। अल्टीमेटली आपने कोई बैटिंग नहीं करी लेकिन तब भी 40 रन का डिफरेंस रह गया। अगर दो प्लेयर आपके अच्छी बैटिंग करते तो ये रन आराम से चेज हो सकते थे।
0: या एंड आई थिंक समवेयर ये भी चीज़ हमने देखी आज की, जिस तरह से जो बांग्लादेश का इनिशियली अप्रोच दिखा था कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, ऐसा लगा कि वो कोई एक प्लान लेके उतरे हैं कि पावर प्ले में कितने रन बनाने, बहुत जल्दी उनका वो सारा अप्रोच डिसॉल्व होता हुआ नजर आया। रेकलेस इम्पल्सिव शॉट्स, टारगेट इतना बड़ा था नहीं, फिर भी उनके अंदर जो एक कहते हैं ना एक मचलता दिखाई दी कि रन्स को जल्दी जल्दी बटोरो किसी तरीके से। द इमैच्योरिटी इन देयर क्रिकेट वाज वेरी ऑब्वियस मुना।
2: इमैच्योरिटी और मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रेशर, सेमीफाइनल का प्रेशर भी हावी हो गया टीम पर और वो उस प्रेशर में विकेट एक के बाद एक गंवाते चले गए। और जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बहुत गहराई नहीं है उनकी बल्लेबाजी में, 2 या 3 बल्लेबाज हैं जिनसे उम्मीद की जा रही थी, उनमें एक कप्तान निगार सुल्ताना भी है, तो जब वो नहीं चल पाए तो निचले क्रम से तो उम्मीद करना ही बेमानी था।
1: जी हाँ, उनका लोअर मिडिल ऑर्डर नहीं चला। ज़रूर शुरुआती दौर में जो ओपनिंग बैटर्स हैं उन्होंने ज़रूर प्रदर्शन किया, लेकिन वो मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाया मिडिल ऑर्डर पर। और कहीं ना कहीं जो हम चर्चा कर रहे हैं कि जो अनुभवी भारतीय गेंदबाजी है, चाहे वो दीप्ति शर्मा हो, चाहे इनफॉर्म श्रीचारणी हो, साथ ही साथ प्रेमा रावत जिनके लिए बहुत बढ़िया ये टूर्नामेंट घट रहा है, वो भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन उनका रहा। नंदिनी ने भी आज दिखाया कि क्रूशल मौकों पर वो किस तरीके से विकेट निकाल सकती हैं टीम इंडिया के लिए। क्रांति गौड़ एक पहलू वो भी हैं चर्चा करने के लिए कि शुरुआती ओवर्स वो करती हैं लेकिन मनचाही

0: सफलता नहीं मिल रही, इस पर हम बाद में लौटेंगे। चलते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की तरफ, जहां सबसे पहले बांग्लादेश की कैप्टन को सुनते हैं कि वो क्या कह रही है।
1: Probably, I thought about 20 runs much more, isn't it?
2: Yeah, actually we didn't bowl well today, because what we have done in the last three games, we bowled really well as side of. I guess we fielded really well. We lost so many chances over there, so yeah, it happened.
1: What do you put down to? Probably pressure of playing a semi-final against India?
2: I don't think so. No, that was the pressure, I guess. It was just the bad day, what happened to I guess the whole team. And yeah, sometimes, you know, we really wanted to restrict them in a total that we can chase, but somehow we didn't bat as well in the power play.
1: So you won the toss, bowled first. Did you ever think the pitch will get so slow come the second innings?
2: Because we played the three games, it was behaved like that, but we were expecting like maybe we'll get more a good wicket this time, but still we bowled well, we created our chances, but we couldn't capitalize them, so they batted really well.
1: Bad luck today. Any message since you're playing the last game today?
2: So I think we have achieved a lot of things from here, I guess. One thing that we have learned from here that we kept ourselves very limited here. So in future, we really wanted to play our all-out game, and we just need to execute ourselves in the middle.
1: Tell you what, enjoyed watching you guys play. Very well done. All the best for the rest of the year for you.
2: Thank you so much.
1: Thank you very much. Iga Sultana, the captain of Bangladesh. Right now, it's my duty to announce the player of the match. No surprises here. For 64 of 40 deliveries, inclusive 7 fours and 3 sixes, none other than Shefali Verma. She'll collect the award, the check from Miss Jamila Yusuf. And after that, she'll collect the trophy from Miss Neetu David. Played exceptionally well, scored her second half century of the tournament. Very powerful in the top order, used the power play really well. Very well done, congratulations. You batted superbly today.
3: Yeah, there's lots of humid out there, and even in the middle also, sometimes I can't even breathe. So just I'm trying to, you know, just inhale, exhale more. And just in the starting, I didn't get that balls, but I'm just trying to, you know, just play grounded, and there's a bit of chance with the gold grains. So yeah, I'm just trying to build my inning. So just these things happen.
1: I think anyone deserves a bit of luck. But looking at how you played in the power play, Shefali, that was urgency when it comes to the power play, trying to, you know, score big runs with the new ball. Was that something you spoke in the dressing room as well, as the ball loses the hardness, it'll be tough in the middle overs?
3: Yeah, of course, as I said earlier as well, in the sixth over there is easy to score runs, so we're just trying to take lots of runs on that six overs. So I know it's my job to hit some sixes and fours in my in the power play, so I'm just trying to do that.
1: Enjoyed watching you, very well done today, and all the best for the finals as well.
3: Thank you.
1: Thank you very much. The Shefali Verma, the player of the match. Now, I'd like to invite Harmanpreet Kaur for a quick chat before she joins me. She'll sign the match ball as Miss Jamila Yusuf will handle the ball to be signed by the skipper of India, Harmanpreet. Unbeaten so far, everything going well, Harmanpreet. Must be a happy, happy captain with everything going wrong.
4: Yeah, definitely. I think the way things are going, really happy the way we have been batting and bowling. Yeah, things are going well.
1: In a way, I thought how the pitch behaved in the second innings. Were you just surprised how the pitch became even more slower compared to the first innings?
4: Yeah, I think there was a value to the good balls. If you were, you know, giving reps to the ball, there was value to that ball, and no doubt about that. And I think both the teams, spinners bowled really well today. Batters were trying hard to get those runs, but I think there was a lot for spinners, and I think they used this pitch really well.
1: Must be really pleasing to watch everyone contributing. Now, for an example, I like to see the small things. Deepthi Sharma, her cameo, 13 of 6 deliveries, and how she bowled. And even Shefali, one of the few overs she bowled. So everything clicking very beautifully leading up to the final, isn't it?
4: Yeah, definitely. I think the small partnership worked really well, especially when you have pitch like this where you don't know, you know, how the things are going to be. And I think small things matter a lot. I think all the partnership today we had while batting, those were very crucial. And even Richa's batting, Richa came and, you know, played few really good shots. And I think that was also very valuable. And I think with ball also, Deepthi was excellent today.
1: Yeah.
4: Whenever we needed, she came up and gave us a few breakthroughs.
1: I thought you summed up really beautifully. beautifully with the last question. All the very best to you for the final as well. Well done.
4: Thank you so much.
1: Thank you very much. Right, this captain of India, Harmandeep Kaur. That's it from the presentation.
5: Well, a very happy Indian captain out there, Harmanpreet Kaur, and all the reason more for her to be so, because it's been an unbeaten run for the Indian women in the ongoing Asia Cup 2026. And ek cheez, Mona, jo unhone baat kahi abhi post-match ceremony mein, which stood out for me, was ki there was value to the good balls. And on both the teams, of course, spinners ne bahut achhi bowling kari, lekin achhi ball ko izzat dena बहुत ज़रूरी था. एंड पॉसिबली दैट वॉज वन ऑफ द थिंग्स दैट वर्कड बेटर फॉर इंडिया एज कम्पेयर टू बांग्लादेश.
6: जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि रेकलेस बैटिंग बांग्लादेश की रही, वो अच्छी बॉल को इज्जत देने की ही बात है कि भारतीय बल्लेबाजों ने ढीली गेंदों का इंतज़ार किया, अच्छी गेंद को इज्जत दी. तो मेरे ख्याल से हरमनप्रीत का कहने का मतलब वही था कि जो रेकलेस शॉट्स थे वो हालांकि कुछ बचा जा सकता था, लेकिन एक कैप्टन का जो ऑब्जर्वेशन है उस हिसाब से ये है कि अच्छी गेंदों को उन्होंने इज्जत दी और ढीली गेंदों को नसीहत दी, जो बांग्लादेश की टीम, जैसे आप कह रहे, नहीं कर पाई. और जिस तरह से हमने देखा उनके विकेट जिस अंदाज में गिरे हैं, तो उससे यही है कि जो आपके यहाँ की अच्छी गेंदों को इज्जत देना.
0: एक बार फिर आज के मैच में दीप्ति शर्मा ने दिखाया कि अनुभव का कोई तोड़ नहीं, और जिस लेंथ पर वो खास तौर पर गेंदबाजी कर रही थी, बांग्लादेश के बैटर्स सोच रहे थे कि फ्रंट फुट पर खेले, बैक फुट पर खेले, और कुछ एक गेंद जो स्पिनर्स के लिए कही जाती कि खिंची हुई लेंथ पर गेंद, और वहीं पर उनको तीन विकेट मिल गए.
7: बिल्कुल, देखिए ये ना एक्सपोजर की बात है, खेलने की बात है, कितना आप खेलते हैं उस पर बहुत मैटर करता है. जो इंडिया के बॉलर्स खेलते हैं, इनके पास एक्सपोजर है, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना खेलते हैं उतना मुझे लगता नहीं कि बांग्लादेश की टीमों के पास इतने रिसोर्सेज भी होंगे या इतनी सब मैचेस मिलते होंगे जितने इंडिया को मिलते हैं. इसका यही चीज़ का बेनिफिट है. लेकिन ये जो फिर जो आपने बताया है, आप ये देखिए जब अच्छी टीमें आती हैं तो इस चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं. जहाँ पर आप देखिए वर्ल्ड कप वगैरह में इंडिया जाती है तो उसमें साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों के सामने हम लोग नहीं टिक पाते हैं, वहाँ पे हम लोग इन चीज़ों मात खा जाते हैं, क्योंकि वो उनकी फील्डिंग लेवल और हमारी फील्डिंग लेवल में बहुत फ़र्क है. ये इंडियन जो हमारी टीम को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इनसे जीत तो रहे हैं, लेकिन जहाँ पर आपकी कमियाँ हैं, जहाँ आपने कैचें छोड़ी हैं, और जो अभी उन पर ज़्यादा बैट्समैन बैटर दिख नहीं रहे थे जो कि अटैक कर सकें, लेकिन अच्छी टीमों में आपको अच्छे बैटर मिलेंगे और अच्छी फील्डिंग भी मिलेगी, वहाँ पर आपके जो कैचेस बहुत महंगे पड़ने वाले.
5: राइट, मोना आपके पास आती हूँ. उससे पहले मुझे बताया जा रहा हमारे साथ इस वक्त एक श्रोता जुड़ गया है, उनसे भी बात कर लेते. नमस्कार, गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रहे? गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप. थैंक यू सो मच, थैंक यू. जी, जेमी रॉड्रिक्स के बारे में बता दें कि उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी के वजह से वो मैच का हिस्सा नहीं बन पाई है काफ़ी समय से. लेकिन दूसरा, इन्होंने यहाँ पर हमारे बॉलर के ऊपर बात करी है मुना, और इनका ये कहना था कि जिस तरीके से प्रेमा रावत है, उनकी जगह अगर राधा यादव होती तो शायद ज़्यादा बेहतर बॉलर का एक हमें कह लीजिए सब्स्टिट्यूट या फिर ऑप्शन मिल जाता. प्रेमा रावत ने 4 ओवर में 21 रन देके 1 विकेट निकाला एट एन इकोनॉमी ऑफ 5.2 एंड दैट इन इटसेल्फ, जिसमें उनकी बांग्लादेश की कप्तान यानी निगार सुल्ताना जी, वो उनका सबसे इंपॉर्टेंट विकेट रहा है.
6: आप मुझे बताओ, T20 क्रिकेट में 6 से नीचे की इकोनॉमी से अगर कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा है और इम्पॉर्टेंट विकेट भी ले रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे समय में आप उसके टीम में रहने पर सवाल उठा सकते हो. जो आपको परफॉर्मेंस चाहिए, और सिर्फ इस मैच में नहीं, प्रेमा ने थ्रू आउट टूर्नामेंट अच्छी गेंदबाजी की है, अच्छा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है टीम के लिए, और अभी तक भारत का अपराजेय रहा है अभियान जो है, एक भी मैच हम हारे नहीं है, तो एक अच्छा खासा विनिंग कॉम्बिनेशन है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी खिलाड़ी की भूमिका पर आप उंगली उठा सकते हैं।
0: प्रेमा रावत ने इस टूर्नामेंट में इस मुकाबले से पहले 5 विकेट लिए थे, तो अच्छी फॉर्म में हैं और आज भी उन्होंने एक सफलता हासिल की है। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं प्लेयर ऑफ द मैच कार्यक्रम में। नमस्कार, स्वागत है आपका। जी रेड्डी साहब स्वागत है, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप। भारती फुलमाली को लेकर इनका सवाल है, लेकिन बहुत ज़्यादा गेंदे इस टूर्नामेंट में उनको खेलने को नहीं मिली है रविंद्र, बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हैं श्रोता भारती को लेकर।
7: बिल्कुल, देखिए उनको पूरा मौका नहीं मिल पाया भारती को भी, लेकिन अभी पूरी तरह आप देख नहीं पाए, अच्छी अच्छी बैटर है, लेकिन आप ये देखिए जो बाहर की जो बेंच स्ट्रेंथ है उसमें कोई बैटर नहीं है, आप खिलाएंगे किसको, आप सारे बॉलर्स हैं और एक विकेट कीपर है, तो कोई बैटर नहीं आपके पास, तो मुझे लगता है कि अब आपको इन्हीं से जाना पड़ेगा और इन्हीं पर ट्रस्ट करना पड़ेगा और उम्मीद करिए कि ये अच्छी बैटिंग करके दिखाएंगे।
5: राइट, ओके, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं बिकॉज वी आर ऑल्सो लुकिंग एट द फाइनल्स अब तो, और भारत के चांसेस मोना आपके पास भी आऊँगी रवि, आपसे पूछूंगी आप दोनों किस प्रकार से देखते हैं फाइनल के अंदर। अभी मैं पता होना चलना है कि कल के मुकाबले में जो पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में होने वाला है, जो भी उस मुकाबले को जीतेगा भारतीय टीम का अपोनेंट बनेगा फाइनल्स के मुकाबले में, पर भारत के चांसेस आपको किस तरीके के दिखते हैं?
6: देखिए अभी तो पहले हमें पता चलना चाहिए कि कौन खेल रहा है भारत के खिलाफ। वैसे ज़्यादा चांसेस है कि श्रीलंका से ही फाइनल होगा, श्रीलंका पहले भी खिताब जीत चुका है 2 बार, और इस टूर्नामेंट में अगर श्रीलंका की बात करें तो बांग्लादेश ने ही उसे बहुत कड़ी टक्कर दी थी, तो मुकाबला भारत के खिलाफ खेलना, वैसे भी 7 बार की चैंपियन भारतीय टीम है, एक प्रेशर होगा, और इतनी कन्विंसिंगली जीत कर जा रही है फाइनल में टीम, तो अब देखना होगा कि कल श्रीलंका का प्रदर्शन कैसा रहता है, उसके आधार पर ही कोई कयास, और उससे पहले भारत को अपनी जो कमज़ोर कड़ियां हैं उनको दुरुस्त करना होगा।
0: जी हाँ, कमज़ोर कड़ियों की जब चर्चा हो रही है तो पहली कमज़ोर कड़ी जो भारत का है वो मध्यक्रम, आज भी उस तरीके से प्रदर्शन नहीं हो पाया, चाहे हरमन का बल्ला हो, चाहे प्रतिका रावल हो, ऋचा घोष भी उस स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी नहीं कर पा रही हैं। लोअर मिडिल ऑर्डर में हमने देखा कि भारती की चर्चा हुई, बहुत कम गेंद उनको खेलने को मिली, साथ ही साथ दीप्ति शर्मा ने आज ज़रूर बेहतर प्रदर्शन किया। और दूसरी कमज़ोर कड़ी जो इस टीम इंडिया की है वो है फील्डिंग, क्रूशियल मौक़ों पर अगर आप कैचेस छोड़ेंगे तो आप निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप उस मोमेंटम को लूज करेंगे। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार जी, बताएं कहां से बोल रहे हैं और क्या जानना चाहते हैं। जी प्रकाश जी, जी बताइए क्या जानना चाहते हैं आप।
8: नमस्कार
7: देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बैटिंग में मुझे थोड़ी कहीं ना कहीं वीकनेस लग रही है, जो जेमिमा के ना होने से भी थोड़ा फर्क पड़ रहा है बीच में टीम में। भारतीय अभी पूरी तरह बैटिंग अब उनको पूरी तरह मिली नहीं है, और हरमनप्रीत अभी उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। जब 3-4 बैटर आपके सामने ऐसे केसेज आ जाएँ तो मिड ऑर्डर हमेशा थोड़ा सा चरमरा सा जाता है। स्मृति उसकी कमी को पूरा कर रही हैं, शेफाली पूरा कर रही हैं, और प्रतिका रावल से हमें उम्मीद है कि इस समय प्रतिका रावल का चलना ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि फाइनल में थोड़ा ठीक जो भी आज कमियाँ रहेंगी उनको मैनेजमेंट ठीक करेंगी, और ये बैटिंग आपको थोड़ा बेटर होगा, अगले मैच में बेटर दिखेगी फाइनल्स में।
5: राइट सो अगले मैच में हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि यानी अगला मैच तो अब क्या कहें सिर्फ फाइनल्स ही है एंड द बिग डे जो कि रविवार को होगा जब भारतीय टीम सामने आमने होगी इधर श्रीलंका या फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट तो उसमें हमें ये उम्मीद रखनी पड़ेगी कि प्रतिका रावल जिन्होंने आज एक बार फिर से एक मेडियोकर पारी खेली हम कह सकते हैं पारी को संभालने वाले किरदार को निभाने आई थी नंबर तीन पर लेकिन खेल के गई जिसमें 24 में 20 रन उन्होंने बनाए 24 गेंदों में बट उससे ज़्यादा बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न जो मुझे लगा वो थी हरमनप्रीत कौर मोना जिन्होंने

0: काफी बॉले, 16 गेंदें इनिशियली वेस्ट करी और फिर मोमेंटम पिकअप किया। अगर श्रीलंका संडे को हमारे सामने आती है तो ये पॉइंटर्स या ये जो एरिया ऑफ कंसर्न्स हैं बहुत बुरी तरह से भारतीय टीम के एक्सप्लॉइट हो सकते हैं अगर हमें अच्छी ओपनिंग नहीं मिली, और उस दिन सामने बांग्लादेश नहीं होगी।
1: मैं मैच के बीच में देख रही थी कि ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था कि आज टॉकिंग पॉइंट क्या होगा, हरमनप्रीत कौर का स्ट्राइक रेट या ड्रॉप्ड कैचेस। तो मुझे लगता है कि ड्रॉप्ड कैचेस पे तो काफ़ी बात हो गई है, लेकिन हरमनप्रीत का स्ट्राइक रेट लगातार वर्ल्ड कप में भी काफ़ी इस पर बात हुई थी, लेकिन बाद में एक पारी उन्होंने अच्छी खेली थी। तो जब आपके पास स्मृति मंधाना या शेफाली वर्मा अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो सबसे अनुभवी और अच्छी बल्लेबाज हैं हरमनप्रीत। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले बड़ी पारियां ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ उन्होंने बड़ी बड़ी पारियां खेली हैं, तो लोगों को उसी हरमनप्रीत कौर का इंतज़ार है जो कप्तानी पारी खेले, मोर्चे से अगुवाई करे। वो कहीं इंटेंट अभी नज़र नहीं आ रहा है, तो फाइनल मैच है, उम्मीद यही करेंगे कि कप्तान एक उस पुरानी हरमनप्रीत कौर की झलक देखना चाहेंगे जो मैच जिताती थी अपने बल्ले से।
2: रविंद्र जी, जब टीम जीत रही होती है तो कोई भी कप्तान या टीम मैनेजमेंट जिसमें कोच भी शामिल होता है वो टीम की संरचना में बदलाव नहीं करना चाहता। यहाँ पर जैसे कि हम वीक लिंक की बात कर रहे हैं तो वीक लिंक में हम देख रहे हैं कि मध्यक्रम है जहाँ पर ऑप्शंस नहीं है। क्रांति गौड़ को विकेट नहीं मिले हैं क्योंकि ये स्पिन फ्रेंडली ट्रैक हैं, ज़्यादातर स्पिनर से गेंदबाजी कराई जा रही है। क्या देखते हैं यहाँ पर, रेणुका ठाकुर भी हैं इस 15 सदस्यीय टीम में बड़े मैच में, क्योंकि हमने देखा कि मारूफा अख्तर को जिस तरीके से स्विंग मिल रही है रेणुका उसमें महारत हासिल कर चुकी हैं, क्या उनको चांस देने के बारे में सोचा जा सकता है?
3: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही पाया है कि क्रांति गौड़ के बदले आप रेणुका को चांस दे सकते हैं, क्योंकि रेणुका का बॉल स्विंग भी ज़्यादा होता है और क्रांति उतना अच्छा बॉल नहीं कर पा रही जिस हिसाब से है। ये भी डिपेंड करता है कि विकेट टर्निंग ट्रैक्स है तो मीडियम पेसर्स को ज़्यादा मदद नहीं मिल रही है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि क्रांति से अगर वो रेणुका नेट्स पर अच्छा बॉल कर रही है, मैनेजमेंट को लग रहा है कि अगर उनको उनका टच अच्छा है तो खिलाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
0: आप क्विकली थोड़ी सी एक बार कल के मुकाबले की भी बात कर लेते हैं, श्रीलंका अप अगेंस्ट पाकिस्तान, श्रीलंका कमिंग अनडिफीटेड अनबीटन, अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। अपने ग्रुप बी के तीनों मुकाबले ये टीम जीत कर आ रही है, कॉन्फिडेंस बहुत हाई होने वाला है। पाकिस्तान समहाउ हैज पिक्ड अप द मोमेंटम एट द राइट टाइम, बिकॉज जस्ट कहते ना पीकिंग एट द राइट टाइम, जो कि एक चीज़ वो एक टर्म होती है, पाकिस्तान उस तरह की स्थिति में है। कल का मुकाबला आप किस तरह से आंकती है मोना?
1: मुझे लगता है श्रीलंका का पलड़ा ही भारी रहेगा। एक तो डिफेंडिंग चैंपियन है, पूरे टूर्नामेंट में एक मैच में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था लेकिन अच्छा प्रदर्शन रहा है, कई मैच विनर है पाकिस्तान। भारत के खिलाफ जिस तरह से प्रदर्शन पाकिस्तान कर रहा है, मोरल बहुत डाउन हुआ होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ग्रुप फेज में एक भारत ही था जिसके खिलाफ हार्ड टेस्ट था उसके लिए और उसमें वो बिल्कुल ही 19 साबित हुआ। तो काफ़ी कठिन चुनौती है पाकिस्तान के लिए कि रीग्रुप करके श्रीलंका जैसी टीम के सामने अच्छा परफॉर्म करना, तो मुझे लगता है इस मैच में श्रीलंका का पलड़ा ही भारी होने वाला है।
2: रविंद्र, कल दो ऐसे बोलर्स के बीच भी फाइट देखने को मिलेगी, एक तरफ चमारिया टपट्टू जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 7 विकेट लिए, पाकिस्तान के लिए नासरा ने 6 विकेट चटकाए, तो वो बैटल भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा।
3: बिल्कुल होगा, नो डाउट कि लेकिन जो इस समय श्रीलंका का जो कॉम्बिनेशन चल रहा है मुझे लग रहा है कि, और जो उनकी थोड़ी बहुत बैटिंग में फ़र्क है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बैटिंग और श्रीलंका की बैटिंग में ही फ़र्क रह जाएगा, और वो श्रीलंका ही एकमात्र ऐसी टीम लगती है भारत के बाद इस एशिया कप में जो कि जहाँ पर अब उनके जो कप्तान हैं बहुत डेंजरस प्लेयर हैं, अगर वो खड़े हो जाते हैं तो T20 में अकेला ही मैच कर अकेले ही मैच खत्म कर सकते हैं, 70-80-90 रन बनाने की दायदा रखते हैं वो। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे उनको जो कप्तान अट्टापट्टू है उनका सबसे बड़ा डिफरेंस रहेगा।
0: राइट, थोड़ा सा पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं। हमें पता है पाकिस्तान है इंडिया के जब मुकाबले होते हैं तो एक राइवलरी ऑन फील्ड कही जाती है, लेकिन पर से वो राइवलरी अब उतनी दिखती नहीं है। खासतौर से अगर हम पाकिस्तान के इस टूर्नामेंट के परफॉर्मेंस की भी बात करें तो थाईलैंड के अगेंस्ट 119 में थाईलैंड ने पाकिस्तान को समेट दिया था या रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। भारत के खिलाफ वाले मुकाबले को तो हम भूल नहीं सकते, मेयर 55 रन रहे। सो पाकिस्तान का जो कहते हैं ना एक इंटरनल कॉन्फिडेंस होगा इस सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर आते हुए, मनोस्थिति भी उसके साथ साथ, आपको लगता है कि दे विल बी एबल टू प्ले फॉर देयर प्राइड एंड पुट अप अ गुड फाइट टुमारो?
1: वही मैं आपसे कह रही थी कि पाकिस्तान का मोरल पूरी तरह से डाउन होगा भारत के खिलाफ जो उनका प्रदर्शन रहा है, और ये जो राइवलरी की बात करते हैं मुझे लगता है अब ये बंद कर देनी चाहिए, कोई राइवलरी रह नहीं गई है ना मेंस क्रिकेट में ना विमेन क्रिकेट में,

0: जमीन आसमान का फर्क है प्रदर्शन में, और उसमें एक एक्सपोजर की भी बात है। इंडियन क्रिकेटर्स इतना क्रिकेट खेलते हैं, पाकिस्तान में अब वो क्वालिटी रह नहीं गई है जो हम बार बार मैदानी प्रतिद्वंदिता की बात करते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा बड़ी प्रतिद्वंदिता भारत और ऑस्ट्रेलिया की लगती है। तो वो मोरल डाउन है पाकिस्तान का, परफॉर्म नहीं कर पा रही है टीम, और कल श्रीलंका की चुनौती भी उनके लिए बहुत कड़ी होने वाली है। तो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर कोई बहुत कड़ी टक्कर या कोई उलटफेर की संभावना, लेकिन फिर ये अप्रत्याशित प्रारूप है, कुछ कहा नहीं जा सकता। जो आकलन होता है, हमने पहले भी बात की थी कि वो पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे होता है, रिकॉर्ड के आधार पर होता है, प्लेयर्स के फॉर्म के आधार पर होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज के आधार पर होता है, और वहाँ मुझे लगता है श्रीलंका काफ़ी आगे है।
1: राइट, सो होपफुली इट्स गोइंग टू बी ब्राइट डेज टुमारो फॉर एवरीवन। आई थिंक ब्राइट डेज तो ऑलरेडी हर भारतीय क्रिकेट फैन के लिए हो चुके हैं, बिकॉज भारतीय महिलाओं की टीम इस ऑन गोइंग एशिया कप 2026 के फाइनल्स में एक बार फिर से पहुंच चुकी है। द 10th कंसेक्यूटिव एंट्री फॉर द इंडियन वुमेन आउट देयर इन द एशिया कप ऑफ 2026। आनंद
2: जी, हाँ, 40 रन से आज भारत ने जीत दर्ज की है, और हम सब उम्मीद करेंगे कि जब रविवार को भारतीय टीम फाइनल में उतरेगी तो एक नया इतिहास लिखेगी। प्लेयर ऑफ द मैच कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ने के लिए बीसीसीआई कोच रविंद्र सिंह जी आपका, और वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पारसारथी आपका बहुत बहुत आभार।
3: थैंक यू।
2: इस कार्यक्रम में हमें टेक्निकल सहयोग दिया लीला सेठी ने, उर्मिला, कपिला और नागेंद्र पटेल ने। साथ ही साथ प्रस्तुतिकरण में सहयोग प्राप्त हुआ वंदना भारद्वाज का, माधवी तिवारी का और स्वाति कपूर का, और इस पूरे कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शाहनवाज खान। आप बने रहिए आकाशवाणी के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार।
4: प्लेयर ऑफ द मैच।
5: एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट।
6: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात के 11:41 हुए हैं और अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:51 पर अपने कार्यक्रमों के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।